103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है एफएम शिमला। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश

0: डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मन से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Nina Arakel. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why their counter-terrorism cooperation is so important. He said that both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices. Mentioning the visit of U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio, Dr. Jayashankar said, this visit highlights the significance of India-U.S. ties in contemporary times. He added that a year ago, Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump set out a pathway for the further development of both nations' enduring partnership. U.S. President Donald Trump dialed Secretary of State Marco Rubio during an event celebrating America's 250 years of independence at Bharat Mandap.

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम हिमांजलि। शिव की महिमा अपरंपार है, शिव सर्वशक्तिमान है।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम हिमांजलि। माँ के दरबार में जो भी आता है माँ उसके कष्टों को

परमात्मा परम आनंद और परम शांति के भंडार हैं। उनके साथ हमारा संबंध जितना ही बढ़ता जाएगा, उतने ही शांति और आनंद हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे।

Thank you.

अभी आप सुन रहे थे मानस कान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और साथी संगीतकार सतीश भाटिया। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है FM शिमला। आइए सुनते हैं देश गान।

0: देशगान अभी आपने सुना। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला। लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कल थम गया। पहले चरण में कल 26 मई को 1293 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 28 मई जबकि तीसरे चरण में 30 मई को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश भर में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान के सुचारू संचालन के लिए कुल 8,198 मतदान दल गठित किए गए हैं। चंबा जिले के जनजातीय पांगी उपमंडल की 19 पंचायतों में 26 और 28 मई को मतदान होना है। पांगी के आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह ने पोलिंग टीमों को चुनाव सामग्री के साथ संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया। लाहौल स्पीति जिले में पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा के 71 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी दलों पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का मुख्य कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी सहित जिला भाजपा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को माना जा रहा है। प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार नगर पंचायत व पंचायती राज चुनाव को हाईजैक करने का प्रयास कर रही है। इस मुद्दे को लेकर पार्टी आज शिमला स्थित लोकभवन में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगी। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों से राज्य में विकास कार्य पूरी तरह ठप है। वे हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जिला परिषद वार्डों से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान बोल रहे थे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया है। शिमला में एक समारोह में उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर है और इस यात्रा में मीडिया, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों व युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 7 बजने को हैं। हिंदी में समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। IPL क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: वन 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 7:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।

श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत। अर्थात धर्म के सार सर्वस्व को सुनो और सुनकर उसे धारण करो। वो धर्म सर्वस्व यही है कि जो जो कार्य या व्यवहार तुम्हारे मन से प्रतिकूल हों दूसरों के साथ उन्हें ना करो। दूसरों का ना कभी बुरा करो ना चाहो ही। तुम्हारे चाहने करने से किसी का बुरा नहीं होगा, ये तो तभी होगा जब किसी के वैसे अपने कर्म कारण स्वरूप में पहले से बने हुए विद्यमान होंगे, जिससे अपना तथा दूसरों का परिणाम में अहित होता हो वही पाप है। जिससे परिणाम में अपना तथा दूसरों का हित होता हो वही पुण्य है। सत्कथा के सेवन से मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है। अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए ये बात ठीक से समझ में आती है। संसार में किस प्रकार रहना चाहिए, घर में रहते हुए भी बंधन ना हो, कोई भी कार्य या चेष्टा ऐसी ना हो जिससे किसी भी प्राणी का अहित होता हो, सदा स्वाभाविक ही सबका हित परहित होता रहे, इसकी सच्ची जानकारी उन पुरुषों की जीवन घटनाओं से प्राप्त होती है जो ऐसे हैं और जिनके जीवन में ये चीजें प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य नियमित रूप से प्रतिदिन उपनिषदों का उपदेश करते थे। आश्रम के दूसरे विरक्त शिष्य और मुनिगण तो श्रोता थे ही, महाराज जनक भी प्रतिदिन उपदेश सुनने आते थे। महर्षि तब तक प्रवचन प्रारंभ नहीं करते थे जब तक महाराज जनक न आ जाए। इससे श्रोताओं के मन में अनेक प्रकार के संदेह उठते थे। वे संकोच के मारे कुछ कहते तो नहीं थे, किंतु मन में सोचते रहते थे। महर्षि शरीर तथा संसार की अनित्यता का प्रतिपादन करते हैं, मान अपमान को हे बतलाते हैं, किंतु विरक्तों ब्राह्मणों और मुनियों के रहते भी राजा के आए बिना उपदेश प्रारंभ नहीं करते। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने श्रोताओं का मनोभाव लक्षित कर लिया। प्रवचन प्रारंभ होने के पश्चात उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक लीला की। आश्रम से एक ब्रह्मचारी दौड़ा आया और उसने समाचार दिया, वन में अग्नि लगी है, आश्रम की ओर लपटें बढ़ रही हैं। समाचार मिलते ही श्रोतागण उठे और अपनी अपनी कुटियों की ओर दौड़े। अपने कमंडलू वल्कल और निवार आदि वे सुरक्षित रखने लगे। सब वस्तुएं सुरक्षित करके वे फिर प्रवचन स्थान पर आ बैठे। उसी समय एक राजसेवक ने आकर समाचार दिया, मिथिला नगर में अग्नि लगी है। महाराज जनक ने सेवक की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इतने में दूसरा सेवक दौड़ा आया, अग्नि राजमहल के बाहर तक जा पहुंची है। दो क्षण नहीं बीते कि तीसरा सेवक समाचार लाया, अग्नि अंतःपुर तक पहुंच गई है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक की ओर देखा। महाराज जनक बोले, मिथिला नगर, राजभवन, अंतःपुर या इस शरीर के जल जाने से मेरा तो कुछ नहीं जलता, आत्मा तो अमर है, अतः आप प्रवचन बंद ना करें। अग्नि सच्ची तो थी नहीं, किंतु तत्व ज्ञान के श्रवण का सच्चा अधिकारी कौन है ये श्रोताओं को समझ में आ गया। धर्म के सार सर्वस्व को सुनो और सुनकर उसे धारण करो। वो धर्म सर्वस्व यही है कि जो जो कार्य या व्यवहार तुम्हारे मन से प्रतिकूल हैं दूसरों के साथ उन्हें ना करो। इसका यथार्थ रूप कैसा होना चाहिए इस बात का पता सत्य कथा से ही लगता है। यदि मनुष्य ज्ञान की दृष्टि से अपने को निर्लिप्त केवल दृष्टा मान ले तो सर्वत्र अनुकूलता प्रतिकूलता का नाश होकर समता हो जाती है और फिर सुख दुख मिटकर आनंद की प्राप्ति हो सकती है। या भक्ति की दृष्टि से सब कुछ भगवान का मंगल विधान मान ले तो सर्वत्र प्रत्येक सांसारिक परिणाम में अनुकूल दृष्टि हो जाती है, प्रतिकूलता रहती ही नहीं, तब वो नित्य आनंद को प्राप्त कर सकता है।

7:10 हुए हैं। तो चलिए अब आपको बता दें कि आज आप FM शिमला पर अब से लेकर रात 11:10 तक कौन कौन से कार्यक्रम और किस समय पर सुनेंगे। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। FM न्यूज हेडलाइंस आप सुनते हैं 7:57, 8:30 और 9:57 पर। प्रादेशिक समाचार आप रोजाना सुनते हैं सुबह 9:20, 11:00, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे सुबह 8:00, दोपहर 12:00, 1:00, 2:15, रात 8:45 और रात 11:00। अंग्रेजी में समाचार सुबह 8:15, दोपहर 12:05, 1:05, शाम 7:05, रात 9:00 और रात 11:05 पर। लोक संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 8:32, 11:30, दोपहर 2:30 पर शिखरों के स्वर।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10 बजे, दोपहर 12:10, शाम 4 बजे, रात 8:30 और दोपहर 3:10 पर ओल्ड हिट्स फिल्म म्यूजिक।

आज सुबह 8:45 पर कानून की बात कार्यक्रम में आप सुनेंगे नालसा मानव तस्करी एवं व्यवसायिक यौन शोषण अपराध योजना। इस विषय पर अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विक्रांत कौंडल जी से भेंट करेंगी सपना ठाकुर।

9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुदरत के रंग। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 11:05 पर।

दोपहर 12:20 पर आप सुनेंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम। म्यूजिक मस्ती आप सुन सकते हैं 1:10 पर। 2 आप सुनेगा सबरंग कार्यक्रम। युवाणी कार्यक्रम पेश किया जाएगा 3:30 पर। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम के अंतर्गत 4:20 पर आप सुनेंगे चंबियाली कार्यक्रम। मंडियाली कार्यक्रम पेश होगा 4:50 पर। शाम 5:20 पर आप सुनेंगे पंगवाली कार्यक्रम। महास्वी कार्यक्रम पेश होगा 6:05 पर। 6:35 पर आप सुनेंगे कुल्लूवी कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 7:10 पर। रात 8 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। एक फिल्म से कार्यक्रम पेश होगा रात 9:15 पर। दिल की आवाज़ भी सुन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। गज़लों का आनंद आप लेंगे रात 10 और सदाबहार नगमे आप सुन सकते हैं

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 7:15 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला का। सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो हमसफर रीना वर्मा का नमस्कार। वादियों में बिखरी हल्की हल्की धूप, ठंडी हवाओं में घुली देवदार की खुशबू और पहाड़ों की खामोशी में छुपी एक नई उम्मीद, इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है। हम अक्सर किसी सही समय, सही मौके और सही इंसान का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 7:15 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला का। सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो हमसफर रीना वर्मा का नमस्कार। वादियों में बिखरी हल्की हल्की धूप, ठंडी हवाओं में घुली देवदार की खुशबू और पहाड़ों की खामोशी में छुपी एक नई उम्मीद, इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है। हम अक्सर किसी सही समय, सही मौके और सही इंसान का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जो पल आज हमारे पास है वही सबसे खूबसूरत है। तो क्यों ना आज की सुबह एक नए अंदाज में जी जाए। पुरानी बातों की धूल हटाकर, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाकर और दिल में नए सपनों की रोशनी जगाकर, क्योंकि पहाड़ हमें यही सिखाते हैं, धीरे चलो मगर मुस्कुराते चलो। हर मौसम को महसूस करो, हर रिश्ते को समय दो, हर सुबह का स्वागत करो मुस्कुराकर, क्योंकि हर नया दिन जिंदगी का एक अनमोल तोहफा होता है। सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग शिमला, सुनते रहिए और अपनी ये प्यार भरी मुस्कुराहट ऐसे ही कायम रखिए।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। हर सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती, बल्कि एक नई उम्मीद, नई सोच और नई रोशनी लेकर आती है। इसलिए जब भी सुबह आंख खुले तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, जिसने हमें एक और खूबसूरत दिन दिया, कुछ अच्छा करने के लिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। दोस्तों देखिए, बोलना तो आसान है लेकिन सुनना थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार हम सिर्फ जवाब देने के लिए ही सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते, जबकि किसी की बात को ध्यान से सुन लेना भी एक खूबसूरत सा एहसास होता है। मीठे शब्द रिश्ते बना देते हैं और अच्छा सुनना उन रिश्तों को निभा देता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, उसकी बात बिना टोके सुने और उसके जज्बात को महसूस करे। इसलिए बोलिए तो प्यार से बोलिए और सुनिए तो दिल से सुनिए, क्योंकि अच्छी बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं, समझ और एहसास से बनती है।

कहते हैं वक्त कभी रुकता नहीं और श्रोता कभी थकते नहीं। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है और श्रोता हर एहसास को अपने दिल में संजोते रहते हैं। कभी सुबह की चाय के साथ, कभी सफर के दौरान, तो कभी रात की तन्हाइयों में रेडियो हमेशा श्रोताओं का साथी बन जाता है और शायद यही रिश्ता सबसे खूबसूरत है। वक्त बदलता रहता है, तकनीक बदलती रहती है, लेकिन एक सच्चा श्रोता हमेशा अपने पसंदीदा गीतों और आवाज़ों से जुड़ा रहता है। आपने कभी सोचा है अगर बोलने वाला हो लेकिन सुनने वाला ना हो तो शब्द अधूरे लगते हैं, और अगर सुनने वाला हो लेकिन कहने वाला ना हो तो एहसास खामोश हो जाते हैं। श्रोता और वक्ता का रिश्ता बिल्कुल सुर और संगीत जैसा होता है, जहाँ एक के बिना दूसरा अधूरा लगता है।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला, सुनते रहिए। दोस्तों, वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है, कभी हंसना, कभी संभलना, तो कभी छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना। हमारे श्रोता भी कुछ ऐसे ही होते हैं जो हर गीत में अपनी यादें ढूंढ लेते हैं, हर आवाज में अपनापन महसूस करते हैं। रेडियो सिर्फ गानों का सफर नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का एक खूबसूरत जरिया है। दोस्तों, कई बार वक्ता की आवाज किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ले आती है, तो कभी श्रोताओं का प्यार एक वक्ता को और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। इसलिए रेडियो का रिश्ता सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहता बल्कि यादों और भावनाओं में बस जाता है। हमारे श्रोता ही रेडियो की असली पहचान है, क्योंकि आवाजों का सफर तभी खूबसूरत बनता है जब उसे सुनने वाले दिल से जुड़े हों। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि हर मुस्कुराते श्रोता के साथ ही रेडियो की दुनिया रोशन रहती है। सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग शिमला, सुनते रहिए और अपनी ये प्यार भरी मुस्कुराहट ऐसे ही कायम रखिए।

हर दिन अपने साथ नई यादें लेकर आता है, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो समय के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। कहते हैं बीता हुआ कल सिर्फ गुजरा हुआ वक्त नहीं होता, वो आने वाले कल के लिए एक सीख भी छोड़ जाता है। 25 मई का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। सन 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार जीवित जीव के डीएनए को डिकोड करने में सफलता मिली थी और सन 1998 में परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध ना लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य देश सहमत हुए थे।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। तो चलिए हम आपको एक बार फिर याद दिला

आज सुबह 8:45 पर कानून की बात कार्यक्रम में आप सुनिएगा नालसा मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण अपराध योजना इस विषय पर अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विक्रांत कौंडल से सपना ठाकुर की बातचीत। वार्ता आप सुनिएगा 9:00। विषय है संस्कृति उत्थान में साहित्य की भूमिका। वार्ताकार हैं डॉक्टर उषा रानी।

9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुदरत के रंग। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 10 बजे। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 11:05 पर। पहाड़ी संगीत आप सुनेगा 11:30 पर।

0: लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कल थम गया। पहले चरण में कल 26 मई को 1293 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 28 मई जबकि तीसरे चरण में 30 मई को मतदान होना है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ईंधन संरक्षण व नशामुक्त समाज के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया है। शिमला में एक समारोह में उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर है और इस यात्रा में मीडिया, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों व युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रदेश भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 28 पदाधिकारियों को संगठनात्मक दायित्व से मुक्त कर दिया है। ये कार्रवाई जिला परिषद चुनाव में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान के तहत बिलासपुर में विशेष शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 41 बेटियों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। अभियान के अगले चरण के तहत 31 मई को भी बिलासपुर जिले के 30 चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में शिविर लगाए जाएंगे। सांसद अनुराग ठाकुर को एक बार फिर प्रतिष्ठित संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान उनकी अध्यक्षता वाली कोयला, स्टील व खान संसदीय स्थायी समिति के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा नाहन में कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षाएं 18 से 27 जून तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की जानकारी डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 8 बजने को हैं। समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से

0: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CET स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर।

0: मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है।

0: जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2 rupees 61

0: है। एनटीए ने कहा कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही घोषित की जाएगी। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों से राज्य में विकास कार्य पूरी तरह ठप है। वे हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जिला परिषद वार्डों से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान बोल रहे थे। शिमला जिला के बच्चों में पिछले कुछ दिनों में वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मई महीने में डीडीयू जोनल अस्पताल शिमला के बालरोग वार्ड में हेपेटाइटिस के लक्षण वाले 11 बच्चों को भर्ती किया गया है। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई हैं। प्रदेश में इन दिनों गर्मी का दौर जारी है। ऐसे में जहां दिन का अधिकतम तापमान बढ़ने लगा है, वहीं रातें भी उमस भरी होने लगी हैं। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक भी भारी संख्या में प्रदेश के पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 28 मई से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में 30 मई तक बारिश व आंधी की संभावना जताई है। एफएम न्यूज हेडलाइंस के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। लीजिए पेश है लोक संगीत। शुरुआत करते हैं लेखराम पाल के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: लोक संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 8:45 हुए हैं। कानून की बात कार्यक्रम में आइए सुनते हैं। नालसा मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण अपराध योजना, इस विषय पर अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विक्रांत कौंडल से सपना ठाकुर की बातचीत।
1: नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नालसा द्वारा निर्मित मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण अपराध योजना। इस विषय को लेकर आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं विक्रांत कौंडल जी। आप अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी हैं। विक्रांत कौंडल जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: विक्रांत जी। जैसा कि आज का हमारा

0: विषय है, तो इसी पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि नालसा क्राइम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन स्कीम का उद्देश्य क्या है।
1: जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जो नालसा द्वारा बनाई गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण के जो पीड़ित लोग हैं उनको निशुल्क विधिक सहायता, उनके पुनर्वास में उनकी सहायता करना, उनका संरक्षण करना और उनको न्याय उपलब्ध करवाना है।
0: जी कौंडल जी, तो ये जो योजना है किन व्यक्तियों के लिए लागू है?
1: यह योजना मानव तस्करी, देह व्यापार, बाल तस्करी, जबरन श्रम, यौन शोषण और अन्य प्रकार के व्यावसायिक शोषण के पीड़ितों के लिए लागू है।
0: विक्रांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मानव तस्करी क्या है?
1: मानव तस्करी को अगर हम समझना चाहें तो किसी व्यक्ति को धोखे से, लालच, दबाव, भय या बल प्रयोग द्वारा शोषण के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना मानव तस्करी कहलाता है।
0: और व्यावसायिक यौन शोषण की बात करें तो इससे क्या मतलब है?
1: जब भी किसी व्यक्ति, विशेषकर महिला या बच्चे का आर्थिक लाभ के लिए यौन शोषण किया जाता है तो उसे हम व्यावसायिक यौन शोषण कहते हैं।
0: जी, जैसे कि आज हम इस योजना की बात कर रहे हैं तो इस योजना के अंतर्गत पीड़ितों को कौन कौन सी सहायता प्रदान की जाती है?
1: इस योजना के अंतर्गत पीड़ितों को मल्टीफेरियस सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जब उनका रेस्क्यू किया जाता है उस वक्त इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ट्रायल के दौरान और ट्रायल होने के बाद भी उनकी सहायता की जाती है। इस सहायता में अगर हम बात करें तो निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, परामर्श एवं मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना, चिकित्सा सहायता प्रदान करना, आश्रय एवं पुनर्वास की सुविधा उनको देना, मुआवजा दिलाने में उनकी सहायता करना और कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें उनको जो भी सहयोग चाहिए कानूनी रूप से वो उनको प्रदान करना, ये सब सहायता उनको दी जाती हैं।
0: जी बिल्कुल। विक्रांत कौंडल जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस योजना के कार्यान्वयन में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल रहती हैं?
1: इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। सबसे ऊपर का जो मार्गदर्शन रहता है वो नालसा का रहता है और उसके साथ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी काम करती हैं, साथ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ भी इसमें सहयोग देती हैं, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और विशेष प्रकार से कई NGOs इसमें सहायता करते हैं।
0: जी, पीड़ित को निशुल्क विधिक सहायता किस अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है?
1: विधिक सहायता लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाती है।
0: इस योजना में बच्चों के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान रहता है?
1: जी, बच्चों के लिए उनका जो वेलफेयर होता है वो सर्वोपरि माना जाता है। बाल अनुकूल वातावरण में उनके बयान दर्ज किए जाते हैं, शिक्षा, सुरक्षा एवं पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाता है और जो हमारा एक कानून है पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, उसके जो प्रावधान हैं उनको लागू किया जाता है।
0: विक्रांत जी, जैसे कि हम मानव तस्करी की बात भी कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि मानव तस्करी रोकने के लिए समाज की क्या भूमिका रहती है?
1: किसी भी अपराध को रोकने के लिए समाज की बहुत अहम भूमिका रहती है, क्योंकि जैसे जागरूकता फैलाना, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना, पीड़ितों के पुनर्वास में सहयोग करना और महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना, ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कहीं ना कहीं हर नागरिक की होती है।
0: जी, अब बात आती है कि पीड़ितों के पुनर्वास का क्या महत्व है?
1: पीड़ितों के पुनर्वास का बहुत अहम महत्व होता है। पुनर्वास से पीड़ित सामान्य जीवन में लौट पाते हैं तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त होता है।
0: इस योजना के अंतर्गत पैरालीगल वॉलंटियर्स की क्या भूमिका है?
1: पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी स्कीम्स फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजी जाती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही रूप से करना, लोगों तक जागरूकता फैलाना और उनकी सहायता करना।
0: विक्रांत जी, मानव तस्करी से संबंधित प्रमुख कानून कौन कौन से हैं?
1: मानव तस्करी को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। जो मुख्य कानून हैं वो हैं भारतीय न्याय संहिता, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 और बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट।
0: जी विक्रांत जी, क्या पीड़ित की पहचान इसमें गोपनीय रखी?

0: जाती है।
1: जी, पीड़ित की पहचान एवं व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाता है।
0: और अब बात आती है कि नालसा योजना का मुख्य संदेश क्या है।
1: मानव तस्करी एवं यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता, पीड़ितों की सुरक्षा, न्याय एवं सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करना नालसा योजना का मुख्य संदेश है।
0: मानव तस्करी के सामान्य कारण क्या हैं?
1: मानव तस्करी के जो सामान्य कारण देखे गए हैं वो है गरीबी एवं बेरोजगारी, अशिक्षा, झूठे रोजगार के प्रलोभन, सामाजिक असमानता, घरेलू हिंसा एवं पारिवारिक समस्याएं।
0: अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मानव तस्करी के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं?
1: मानव तस्करी के जो प्रमुख उद्देश्य देखे गए हैं वो होते हैं जैसे यौन शोषण, जबरन मजदूरी, बाल श्रम, भीख मंगवाना, अवैध अंग व्यापार, घरेलू दास्ता आदि।
0: जी विक्रांत कौंडल जी, जैसे कि मानव तस्करी की हम बात कर रहे हैं, तो मानव तस्करी के शिकार लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है, कैसे जाना जा सकता है कि ये मानव तस्करी के शिकार हुए हैं?
1: ऐसे लोगों को अगर पहचानने की बात हो तो अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि कोई इंसान
0: जी
1: बहुत भयभीत है या दबाव में रह रहा है, स्वतंत्र रूप से बात नहीं कर पाता है, या शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न के संकेत दे रहा है, या कोई उसके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है, या वो अत्यधिक नियंत्रण में रह रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हर नागरिक को कर लेनी चाहिए कि कहीं ये मानव तस्करी का शिकार व्यक्ति तो नहीं है।
0: जी बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या भूमिका रहती है?
1: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में DLSA के नाम से जानते हैं, ये हर जिला में देश भर में स्थापित हैं और इनकी जो भूमिका है वो बहुत अहम होती है, क्योंकि यह जो सारी स्कीम्स हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशंस में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। DLSA पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता, परामर्श, पुनर्वास सहायता एवं ट्रायल के दौरान जो भी कानूनी सहायता चाहिए वो प्रदान करवाने में उनकी सहायता करते हैं।
0: अब बात आती है मुआवजे की, तो पीड़ित मुआवजा योजना क्या है, ये जानना चाहेंगे हम आपसे।
1: यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत अपराध पीड़ितों को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है।
0: जी, तो क्या विदेशी नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
1: हाँ जी, यदि वे मानव तस्करी या यौन शोषण से पीड़ित हैं तो उन्हें भी कानूनी सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया जा सकता है।
0: जी विक्रांत जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वन स्टॉप सेंटर क्या है?
1: वन स्टॉप सेंटर, जिसको हम सखी के नाम से भी जानते हैं, ये महिलाओं को हिंसा और शोषण की स्थिति में एक ही स्थान पर चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक एवं आश्रय सहायता प्रदान करने का एक वन स्टॉप सेंटर है। कोई भी महिला अगर किसी भी तरह की हिंसा से ग्रसित है तो वो टेलीफोनिकली इनके 24/7 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकती हैं, जो है 181, और उनको ये सब सहायता एकदम से प्रदान की जाती हैं।
0: जी विक्रांत जी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट क्या है?
1: एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पुलिस की एक विशेष इकाई है जो मानव तस्करी के मामलों की रोकथाम, जांच एवं बचाव कार्य में काम करती है।
0: इस योजना में एनजीओस की क्या भूमिका रहती है?
1: एनजीओस की बहुत विशेष भूमिका रहती है, क्योंकि जो एनजीओस होती हैं वो पीड़ितों की पहचान करने में सहयोग करती हैं, सहायता देती हैं और बचाव, परामर्श, पुनर्वास एवं समाज में पुनः उनको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
0: विक्रांत जी, व्यावसायिक यौन शोषण के दुष्प्रभाव क्या है?
1: इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, मगर मुख्य मानसिक आघात, शारीरिक बीमारियाँ, सामाजिक बहिष्कार, आत्मविश्वास में कमी, आर्थिक एवं भावनात्मक शोषण इसके दुष्प्रभाव हैं।
0: जी, बाल तस्करी क्यों गंभीर अपराध माना जाता है?
1: बाल तस्करी एक सीरियस ऑफेंस की श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि इसे बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सम्मान पूर्वक जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है।
0: विक्रांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पीड़ितों के पुनर्वास में कौशल विकास का क्या महत्व है?
1: इसका भी बहुत महत्व रहता है। कौशल विकास से जो पीड़ित होते हैं वो आत्मनिर्भर बनते हैं और सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सक्षम होते हैं।
0: और इस योजना के तहत कानूनी जागरूकता शिविरों का क्या उद्देश्य रहता है?
1: ये जो शिविर होते हैं ये लोगों को उनके अधिकारों के बारे में, कानूनों के बारे में एवं उपलब्ध सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक करते हैं।
0: मानव तस्करी रोकने के लिए नागरिक क्या कर सकते हैं, ये एक अहम सवाल है।
1: जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, नागरिकों का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि नागरिक होने के नाते देश के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक ऐसा समाज बनाएं जो कि अच्छा हो और देश के विकास में सहयोग करें। मानव तस्करी रोकने में भूमिका है वो ऐसी, अगर कहीं भी वो संदिग्ध गतिविधियाँ देखते हैं तो उसकी सूचना एकदम से पुलिस को दें। बच्चों एवं

0: महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जागरूकता अभियान में वो भी भाग लें, झूठे रोजगार प्रस्तावों से सावधान रहना चाहिए।
1: जी विक्रांत कौंडल जी, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति अदालत से सहायता लेना चाहता है तो क्या अदालत में सहायता प्रदान की जाती है पीड़ित को?
0: जी हाँ, जब भी पीड़ित का कोई भी मैटर अदालत में चलता है या अदालत के समक्ष आता है तो वहाँ उसको कानूनी सलाह परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हमने पैनल ऑफ एडवोकेट्स बना रखे हैं जो उनको मुहैया करवाए जाते हैं, जो कि उनको कानूनी परामर्श भी देते हैं और आगे की कार्रवाई का रास्ता भी सुझाते हैं। तो इसी तरह से जो परामर्शदाता है या सहयोगी व्यक्ति है उसकी अपॉइंटमेंट भी करवाई जाती है ताकि ट्रायल के दौरान उनको किसी किस्म की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े।
1: जी अब बात आती है कि रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन से क्या अभिप्राय है?
0: पीड़ित को शोषण की स्थिति से सुरक्षित बाहर निकालना रेस्क्यू कहलाता है और रेस्क्यू होने के बाद जब उसको समाज में दोबारा स्थापित करना है तो उसके लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको हम रिहैबिलिटेशन की श्रेणी में रखते हैं।
1: जी महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा क्यों आवश्यक है?
0: यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे समाज के संवेदनशील वर्ग में आते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा से सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है।
1: जी विक्रांत जी, अब बात आती है कि नालसा स्कीम का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: अगर हम बात करें इस स्कीम की तो ये जो स्कीम होती है ये इस क्राइम के हर पहलू को नज़र में रखकर बनाई जाती है और यह योजना जो मानव तस्करी एवं शोषण के विरुद्ध जागरूकता है उसको बढ़ाती है, पीड़ितों को न्याय दिलाती है तथा समाज में सुरक्षा एवं समानता को प्रोत्साहित करती है। इस योजना को देखकर आगे का मार्गदर्शन मिलता है और किस तरह से जो विक्टिम्स हैं उनकी सहायता करनी है उसकी दिशा निर्धारित होती है।
1: विक्रांत कौंडल जी, आज हमने नालसा मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण अपराध योजना के विषय पर आपसे जानकारी हासिल की। आप हमारे स्टूडियो में, आपका धन्यवाद। इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का आज का ये अंक ही संपन्न होता है। अगले सप्ताह इसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।
2: कानून की बात कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नालसा मानव तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण अपराध योजना। इस विषय पर अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विक्रांत कौंडल से सपना ठाकुर की बातचीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।
2: समय मिला लीजिए, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में ठीक 9 बजे हैं और ये समय है वार्ता का। विषय है संस्कृति उत्थान में साहित्य की भूमिका। वार्ताकार हैं डॉक्टर उषा रानी।
4: नमस्कार, आज की वार्ता का विषय है संस्कृति उत्थान में साहित्य की भूमिका। संस्कृति, संस्कृति मानवीय जीवन की प्रेरक शक्ति है। संस्कृति विश्व के प्रति अनंत मैत्री की भावना है। संस्कृति किसी समाज के वे सूक्ष्म संस्कार हैं जिनके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण करते हैं, विचार करते हैं और जीवन के विषय में अपनी अभिवृत्तियां और ज्ञान को दिशा देते हैं। संस्कृति के इसी कल्याणकारी भाव का वहन साहित्य करता है। साहित्य लोक कल्याण के लिए ही सृजित किया जाता है। लोगों का मार्गदर्शन करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। मनुष्य जाति को सुसंस्कृत बनाने का सबसे बड़ा दायित्व साहित्य का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साहित्य और संस्कृति का अटूट संबंध होता है। एक साहित्यकार सदैव संस्कृति के सुंदर पक्षों को अपने साहित्य का आधार बनाता है और संस्कृति भी साहित्य रूपी आईने से अपने रूप को संवारती है। साहित्य संस्कृति को सौंदर्य प्रदान करता है और संस्कृति प्रत्येक राष्ट्र के साहित्य में विद्यमान रहती है।

संस्कृति जीवन की विधि है। जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, जो भाषा हम लिखते हैं और जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, ये सभी सभ्यता कहलाते हैं। तथापि इनसे संस्कृति भी सूचित होती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। इसमें वे अमूर्त एवं अभौतिक भाव और विचार भी सम्मिलित हैं जो हमें एक परिवार और समाज के सदस्य होने के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त हुए हैं। एक समाज के सदस्य के रूप में मानव की सभी उपलब्धियां उसकी संस्कृति से प्रेरित कही जा सकती हैं। कला, संगीत, साहित्य, वास्तु ज्ञान, शिल्पकला, दर्शन, धर्म और विज्ञान सभी संस्कृति के प्रकट पक्ष माने जाते हैं। तथापि संस्कृति में रीति रिवाज, परंपराएं, पर्व, जीने के तरीके और जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोण भी सम्मिलित है। संस्कृति मानव जनित मानसिक पर्यावरण से संबंध रखती है, जिसमें सभी अभौतिक उत्पाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान किए जाते हैं। समाज वैज्ञानिकों में एक सामान्य सहमति है कि संस्कृति में मनुष्यों द्वारा प्राप्त सभी आंतरिक और बाह्य व्यवहारों के तरीके समाहित हैं, चिन्हों द्वारा भी स्थानांतरित किए जा सकते हैं, जिनमें मानव समूहों की विशिष्ट उपलब्धियां भी समाहित हैं। वस्तुतः संस्कृति का मूल केंद्र बिंदु उन सूक्ष्म विचारों में निहित है जो एक समूह में ऐतिहासिक रूप से उनसे संबद्ध मूल्यों सहित विवेचित होते रहे हैं। संस्कृति किसी समाज के भी सूक्ष्म संस्कार कहे जा सकते हैं, जिनके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण करते हैं, विचार करते हैं और जीवन के विषय में अपनी अभिवृत्तियां और ज्ञान को दिशा प्रदान करते हैं। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में हमारी अंतस्थ प्रकृति को अभिव्यक्त करती है। संस्कृति हमारे साहित्य में, धार्मिक कार्यों में, मनोरंजन और आनंद प्रदान करने के तरीकों में भी देखी जा सकती है। संस्कृति के दो भिन्न उप विभाग कहे जा सकते हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति उन विषयों से जुड़ी है जो हमारी सभ्यता कहलाती है, जिससे हमारे जीवन के भौतिक पक्षों से संबंध बनते हैं, जैसे हमारी वेशभूषा, भोजन, घरेलू सामान इत्यादि। अभौतिक संस्कृति का संबंध विचारों, आदर्शों, भावनाओं और विश्वासों से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठ गुण है रहस्यवादी भावना और समन्वय की प्रवृत्ति। रहस्यवादी भावना के कारण आत्मा, परमात्मा आदि के सूक्ष्म चिंतन को लेकर भारतीय दर्शन शास्त्र की अनेक शाखाओं का प्रचार प्रसार हुआ है। समन्वयात्मक प्रवृत्ति के कारण भारतीय जीवन में ज्ञान, भक्ति, कर्म और धर्म का शील, सत्य एवं सदाचार का ऐसा समन्वय हुआ है कि विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और मतवादों के प्रचलित होने पर भी यहाँ के जीवन में वैमनस्य की स्थिति नहीं आई है। यहाँ तक कि विदेशी अक्रांता जातियां भी यहाँ आकर भारतीय संस्कारों को अपनाने लगी हैं। संस्कृति के महान स्वरूप को भारतीय चिंतकों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। गैरोला के अनुसार जिससे मानवता का संस्कार हो, ऐसी शिक्षा दीक्षा, ऐसा रहन सहन और ऐसी परंपराएं ही संस्कृति की उद्घोषक हैं। संस्कृति एक सामाजिक विरासत है और वह संचय से विकसित होती है। डॉक्टर राम सज्जन पांडे के अनुसार संस्कृति मानव के गतानुगतिक संस्कारों का वह सफल रूप है जिससे उसके सामाजिक सुधार, आचार विचार, पर्व त्योहार, रहन सहन, रीति रिवाज, नीति धर्म, अध्यात्म कला इत्यादि की प्रतीति होती है। संस्कृति मानव की एक तरफ तो विधायिका है तो दूसरी तरफ परिचायिका भी। सौंदर्यमयी संस्कृति स्वस्थ एवं सुंदर समाज की सर्जना करती है। समस्त परिभाषाओं के आलोक में हम देखते हैं कि संस्कृति वह है जो मनुष्य के आचरण से झलकती है। संस्कृति हमें विरासत में नहीं मिलती, अपितु इसको अर्जित करना पड़ता है। संस्कृति व्यक्ति के पहनावे से नहीं वन उसके व्यवहार से दिखाई देती है। विभिन्न विद्वानों ने संस्कृति शब्द की विभिन्न परिभाषाएं एवं व्याख्याएं दी हैं। कोई सर्वमान्य परिभाषा हमें नहीं मिल पाती है, फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि संस्कृति उन भूषण रूपी सम्यक चेष्टाओं का नाम है जिनके द्वारा मानव समूह अपनी आंतरिक और बाह्य जीवन को, अपनी शारीरिक मानसिक शक्तियों को संस्कारवान, विकसित और दृढ़ बनाता है। अतः संस्कृति मानव समुदाय के जीवन यापन की वह परंपरा है जिसके प्रशिक्षण पाकर मनुष्य संस्कारित, सुगढ़, प्रौढ़ और विकसित बनता है।

संस्कृति को जानने, समझने और अर्जित करने का जो गुण मनुष्य में है वह पृथ्वी के दूसरे प्राणियों में नहीं है। यही कारण है कि मानव ही समाज को आनंदित और आलोकित करता है। इसी आनंद और आलोक में साहित्य का निर्माण होता है। साहित्य का स्वरूप संस्कृति के तानों बानों से ही निर्मित होता है। जैसे जैसे हमारी संस्कृति में उतार चढ़ाव आता है, उसी प्रकार का परिवर्तन साहित्य में भी नजर आता है। साहित्य की यात्रा संस्कृति के पोषक तत्वों के सहारे चलती है। भारतीय संस्कृति जीवन के उज्ज्वल पक्षों जैसे त्याग, तपस्या, साधना, बलिदान, सत्य, अहिंसा, मानवता, संयम, सहनशीलता आदि को अपने दामन में समेट कर चलती है। ये ऐसे तत्व हैं जो संस्कृति रूपी बट वृक्ष की जड़ों को मजबूत करते हैं और इसी छायादार वृक्ष की शीतल छाया मानवता सांस लेती है और इसकी शीतलता को आत्मसात भी करती है। भारतीय संस्कृति के बट वृक्ष की छाया ऐसा आनंद प्रदान करती है कि जो पथिक एक बार यहाँ विश्राम कर लेता है वह बार बार यहाँ खींचा चला आता है। भारत के द्वार शरणागतों के लिए हमेशा ही खुले रहते हैं क्योंकि मित्रता, एकता, विश्व बंधुता, समन्वय भारतीय संस्कृति के स्थायी गुण रहे हैं। संस्कृति विश्व के प्रति अनन्य मैत्री की भावना रखती है। ऊपरी मतभेदों को मिटाकर वह समन्वय का रास्ता प्रशस्त करती है। संस्कृति किसी देश की आत्मा होती है। यह सब विरोधों को समाप्त कर प्रेम के वातावरण का निर्माण करती है। सच्ची संस्कृति भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक सूत्र में गूंथती है। इसमें प्राचीन और नवीन का मेल होता है। प्राचीन संस्कृति को नकार कर हम नई संस्कृति संस्कारों का निर्माण नहीं कर सकते। बहुत से नवयुवक भूतकाल को निरर्थक मानकर अपने लिए नवीन मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन यह सही रास्ता नहीं है क्योंकि वे नहीं जानते कि वृक्ष अपनी जड़ों के बिना खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर मकान की नींव ही ना बने तो मकान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुरानी परंपरा और रीति रिवाज ही आगे चलकर नवीन का निर्माण करने में अपना योगदान देते हैं। यह आवश्यक है कि जो परंपरा रीति रिवाज आगे चलकर रूढ़ी का रूप धारण करके समाज रूपी वृक्ष की जड़ों को कमजोर बनाते हैं उन्हें हमें अवश्य छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पुरानी सारी परंपराएं ही निरर्थक हैं। साहित्य ने भारतीय संस्कृति को जीवन दान दिया है। भारतीय अर्थात संस्कृति का चेतन साहित्य ही है। साहित्य व्यक्ति के रंग रूप का नहीं वरन उसके अंत का निर्माण करता है। साहित्य उन मूल्यों को सजीव करता है जो संस्कृति के प्राण तत्व हैं। मूल्यों से परिपूर्ण साहित्य हर देश काल में जगमगाता हुआ चलता है और हर युग में प्रासंगिक बना रहता है। इन जीवन मूल्यों से ही भारतीय संस्कृति का उत्थान होता है। संस्कृति जीवन से अपना अस्तित्व ग्रहण करती है और साहित्य समाज के सुंदर पक्षों को उजागर करके समाज को पुष्ट करता हुआ संस्कृति का निर्माण करता है। साहित्य अपने गर्भ में उन महापुरुषों को जीवित रखता है जो हमारी संस्कृति की ताकत हैं। भारतीय संस्कृति का आदर्श है राम, महावीर, बुद्ध और राम की मर्यादा, कृष्ण का कर्मयोग, महावीर की सर्वभूत हितकारी अहिंसा और अनेकांत, बुद्ध की करुणा भारतीय संस्कृति है। साहित्य के स्वरूप को भारतीय चिंतकों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अतः साहित्य संस्कृति के प्रत्येक रूप को उजागर करता है। जीवन के प्रत्येक पक्ष को यथोचित रूप से ग्रहण करते हुए उसकी समुचित अभिव्यक्ति भी करता है। साहित्य के सम्मुख यह लक्ष्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति सच्चा मानव धर्म अपनाकर नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए लोक मंगल तथा विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करें। अपने संस्कृति के सुंदर पक्ष से प्रभावित होकर व्यक्ति स्वयं उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है और समाज को भी उन्नत करने में सक्रिय सहयोग देता है। सत्यम शिवम सुंदरम भारतीय संस्कृति के शाश्वत तत्व हैं। साहित्य और कला संस्कृति के

0: सुंदर रूप का दिग्दर्शन करते हैं। साहित्यकार अनेक प्रसंगी घटनाओं तथा पात्रों के माध्यम से उन मूल्यों को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं जो पाठक को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। साहित्यकार इस प्रकार से इन तथ्यों को पाठक के सामने रखता है जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चल सके, प्रत्येक व्यक्ति समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सके। भारतीय संस्कृति विश्व की सभी संस्कृतियों से श्रेष्ठ कही जा सकती है क्योंकि भारतीय संस्कृति मानवीय गुणों को साथ लेकर चलती है, चारों तरफ सौहार्द उत्पन्न करती है। हमारी संस्कृति ने विश्व को संस्कारवान बनाया है। पाश्चात्य देश अपने आप को महान कहते हैं लेकिन वे संस्कृति के धनी नहीं है। सबसे अच्छा और सबसे बड़ा वह नहीं होता जो वैभव में, शक्ति में और अधिकार में सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा तो वह होता है जो संपूर्ण मानव जगत को ज्ञान प्रदान करता है, मानवता की राह पर चलने के लिए प्रेरणा देता है और शक्ति तथा सुख के मार्ग को प्रशस्त करता है। भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि उसकी परिधि में केवल जीव जंतु ही नहीं आते अपितु समस्त पर्यावरण तक उसकी पहुंच है। भारतीय संस्कृति ने सदा मानवता का आदर करना सिखाया है। जीव जंतुओं के प्रति प्रेम रखना और उनकी रक्षा करना भारतीय संस्कृति की ही विशेषता रही है। पशु पक्षियों को देवी देवताओं का वाहन बताकर उनके जीवन की रक्षा करना हमारी संस्कृति की एक अद्भुत विशेषता है। चींटियों को आटा डालना, पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करना, जीवों को नाश्ताना, इन सभी कार्यों को धर्म के साथ जोड़कर एक प्रकार से भारतीय संस्कृति की रक्षा करना ही है। ऐसे धर्मपरायण कार्यों को हम अपने बचपन से ही देखना और करना प्रारंभ कर देते हैं और ये संस्कार हमारे जीवन का एक हिस्सा बनकर हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अनायास ही अपनी संस्कृति से जुड़ते जाते हैं और इसे आगे बढ़ाते जाते हैं। हमारी संस्कृति केवल जीवों के प्रति ही संवेदनाएं नहीं रखती अपितु प्रकृति के दूसरे तत्वों की रक्षा करना भी हमें सिखाती है। वृक्ष लगाना और उनका पोषण करना भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हरे वृक्षों को ना काटना और इसे धर्म विरुद्ध कहना भी हमारा प्रकृति प्रेम कहा जा सकता है। निष्कर्ष के तौर पे मैं यही कहूंगी कि भारतवर्ष का साहित्य बहुत सूक्ष्म और गहन है। भारतीय साहित्य पूर्णतः भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति अगर पेड़ है तो साहित्य उसकी छाया है जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। संस्कृति जीवन के अनुभवों का प्रतिफल नहीं है अपितु संस्कृतियों के निर्माण में शताब्दियां बीत जाती हैं। समय अनुसार संस्कृति में आरोह अवरोह चलता रहता है लेकिन संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती। काल ने सभ्यताओं को मिटते देखा है लेकिन संस्कृति को नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति अपने उज्जवल पक्ष से जगमगाती रही है और सदा जगमगाती रहेगी। अतः कह सकते हैं कि मानव व्यवहार का परिमार्जन अगर किसी ने किया है तो वह हमारा साहित्य है जो पूर्णतः भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था संस्कृति उत्थान में साहित्य की भूमिका। वार्ताकार थी डॉक्टर उषा रानी।
2: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM शिमला। खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।

शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। 9:30 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम। रिमझिम कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे सुबह 10:00। लोक संगीत आप सुन सकते हैं 11:05, 2:30 पर हिमगुंजन, रात 8:00 धारा रे गीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग पेश किया जाएगा 11:30 पर। महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 12:20 पर।

के लिए कार्यक्रम 2 बजे सुनहरी किरणें। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 12:10, 2:45, रात 8:15 पर। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं रात 8:30 पर।

गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता पेश किया जाएगा रात 9:15 पर। 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। रात 10:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। रात 10:30 पर सुरबहार पुराने फिल्मों से कार्यक्रम पेश किया जाएगा। यह आज आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार DTH और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे।
2: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
3: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
2: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
3: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार करेंगे प्रदान। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 से साय 3 बजे तक होगा मतदान। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सभी तैयारियां पूरी। मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रदेश की सबसे लंबे रूट वाली HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा कल से फिर होगी शुरू। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार, कुछ जिलों में लू चलने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, जनहित और समाज सेवा, साहित्य और शिक्षा, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार और उद्योग, औषधि, खेल इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। प्रदेश में कल 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान सुबह 7 बजे से साय 3 बजे तक मतपत्र व मतपेटियों के माध्यम से करवाया जाएगा। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
5: प्रदेश में कल पहले चरण में

0: 293 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण का मतदान होगा। मतदान के सुचारू संचालन के लिए कुल 8,198 मतदान दल गठित किए गए हैं। दूसरे चरण में 28 जबकि तीसरे व अंतिम चरण में 30 मई को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश भर में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए सभी मतदान दल अपने अपने केंद्रों में पहुँच चुके हैं। तीन चरणों में होने जा रहे प्रदेश में कुल 3,754 ग्राम पंचायतों के कुल 31,182 पदों के लिए 70,224 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इधर पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में जिला सिरमौर में 94 पंचायतों में मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में सिरमौर जिला की 94 पंचायतों में मतदान होगा, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। इन पंचायतों में विकासखंड नाहन की 10, विकासखंड राजगढ़ की 12, विकासखंड ददाऊ की 9, विकासखंड संगड़ाह की 13, विकासखंड शिलाई की 13, विकासखंड पांवटा साहिब की 17, विकासखंड पछात की 11 और विकासखंड तिलोरदार की 9 पंचायतें शामिल है। प्रशासन द्वारा मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पंचायती राज चुनाव के दौरान सिरमौर जिला में करीब 500 पुलिस और होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने व किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहने की अपील की है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल होगा। इधर कांगड़ा जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि सभी 895 पोलिंग बूथों पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अशोक रतन ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी आपात स्थिति या कानून व्यवस्था से जुड़ी घटना से तुरंत निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने अलग अलग स्तर पर विशेष टीमें भी गठित की है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली सबसे लंबे रूट पर हिमाचल पथ परिवहन की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा कल से एक बार फिर शुरू हो रही है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा कि केलंग लेह मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिए जाने के बाद ये बस सेवा पुनः आरम्भ की गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति संवाददाता।
3: लाहौल स्पीति और लेह की यात्रा की इच्छा रखने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा इस बार 26 मई यानी कल से शुरू होने जा रहा है। केलंग लेह मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिए जाने के बाद यह सेवा पुनः आरंभ की जा रही है। यह बस सेवा राष्ट्रीय राजमार्ग 03 पर स्थित कई प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जिस्पा, दाचा, जिंगजिंगबार, बाराला चाला, सरचू, गाटालूप, नकीला, रूमसे, उपशी और तंगलंगला से होकर लेह पहुंचेगी। HRTC के अनुसार दिल्ली से लेह तक की कुल दूरी 990 किलोमीटर है और यात्रा का किराया मात्र 1839 रुपए निर्धारित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। HRTC ने यात्रियों से यात्रा करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: शिमला जिला में पिछले कुछ दिनों से बच्चों में वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस महीने में अब तक दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 11 बच्चों को हेपेटाइटिस के लक्षणों के चलते भर्ती करना पड़ा है, जिनमें 7 बच्चे हेपेटाइटिस ए से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
4: स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मई महीने में डीडीयू जोनल अस्पताल के बाल रोग वार्ड में हेपेटाइटिस के लक्षण वाले 11 बच्चों को भर्ती किया गया है। इनमें से 7 बच्चों में हेपेटाइटिस ए की पुष्टि हुई है। हल्के लक्षण वाले कई बच्चों का इलाज ओपीडी में किया गया है। ये मामले एक महीने के भीतर धीरे धीरे सामने आए हैं। रोज या एक दिन छोड़कर करीब एक केस रिपोर्ट हो रहा है। प्रभावित बच्चे अलग अलग इलाकों से है और किसी एक क्षेत्र में

0: क्लस्टर नहीं मिला है। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई है। टीमें एक्टिव सर्विलांस, अतिरिक्त मरीजों की पहचान, पेयजल और स्वच्छता की जांच कर रही है। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित पानी और भोजन से फैलते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से उबालकर पानी पीने, हाथ धोने, खुले में बिकने वाले कटे फल और भोजन से बचने की अपील की है। साथ ही बुखार, उल्टी, पेट दर्द, पीलिया या गहरे रंग का पेशाब जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान ऊना 41.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग ने 26 से 28 मई के बीच ऊना, बिलासपुर, सोलन व कांगड़ा जिला के कुछ स्थानों में लू चलने का अनुमान जताया है। हालांकि विभाग ने 27 मई से देश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 30 मई तक अंधड़, बारिश और गर्जना की संभावना जताई है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल की 1293 पंचायतों में थमा प्रचार, पोलिंग दल रवाना, वोटिंग कल। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कल 1293 पंचायतों में होगी पहले चरण की वोटिंग, प्रधान, उपप्रधान और वार्ड मेंबर के रिजल्ट शाम को। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, पंचायती राज चुनाव में मतगणना पर सख्ती, रीकाउंटिंग के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय, लिखित आवेदन करना अनिवार्य। चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना को केंद्र की मंजूरी, खुल सकते हैं आत्मनिर्भर हिमाचल के द्वार, पंजाब केसरी की एक खबर है। मौसम की खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है, तीन दिन तपेगा हिमाचल, ऊना का पारा 41 डिग्री पार। ओवरटेक करने पर पीटा एचआरटीसी बस चालक, पति पत्नी सहित 4 गिरफ्तार, दैनिक जागरण की एक खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट, सुबह 7 से साय 3 बजे तक होगा मतदान। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सभी तैयारियां पूरी, मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रदेश की सबसे लंबे रूट वाली एचआरटीसी की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा कल से फिर होगी शुरू। और मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार, कुछ जिलों में लू चलने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के अलावा FM शिमला पर भी प्रसारित किए गए। ये आकाशवाणी शिमला है, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कुदरत के रंग कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी रेडियो हमसफर रीना वर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार। जिंदगी भी एक सफर है और हर सफर अपने साथ कुछ यादें, कुछ किस्से और कुछ एहसास लेकर आता है। कभी मंजिल की खुशी मिलती है तो कभी रास्तों की खूबसूरती दिल जीत लेती है।

और देखिए इस जिंदगी में फुर्सत के चार दिन भी हम खुशी खुशी हंसते खेलते गुनगुनाते गाते हुए चलते रहें तो दिल को सुकून सा मिलता है।

देखिए, सफ़र चाहे छोटा हो या लंबा, अगर साथ में अपनों हो और संगीत हो तो रास्ते भी मुस्कुराने लगते हैं। कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचाते हैं और कुछ सफ़र हमें खुद से मिलवा जाते हैं। पहाड़ों की वादियां हों या सुबह की ठंडी हवा, हर सफ़र अपने साथ एक नया एहसास लेकर आता है। ज़िंदगी का असली मज़ा मंजिल में नहीं बल्कि रास्तों में छिपा होता है। सफ़र हमें सिखाता है कि चलते रहना ही ज़िंदगी का नाम है।

जब सफर का साथ हो और कुदरत की खूबसूरती आसपास हो तो हर रास्ता किसी खूबसूरत गीत जैसा लगने लगता है। पहाड़ों की ठंडी हवाएं, पेड़ों की सरसराहट, बादलों की चादर और पक्षियों की मधुर आवाज, ये सब मिलकर सफर को यादगार बना देते हैं। और देखिए, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो सफर के साथ साथ गीतों की रिश्तेदारी बड़ी पुरानी है। वो सफर ही क्या जो उत्साह से लबालब ना हो और जिसमें शामिल ना हो दिलचस्प जादुई नगमे।

कुदरत के करीब बिताया गया हर पल जिंदगी को और खूबसूरत बना देता है। रास्ते वहीं अच्छे लगते हैं जहां कुदरत अपनी खूबसूरती बिखेर रही हो। और देखिए, सफर हमें नई जगहों से मिलवाता है और कुदरत हमें खुद से मिलवाती है। जब मन थक जाए ना, तो थोड़ा वक्त कुदरत के साथ बिताइए, सुकून खुद मिल जाएगा। जिंदगी की भागदौड़ में अगर कुछ पल कुदरत के साथ मिल जाए तो मन फिर से तरोताजा हो जाता है, और जब इन खूबसूरत रास्तों में संगीत साथ हो ना, तो सफर और भी यादगार बन जाता है।

देखिए, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें सबसे पहले मौसम का हाल देख लेना है कि उस दौरान वहाँ का मौसम कैसा है। भाई, अगर शिमला के मौसम की बात करें ना, तो यहाँ का मौसम बेहद सुहावना है। और जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, उस जगह के बारे में हम अच्छे से जान लें, जो भी वहाँ की खासियत है उसे हमें लिख लेना चाहिए एक डायरी में, क्योंकि वो एक याद बनकर हमारे पास रह जाती है। घूमना खुद को खोजना जैसा है, खुद को पाने जैसा है। घूमना जिंदगी में इश्क लड़ाने जैसा है। जब भी हम किसी सफ़र से लौटते हैं ना, तो वैसे कहाँ रह जाते हैं जैसे सफ़र से पहले थे, क्योंकि हमें वहाँ जाकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमें वहाँ के लोगों से बातचीत करने का मौका नहीं गंवाना चाहिए, उस जगह के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि जब भी कहीं घूमने जाओ, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमें हर जगह को अपना घर समझकर साफ सुथरा रखना है।

0: कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला। लीजिए पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में कल 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे से सायं 3 बजे तक मतपत्र व मतपेटियों के माध्यम से करवाया जाएगा। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में कल पहले चरण में 1293 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण का मतदान होगा। मतदान के सुचारू संचालन के लिए कुल 8198 मतदान दल गठित किए गए हैं। दूसरे चरण में 28 जबकि तीसरे व अंतिम चरण में 30 मई को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने व किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहने की अपील की है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल होगा। प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली सबसे लंबे रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा कल से एक बार फिर शुरू हो रही है। केलंग लेह मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिए जाने के बाद ये बस सेवा पुनः आरंभ की गई है। शिमला जिला के बच्चों में पिछले कुछ दिनों में वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मई महीने में दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल शिमला के बाल रोग वार्ड में हेपेटाइटिस के लक्षण वाले 11 बच्चों को भर्ती किया गया। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई है। ये टीमें एक्टिव सर्विलांस, अतिरिक्त मरीजों की पहचान, पेयजल व स्वच्छता की जाँच कर रही है। प्रदेश में इन दिनों गर्मी का दौर जारी है। ऐसे में जहां दिन का अधिकतम तापमान बढ़ने लगा है, वहीं रातें भी उमस भरी होने लगी है। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक भी भारी संख्या में प्रदेश के पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 28 मई से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में 30 मई तक बारिश व आंधी की संभावना जताई है। एफएम न्यूज़ हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
0: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 10 बजे हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। शुरुआत करते हैं आशिकी फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ है कुमार सानू की, गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

FM शिमला 103.7 MHz पर आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। विश्व आत्मा फिल्म में लीजिए सुनिए साधना सरगम को। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार विजू शाह।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। दोस्तों देखिए, फिल्में सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि अपने मधुर संगीत से भी लोगों के दिलों में बस जाती हैं। कभी कोई गीत हमें हंसाता है तो कभी भावुक कर देता है तो कभी पुरानी यादों से जोड़ देता है। भारतीय सिनेमा का संगीत हर दौर में लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहा है। लीजिए सुनिए फूल और कांटे फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है कुमार सानू ने, बोल हैं समीर के, तर्ज दी है नदीम श्रवण ने।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला 103.7 MHz पर आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। 90 का दशक यानी वो दौर जब फिल्म संगीत दिलों में उतर जाया करता था। साजन फिल्म का गीत सुनिए। आवाज है SP बाला सुब्रमण्यम की, गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

0: कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और सोनू निगम जैसी आवाजों ने 90 के दशक को खास बना दिया। 90 का संगीत आज भी हर पीढ़ी को पसंद आता है क्योंकि उसमें दिल की सच्चाई झलकती है।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में।

0: अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। बाजीगर फिल्म का गीत सुनिए, जिसे गाया है विनोद राठौड़ ने। गीतकार हैं रानी मलिक और संगीतकार अनु मलिक।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए समीर का लिखा गीत। आवाज है बाबुल सुप्रियो और कविता कृष्णमूर्ति की। फिल्म का नाम है अग्नि साक्षी।

देखिए इन गानों को सुनकर बैठे बैठे भी सही में झूमने का मन करता है। दिलवाले फिल्म का गीत सुनिए, आवाज़ है कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

फिल्म संगीत का आखिरी गाना राजा हिंदुस्तानी फिल्म से है, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीत लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

फिल्म संगीत के सफर में आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सफर जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने रेडियो हम सफर रीना वर्मा को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए FM शिमला 103.7 MHz पर। 11 बजने को है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप ये समाचार सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। प्रदेश में कल 26 मई को होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान सुबह 7 बजे से सायं 3 बजे तक मतपत्र व मतपेटियों के माध्यम से करवाया जाएगा। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: प्रदेश में कल पहले चरण में 1293 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण का मतदान होगा। मतदान के सुचारू संचालन के लिए कुल 8198 मतदान दल गठित किए गए हैं। दूसरे चरण में 28 जबकि तीसरे व अंतिम चरण में 30 मई को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश भर में कुल 21678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए सभी मतदान दल अपने अपने केंद्रों में पहुंच चुके हैं। 3 चरणों में होने जा रहे प्रदेश में कुल 3754 ग्राम पंचायतों के कुल 31182 पदों के लिए 70224 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने व किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहने की अपील की है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल होगा। कांगड़ा जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि सभी 895 पोलिंग बूथों पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अशोक रतन

0: बताया कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली सबसे लंबे रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा कल से एक बार फिर शुरू हो रही है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा कि केलंग लेह मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिए जाने के बाद ये बस सेवा पुनः आरंभ की गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: लाहौल स्पीति और लेह की यात्रा की इच्छा रखने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा इस बार 26 मई यानी कल से शुरू होने जा रहा है। केलंग लेह मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिए जाने के बाद यह सेवा पुनः आरंभ की जा रही है। यह बस सेवा राष्ट्रीय राजमार्ग 03 पर स्थित कई प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जिस्पा, दाचा, जिंगजिंगबार, बाराला, चाला, सरचू, गाटालूप्स, नकीला, रूमसी, उपशी और तंगलंगला से होकर लेह पहुंचेगी। HRTC के अनुसार दिल्ली से लेह तक की कुल दूरी 990 किलोमीटर है और यात्रा का किराया मात्र 1839 रुपए निर्धारित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। HRTC ने यात्रियों से यात्रा करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र ही घोषित की जाएगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान ऊना 41.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग ने 26 से 28 मई के बीच ऊना, बिलासपुर, सोलन व कांगड़ा जिला के कुछ स्थानों में लू चलने का अनुमान जताया है। हालांकि विभाग ने 27 मई से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 30 मई तक अंधड़ बारिश और गर्जना की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 PM। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। आकाशवाणी FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी ये समाचार रिले किए गए। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। ट्यूनी ने आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला के साथ और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:05 हो चुके हैं। आप सभी का स्वागत है पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में। हमेशा की तरह आज के इस कार्यक्रम में भी आप आनंद लेंगे रोमांटिक, मस्ती, सैड और क्लासिक सॉन्ग्स का। कुछ यादगार पलों को भी करेंगे तरोताजा। सुनते हैं आराधना फिल्म का ये गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

किशोर कुमार का गाया ये गीत अभी आपने सुना आराधना फिल्म से, और हम सभी जानते हैं कि अपनी टाइम का सुपर हिट सॉन्ग ये रहा था और आज भी अक्सर हम सुनते हैं इसे, कोई भी गुनगुना रहा होता है कहीं भी। चलिए आज हम वक्त की पही को थोड़ा सा और पीछे घुमाएंगे और बात करेंगे ऐसे गीतों की जो पुराने नहीं होते, भुलाए से भी भुलाए नहीं जानते, और सुनेंगे कुछ ऐसे सुर जो हर दौर में गूंजते हैं। सुनवाने जा रहे हैं आपको सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर का गाया ये गीत, जिसे सुनकर आप भाव विभोर हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: पुराने फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला से। और देखिए ना, प्यार का जिक्र जब भी होता है किशोर कुमार के

ख्याल है जो रूह तक उतर जाता है। तो किशोर कुमार के गाए गीत, लता मंगेशकर के गाए गीत और मोहम्मद रफ़ी के गीतों का अपना ही आनंद है सुनने का। तो अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं वो हमने लिया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में कश्मीर की कली फिल्म से। आइए सुनते हैं।

0: दौर चाहे कोई भी हो, जो गीत पुराने होते हैं वो सभी के मन को भा जाते हैं, है ना। और देखिए इन पुराने गीतों में कितनी मिठास और कितना अपनापन हमें महसूस होता है। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला से। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: एक कंपोजर हैं जिनकी कंपोजिशन जितनी दिल को छूती है, मेरे ख्याल से इंडियन हिस्ट्री में इतना दिल को छूने वाली कंपोजिशन किसी ने नहीं बनाई। जब से इंडस्ट्री बनी है तब से मुझे ऐसा लगता है। और उनका नाम है मदन मोहन जी। इस तरह कहते हैं कि मदन जी जो हैं
2: गजल के किंग हैं,
1: लेकिन मदन जी वॉज अ वेरी मॉडर्न कंपोजर और वो हर किस्म के उन्होंने गाने बनाए हैं।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: पुराने फिल्मों से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जुड़े हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। समय है पहाड़ी संगीत का। कार्यक्रम में आनंद लेंगे हिमाचली लोकगीतों का, जिनको सुनते हुए सुकून के साथ साथ उभर आते हैं मन मस्तिष्क पटल पर हरे भरे खेत खलियान, कलकल करते झरने नदियां और ऊंचे पर्वतों के साथ साथ झूमते हुए वृक्ष भी। शुरुआत करते हैं इस लोकगीत से, जिसे गाया है नेक सिंह ठाकुर ने।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: पहाड़ी संगीत में हिमाचली लोकगीतों का आप आनंद ले रहे हैं और देखिए ना, लोकगीतों का जब भी जिक्र होता है तो किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति या रीति रिवाजों का व्याख्यान अपने आप ही हो जाता है। तन मन को तरोताजा करते हैं ये लोकगीत और इनकी धुन भी, बोल भी हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आनंदित होते हैं हम इन लोकगीतों को सुनकर। दिन भर की थकान भी अपने आप ही मिट जाती है। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं अगला लोकगीत जिसे गाया है टिंकू ने।

पहाड़ी संगीत का आनंद आप ले रहे हैं एफएम शिमला से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं रीना दीवान के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: कार्यक्रम जा रहा है समापन की ओर और घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है जाने के लिए। सुनाएंगे आपको कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, लेकिन उससे पहले एक संदेश।
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
0: आइए अब सुनते हैं मंजू भारद्वाज और सीमा भारद्वाज की आवाज में ये लोकगीत।

पहाड़ी संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है।

0: बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। IPL क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. Union Home Minister Amit Shah has said the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janajati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights.
2: Narendra Modi Sarkar ke Guru Mantri ye nate.
3: As the Home Minister of the Narendra Modi government, I want to make it clear that no restriction of the UCC will apply to the tribal world or any tribal individual. No violation of tribal rights will occur because of the UCC. In the two states where the Bharatiya Janata Party is in power, Gujarat and Uttarakhand, we have implemented the UCC, and by making special provisions, the Narendra Modi government has work to keep all the tribal communities out of the purview of the UCC.
1: The Home Minister also said the tribal welfare budget, which stood at 28,000 crore rupees during the Congress-led government, has been increased to 1,50,000 crore rupees under the Narendra Modi government. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The External Affairs Ministry said the leaders will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing initiatives and other international issues of mutual concern. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and the United States have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said that India and the US must always be clear about zero tolerance for terrorism.
4: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge.
1: U.S. President Donald Trump dialed U.S. Ambassador to India Sergio Gore

0: दिल की बातें हर किसी की समझ में नहीं आती, सिर्फ उन्हें समझ आती है दिल में जिनके मोहब्बत घर कर जाती है। गर्लफ्रेंड, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। 12:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला सम्मेलन। ये कार्यक्रम आप FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।

0: लीजिए, हाजिर हैं हम आपका अपना कार्यक्रम महिला सम्मेलन लेकर। आज के कार्यक्रम में आपके साथ रहने वाली है आपकी रेडियो हम सफर सुनीता
1: और कमलेश शर्मा को आप सभी का
0: नमस्कार। कमलेश, कहते हैं ना कि महिलाएं केवल जिम्मेदारियों का ही नाम नहीं है, वे सपनों, भावनाओं और खुशियों का संसार भी है। इसीलिए हर महिला को अपने जीवन में मुस्कुराने, आगे बढ़ने और अपने मन की सुनने का अधिकार भी है।
1: बहनों, आज की आधुनिक महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। घर की जिम्मेदारियों से लेकर नौकरी, व्यवसाय और आत्मनिर्भरता तक महिलाएं अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कमलेश, लेकिन सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं है। आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए ज़रूरी है कि सही वित्तीय जागरूकता यानी आर्थिक जागरूकता हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना। तो आइए बहनों, कार्यक्रम के आज के अंक में जानेंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरना क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या है।
1: सबसे पहले बात करते हैं कि ITR है क्या। बहनों, ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें हम सरकार को अपनी साल भर की कमाई का ब्यौरा देते हैं। हमने कितना कमाया, कहां से कमाया और कितना टैक्स जमा किया, इसकी पूरी जानकारी ITR में दी जाती है।
0: जी, और साथ ही साथ बहनों, अगर आपकी आय निर्धारित इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तब भी ITR भरना फ़ायदेमंद होता है। ये आपकी इनकम का एक आधिकारिक रिकॉर्ड बन जाता है जो आने वाले समय में कई तरह के सरकारी कामों में आपकी मदद करता है। ITR सिर्फ टैक्स पे करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आपकी मेहनत, आपकी आमदनी और आपके आत्मविश्वास का आधिकारिक दस्तावेज भी है।
1: अब अगर बात हम अपनी बहनों को, खास तौर पर जो वर्किंग नहीं है, तो वो यही सोच रही होंगी कि उनकी कोई इनकम है ही नहीं तो टैक्स कैसा।
0: जी,
1: तो यहाँ हम आपको बता दें कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई टैक्स पे करना नहीं है।
0: बिल्कुल, और रिटर्न भरना और टैक्स पे करना बहनों दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कर योग्य आमदनी के दायरे में नहीं आता या ज़ीरो आमदनी है तो भी आयकर रिटर्न भर सकता है। अपनी साल भर की आमदनी का एक एक ब्यौरा सरकार को लिखित रूप में बताना इनकम टैक्स रिटर्न कहलाता है। आइए अब जानते हैं कि ITR फाइल करने के फ़ायदे क्या क्या हैं।
1: जो बहनें ज़ीरो इनकम पर या मामूली इनकम पर भी ITR फाइल करती हैं, उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि इन फ्यूचर वो कभी भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो उसके लिए बिज़नेस लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेना इजी हो जाता है। इसके लिए आपको लोन अप्लाई करते समय ITR की कॉपी लगाना ज़रूरी हो जाता है।
0: जी बिल्कुल, और साथ ही साथ बहनों, ITR आपको वीज़ा लेने में भी काफ़ी मदद करता है। इसमें भी आपको आवेदन के साथ साथ 2 से 3 सालों की ITR

0: हर कॉपी लगानी होती है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कमलेश, लेकिन ऐसा करने से वीज़ा लेने का जो प्रोसेस होता है वो इजी हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं और इसके बावजूद आपको बैंक में जमा राशि पर मिले ब्याज या फिर किसी तरह की सेविंग्स पर या ब्याज की जो इनकम होती है उसमें आपका कोई TDS कटता है, तो उस धन को वापस लेने के लिए उस वित्तीय वर्ष का अपना ITR दाखिल आप कर सकती हैं। अगर आपका रिफंड बनता है तो आपको सीधे जो है आपके बैंक अकाउंट में जो राशि कटी होगी वो आपको मिल जाएगी।
1: तो बहनों, हमने जाना कि ITR केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं है बल्कि महिलाओं की आर्थिक निर्भरता और सुरक्षित भविष्य की तरफ बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: जी बिल्कुल, और जब महिलाएं अपने अधिकारों, इनकम और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझती हैं तो वे ना सिर्फ खुद मजबूत बनती हैं बल्कि परिवार और समाज को भी एक नई दिशा देती हैं।
1: आप अपनी सेहत, अपने सपनों और आर्थिक समझ का ख्याल रखिए, क्योंकि जो महिला अपने भविष्य की तैयारी करती हैं वही महिला आत्मनिर्भरता की नई कहानी भी लिखती हैं।
0: जी बिल्कुल, और जानकारी के साथ साथ कमलेश, अब बहनों के लिए एक गीत हो जाए।
1: जी

0: कमलेश, देखिए गीत संगीत के साथ साथ जब जानकारियों का सिलसिला रहता है तो मन को बहुत ही आनंद आता है और दिन जो है वो बन जाता है एक तरह से। और कार्यक्रम में बढ़ते हैं अब आगे और जानते हैं कि कार्यक्रम में आगे और क्या क्या है। और बहनों देखिए, हवाओं में घुली मीठी सी वाणी, हर दिल की धड़कन है आकाशवाणी, ज्ञान मनोरंजन और संस्कारों का मान, सदियों तक गूंजे इसका नाम।
1: सुनीता, मैं समझ गई और हमारी बहनें भी समझ ही रही होंगी आपका इशारा, आकाशवाणी के 90 वर्षों के सुनहरे सफ़र की अब आप बात करने वाली हैं।
0: जी बिल्कुल कमलेश, और देखिए एक ऐसी आवाज़ जिसने पीढ़ियों को जोड़ा, देश को एक सूत्र में बांधा और हर दिल तक अपनी पहचान बनाई, ये सफ़र सिर्फ तकनीक का ही नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कृति और विश्वास का सफ़र भी है।
1: तो आइए चलते हैं समय की उस यात्रा पर जहाँ पर हर दौर में रेडियो ने लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी।
0: जी बिल्कुल कमलेश, और बात अगर भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की करें तो वर्ष 1927 में ये शुरुआत हुई और उस समय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा मुंबई और कोलकाता से प्रसारण शुरू किया गया। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और फिर 1957 में इसे नया और लोकप्रिय नाम मिला, आकाशवाणी, यानी जिसका अर्थ है आकाश से आने वाली वाणी।
1: बहनों, समय का एक दौर वो भी रहा जब मनोरंजन के साधन बहुत ही सीमित हुआ करते थे, या यूं कहें कि रेडियो ही एक ऐसा मात्र साधन था जो लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ गीत संगीत भी पहुंचाता था।
0: जी,
1: और
0: जी,
1: गांव की चुपाल हो, शहर की गलियां हो, खेतों में काम करते किसान हो या रात में पढ़ाई करते स्टूडेंट्स, रेडियो हर किसी का साथी बना।
0: जी बिल्कुल, और जैसा कि हमने कहा उस समय जो है सीमित हुआ करते थे साधन, तो यही एकमात्र साधन था जो हर तरह की जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी करता था और साथ ही साथ हर भाषाओं में भी जो है इनकी प्रसारण होते थे। तो देश दुनिया की खबरें, मौसम की जानकारी, खेतीबाड़ी की सलाह और मनोरंजन सब कुछ रेडियो से ही मिलता था। और 90 वर्षों के इस सफ़र में आकाशवाणी ने देश की संस्कृति और कला को नई पहचान दी। भजन, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत और कविताएँ, हर कला को मंच मिला और आकाशवाणी से मिला।
1: कई महान कलाकारों की आवाज़ें सबसे पहले रेडियो के माध्यम से ही लोगों तक पहुंची। रेडियो ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज को जागरूक भी बनाया।
0: जी बिल्कुल,
1: स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, महिला

0: सशक्तिकरण और पर्यावरण जैसे विषयों पर प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों ने लोगों को एक नई सोच दी। और जब जब देश मुसीबत या मुश्किल दौर से गुजरा, तब भी रेडियो लोगों की ताकत बना। प्राकृतिक आपदा हो, युद्ध हो या कोई राष्ट्रीय संकट, आकाशवाणी की आवाज़ हमेशा लोगों तक भरोसा और हिम्मत लेकर पहुंची है।
1: जी बिल्कुल, आपको याद होगा बहनों कि कोविड काल में भी रेडियो ने ही लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई, और साथ ही साथ क्या स्थिति रही उस समय और कितने मुश्किल दौर वो रहा, तो वो हम सबके सामने है कि किस तरह से रेडियो ने उस समय भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अभी तक भी जो सटीकता और विश्वसनीयता है वो आकाशवाणी में ही है। और रेडियो की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये दिल से जुड़ता है और सिर्फ सुनाई नहीं देता बहनों, बल्कि महसूस भी होता है, क्यों कमलेश?
0: बिल्कुल, और देखिए सुनीता, क्या है ना, वक्त के साथ तकनीक बदली
1: जी,
0: लेकिन रेडियो का महत्व आज भी कायम है।
1: जी बिल्कुल,
0: आज FM रेडियो, ऑनलाइन रेडियो और मोबाइल ऐप्स के जरिए रेडियो पहले से ज़्यादा आधुनिक हो चुका है, लेकिन रेडियो की आत्मीयता और अपनापन आज भी वैसे का वैसा ही है।
1: बिल्कुल, और रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं है कमलेश, बल्कि भावनाओं और आवाज़ों का ऐसा माध्यम है जो लोगों को आपस में जोड़े रखता है। आकाशवाणी ने देश की विविधता को एकता में पिरोने का काम किया है। भाषाएं अलग हो सकती हैं, बोलियां अलग हो सकती हैं, लेकिन रेडियो की भावना हमेशा एक ही रही है, सबको साथ लेकर चलना।
0: तो बहनों, ये था आकाशवाणी के 90 वर्षों का गौरवशाली सफर।
1: जी,
0: हम कामना करते हैं कि रेडियो की ये मधुर आवाज़ें आने वाले समय में भी यूं ही हर दिलों तक पहुंचती रहे। बहरहाल समय एक गीत का है, तो चलिए सुनवाते हैं बहनों को प्यारा सा गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: बहनों आइए अब बात करते हैं परवरिश की और बात करेंगे कि बच्चों की खेल खेल में विकास की शुरुआत कैसे कर सकते हैं।
1: जी बहनों, बचपन यानी 1 से 3 साल की अवस्था जो बच्चों के विकास की नींव रखने का समय होता है, इस उम्र में बच्चे अपने हाथों और उंगलियों से चीज़ों को छू कर, उन्हें पकड़ कर और उनको आजमा कर दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल, और यही छोटी छोटी हरकतें उनके दिमाग, एकाग्रता और समन्वय क्षमता को भी आकार देती हैं।
1: जी, और अच्छी बात ये है कि इसके लिए महंगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं होती। घर पर मौजूद साधारण चीज़ों से की गई गतिविधियाँ खेल खेल में बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स, धैर्य और आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत करती हैं।
0: बिल्कुल, और बच्चे खेलते खेलते बहुत कुछ सीखते हैं, है
1: जी
0: ना। खेलते हुए
1: जी
0: सीखना उन्हें बच्चों के विकास का सबसे असरदार तरीका भी है, और ये मज़ेदार भी होता है। और ये मज़ेदार गतिविधियाँ उनकी हाथ, आँख और तालमेल और सोचने क्षमता की जो क्षमता होती है उसको मजबूत करता है।
1: बिल्कुल, और बहुत सी चीज़ें बच्चे घर पर ही करना शुरू कर देते हैं। जब आप कोई काम कर रहे हो तो बच्चे भी उसमें शामिल हो जाते हैं। वो काम आपके लिए तो काम होता है, लेकिन बच्चे उसमें खेल ढूंढ लेते हैं और आनंद भी लेते हैं, जिससे उनका विकास होता है।
0: बिल्कुल, देखो बहनों क्या होता है ना कि जब आप कोई भी काम कर रही होती हैं, जैसे कोई रसोई का काम कर रही होती हैं, तो सामने बच्चों के आकर बैठ ही जाती हैं,
1: जी जी
0: थाली में कुछ चीज़ ले रही हैं, तो बच्चे भी क्या होते हैं, पास आकर उसको छूते हैं, उसमें अपना हाथ डाल लेते हैं। आप चाहे दाल को बीन रही हैं, चावल को बीन रही हैं, या कोई सब्जी की साफ़ सफाई कर रही हैं, तो बच्चे अपनी उंगलियाँ उसके घुमाते हैं, छूते हैं और महसूस करते हैं कि ये क्या चीज़ है।
1: जी
0: तो इस तरह
1: बिल्कुल
0: आड़ी तिरछी वो रेखाएँ बनाते हैं, आकृतियाँ बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो उंगलियां हैं और मांसपेशियां हैं, उसकी जो मूवमेंट होती रहती है।
1: बिल्कुल, और ये जो गतिविधियां हैं उंगलियों के नियंत्रण और स्पर्श की समझ को बढ़ाती हैं। इससे उन्हें जो है ये भी पता लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों को कैसे हाथ में पकड़ा जाता है।
0: बिल्कुल
1: आपने देखा होगा कमलेश, कि जैसा आपने पहले भी कहा कि दाल बीनने बैठो या चावल बीनने या कोई भी अनाज लेकर हम बैठ जाते हैं, तो बच्चे उसमें आकर के अपने दोनों हाथ ऐसे डाल करके उन दानों को ना महसूस करना शुरू कर देते हैं, या फिर बिखेर भी देते हैं और फिर उनको एक एक करके उठाना शुरू कर देते हैं। तो बहनों, ये सिर्फ बच्चों की आप इसे शरारत ना समझे, ये उनका सीखने का तरीका है। वो इनसे सीख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि उनके आसपास की जो चीज़ें हैं उनका आकार, उनका प्रकार, और साथ ही साथ उन चीज़ों पर वो अपना नियंत्रण भी बनाना चाहते हैं।
0: बिल्कुल सुनी,

0: क्या होता है ना, छोटी चीजें बच्चे वैसे ही उठा लेते हैं तो उनकी
1: जी
0: उंगलियों में से वो निकल जाती हैं,
1: जी जी
0: उन्हें पता
1: बिल्कुल
0: चलता है कि छोटी चीज को किस तरह से उंगलियों को जोड़कर उठानी है, बड़ी चीज है तो किस तरह से पकड़नी है।
1: जी
0: अच्छा, कई बार बच्चा आपकी चीजों से भी खेलना शुरू कर देता है, जैसे आप मेकअप कर रही हैं या मेकअप का सामान सामने रखा हुआ है
1: जी
0: तो उसके तरफ ज्यादा बच्चा जाता है, तो उन चीजों को भी हाथ लगाता है, और कोई रबड़ है या कोई चूड़ियां हैं उन्हें हाथ में लगा लेता है, या कोई लिपस्टिक है उनको भी वो छूना शुरू कर देता है। और कई बार आपने देखा होगा बच्चे खेल खेल में ना
1: जी जी
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: सारे जैसे काजल लगा लेता है, तो उसे ये नहीं
1: जी
0: पता होता कि काजल वो मुंह में पोत लेता है,
1: जी
0: बिल्कुल
1: जी
0: कालक अपने मुंह में लगा लेता है। तो इस तरह की वो प्यारी प्यारी सी जो एक्टिविटी करता है उसमें आपको तो हंसी आती है,
1: जी
0: लेकिन बच्चे
1: बिल्कुल
0: को फिर अच्छा भी लगता है, वो भी हंसता है, लेकिन उसे ये
1: जी
0: पता होता है ये कौन सी चीज किस तरह से कहाँ लगाई जाती है, थोड़ा सा उसको धीरे धीरे वो समझ आना
1: जी
0: शुरू
1: और
0: हो जाता है।
1: आपने ये भी देखा होगा कि आजकल हम भी अगर अपने बच्चों का बचपन याद करें या हमारा भी बचपन जब हमारे माता पिता बताते हैं, तो ऐसे जो किस्से हैं या ऐसे वाक्य हम कह सकते हैं कि कुछ हमने मुंह पे लगा दिया, कुछ हटा दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है यादें भी बनती हैं इससे हमारी, कि जब
0: बिल्कुल
1: बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें हंस हंस कर ये जो है ये सारी बातें बताते हैं कि आपका जो बचपन है वो कैसा था। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल तो देखिए मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, क्लिक करके भी रख सकते हैं बच्चों की फ़ोटोज़,
0: बिल्कुल
1: और घर पे जो है बाद में आप उन्हें दिखा भी सकते हैं कि देखिए आप जो है किस तरह की शैतानियाँ कहें चाहे उन्हें सीखने का तरीका कहें ये होती रहती थी। जी
0: जी हाँ बिल्कुल। और देखिए बहनों, जब आप आटा गूंथने लगती हैं, रोटी बनाती है, तो उस समय बच्चे बीच में आ जाते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है आटे से खेलना या कोई चीज़ बनाना, या आप उनको क्ले भी देती हैं कि ताकि
1: जी
0: वो सीखे, तो इस तरह ऐसे करने से बच्चे की जो रचनात्मकता बढ़ती है।
1: जी बिल्कुल और बच्चों को प्लास्टिक के रंगीन कटोरे, गिलास या ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं वो देते हैं बच्चों को खेलने के लिए। जैसे अगर बच्चा हमारे काम में दिक्कत करता है या हमें काम करने से रोकता है या बच्चे, तो हम क्या करते हैं उनके पास खेलने के लिए दे देते हैं, जिसे वो पिरामिड की तरह या तो सजा देते हैं या फिर ऐसे खिलौने उन्हें दिए जा सकते हैं जिससे वो जोड़ कर कोई चीज़ बना सके, तो इससे भी उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, ऐसा करने से क्या होता है, बच्चे में संतुलन की समझ और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित होती है, उसे पता लगता है कि किस तरह से चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, क्यों ये चीज़ गिर गई है, तो इस तरह से उनका जो है वो क्षमता यानी कि उनका जो दिमाग है और वो भी विकसित होता है।
1: जी बिल्कुल और बहनों अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी रुचि को पहचानना है और बच्चों को बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से खेलने के लिए समय भी देना है। और साथ ही साथ बहनों आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आपका बच्चा 1 से 3 साल का है तो उन्हें छोटी चीज़ें बिल्कुल भी ना दें जिसे वो मुँह में ले सकें, ऐसी चीज़ें उनको खेलने के लिए बिल्कुल भी ना दें जिससे उनको नुकसान हो, तीखी और नुकीली चीज़ें उनके हाथ में ना दें। कहने का सिर्फ यही अर्थ है बहनों, हमारा तात्पर्य है कि आप जो है उन्हें खेलने के लिए खिलौने या कोई घर की अगर चीज़ें हैं वही दें जिससे उनको कोई भी नुकसान ना हो।
0: जी हाँ बिल्कुल बहनों, हम तो यही चाहते हैं कि खेल खेल में आपके बच्चों का विकास ही होना
1: जी
0: चाहिए,
1: बिल्कुल
0: आप उन पर ध्यान दें, सहयोग दें ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके और
1: जी
0: बचपन से ही अच्छी आदतें, अच्छी बातों की जो नींव है उनमें पड़ सके।
1: जी बिल्कुल और कार्यक्रम में गीत का समय हो गया है तो सुनवाते हैं बहनों को ये गीत।
0: जी

0: यूं चलते चलते मैं आइए बात करते हैं कि घर में खाना तो हर रोज ही बनता है।
1: जी बिल्कुल।
0: खाना जितना खाने में स्वादिष्ट होता है, देखने या सही तरीके से सर्व करने से और भी अच्छा लगता है।
1: जी, और जब घर में कोई किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी छोटे छोटे जो आयोजन होते रहते हैं, तो खाना सही तरीके से रखा होना और परोसा जाना बहुत ज़रूरी होता है। व्यवस्थित चीज़ें रखने से सुंदर तो लगती है, साथ ही बहनों खाना लेने में भी सुविधा होती है।
0: अगर आप परोस कर खाना दे रही हैं तो किस तरह से प्लेट सजी होनी चाहिए, ये भी एक ज़रूरी बात होती है, जो अगर आप कर लेते तो अच्छा लगता है ना।
1: जी बिल्कुल। जैसे अगर एक तरफ आप सूखी चीज़ें जैसे भजिया, टिक्की, कटलेट, नमकीन और स्नैक्स रखें, और साथ ही साथ मैंने इन्हें किनारे पर रखें ताकि कुरकुरापन जो है इनका वो बना रहे।
0: जी बिल्कुल। दही या ग्रेवी वाली चीज़ें एक बॉल में आप रखें, दही बड़े, रायता, चाट है वो बाकी चीज़ें को गीली नहीं करती, और चटनी मीठी हो या हरी हो, किस तरह की भी हो, या जैसे सॉस भी आप रखती हैं तो वो बहुत कम मात्रा में रखें। चाहे तो इसके लिए आप छोटी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मिठाई अलग तरह से और सर्व करें, अगर नमकीन के बीच में ही आप मिठाई रख देंगे तो वो एक तो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी, और साथ ही साथ अगर अंत में मिठाई रखती हैं तो वो बहुत

0: अच्छी लगती है, और बॉल में रखेंगे तो वो और भी बेहतर रहेगा।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही साथ बहनों आप इसके अलावा दही बड़े और चाट जैसी जो चीज़ें होती है वो छोटी कटोरी में देना ही बहुत अच्छा लगता है। रंगों का संतुलन भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हरी चटनी, सफ़ेद दही, सुनहरे जो स्नैक्स हैं आपके, वो प्लेट को आकर्षक बनाते हैं।
0: और ऐसी थाली का आप इस्तेमाल कर सकती हैं जिसमें बीच बीच में जैसे आकार बने होते हैं, यानी
1: जी,
0: कि
1: अलग अलग चीज़ें रखने के लिए अलग अलग सी जगह होती है और उसमें वो आपस में मिलती भी नहीं है। तो अगर ऐसी थाली का भी आप यूज़ करती हैं तो वो भी एक तरह से जो है दिखने में बहुत अच्छी लगती है, और साथ ही साथ खाने में भी जो है आसानी होती है, वो सारी चीज़ें मिक्स नहीं होती।
0: अगर आप बुफे रख रही हैं तो एक ही तरफ को चाट या पे एक तरफ को कर दें और मेन कोर्स एक तरफ को कर दें और मिठाई एक जगह रखें, इससे क्या होता है जो खाना ले रहे हैं उनको बहुत ही आसानी हो जाती है।
1: जी बिल्कुल। और बहनों अगर खाना खाने के आनंद की अगर हम बात करें तो एक तो बैठकर ही सबसे बढ़िया लगता है, और साथ ही साथ पूरे परिवार के लोग जब हों तो ऐसे में जो है खाना खाने का आनंद जो है वो दुगना हो जाता है। और बैठने की जो जगह है वो भी ऐसी हो, साफ़ सुथरी हो, थोड़ा काफ़ी जगह हो जिसमें लोग जो है आ सकें, और ऐसा ना हो कि आपको जो है थोड़ा कंजेस्टेड होकर बैठना पड़े। तो खाना परोसने के साथ साथ जगह का भी ध्यान रखें अगर आप कोई भी छोटा आयोजन घर पे कर रही हैं, क्योंकि स्वाद और भी जो अच्छे से अगर आप चाहती हैं कि स्वाद बड़ा रहे तो इसके लिए आपको कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी।
0: जी
1: क्यों
0: हाँ बिल्कुल। और अब अंत में बहनों को गीत भी सुनवा देते हैं।
1: जी,

बहनों, जो वक्त हंस के बिता लिया बस वही अपना है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, इसी वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सम्मेलन। इस समय दोपहर का 1 बजने को है। समाचारों के लिए अब आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद के तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: हर दिल जो प्यार करेगा, जी हाँ, इस फिल्म का गीत आपको सुनाने जा रहे हैं प्रीति और पिंकी की आवाज़ों में। अनु मलिक का संगीत है और बोल हैं समीर की, आइए सुनते हैं।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल की धड़कन और मेरी सदा है वो, मेरी पहली और आखिरी वफा है वो, चाहा है उसे चाहत से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है वो। म्यूज़िक मस्ती प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप FM शिमला से, आइए एंजॉय कीजिए प्रोग्राम का नेक्स्ट सॉन्ग।
3: दोस्तों सुनोगे मेरी आवाज़, तो घुंघरू इधर

0: माथे को और दे दो मेरे हाथों में साज। ये मेरा दावा है दोस्तों।
1: क्या

यकीनन इस सॉन्ग के साथ आप सबका भी मन थिरकने और गुनगुनाने का कर रहा होगा, है ना। और जब तक होंठों पे गीतों के मोती ना सजे हो तब तक मन खुश नहीं होता और ज़िंदगी जीने का भी आनंद नहीं आता। तेरी एक मुस्कान से दिल धड़क जाए, तेरी यादों से रूह महक जाए, तुम बिन हर पल लगता है अधूरा सा, तुम साथ हो तो जैसे दुनिया रंगीन हो जाए। म्यूज़िक मस्ती प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप FM शिमला से। कार्यक्रम के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये गीत जो आज भी सबका मनपसंद बना हुआ है, बंटी और बबली फिल्म से। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: नैनों की तो बात ही क्या कहें, नैना काले हो या नीले हो बहुत कुछ कह जाते हैं। और कहते भी है ना कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, आंखों में वो जादू होता है जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। और जब दिल की बात लफ्ज़ों में ना कही जाए तो आंखें सब कुछ कह जाती है।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर

0: सोच समझकर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: म्यूज़िक मस्ती प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग आप एंजॉय करने जा रहे हैं, कभी खुशी कभी गम फिल्म से के इस गीत के रूप में। जी हाँ, लेकिन उससे पहले आपको एक संदेश।
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है, सब हंसते रहे इतना ही बहुत है, हर वक्त हर कोई साथ नहीं रह पाता, याद एक दूसरे को करते रहे बस इतना ही बहुत है। म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में आज बस इतना ही, लेकिन आपको नहीं जाना है कहीं भी, यूं ही बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए मुस्कुरा।

जुड़े हैं आप आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बज चुके हैं, सबरंग कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम, और सबसे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं ये पंजाबी सॉन्ग।

0: सब रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप। दोपहर हिंदी समाचारों के लिए आइए ले चलते हैं आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NTA ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट UG पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की हिरासत में भेज दिया है। NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधान

विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच

0: बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबे के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा, पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। शिखरों के स्वर कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। हिमाचल की हसीन वादियों में गूंजने वाले लोकगीतों का आनंद आप लेंगे इस कार्यक्रम में, तो क्यों ना शुरुआत की जाए इस लोकगीत के साथ जिसे गाया है मैना देवी ने।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: हमारी संस्कृति की पहचान, परंपराओं का व्याख्यान, आम जनमानस का गान, लोकगीत हर दिल को छू जाते हैं, है ना, और अपनी अनूठी छाप भी छोड़ जाते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत अमर सिंह चौहान की आवाज़ में।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: शिखरों के सुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला से, और आनंद ले रहे हैं हिमाचली लोकगीतों का। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं पुष्पा देवी का गाया लोकगीत।

0: ये बारहमासा आपने सुना हेमराज चंदेल की आवाज में।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित होगा, जिसे आकाशवाणी के FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी ये समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के तहत कल प्रदेश की 1293 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान के सुचारू संचालन के लिए कुल 8198 मतदान दल गठित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों के प्रदेश भर में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए सभी मतदान दल अपने अपने केंद्रों में पहुंच चुके हैं। प्रदेश के सभी बड़े जिला कांगड़ा में भी पंचायत चुनावों को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पहले चरण के मतदान के लिए जिले में 895 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने बताया कि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: हमारी जो फर्स्ट फेज के इलेक्शंस हैं उसमें 895 पोलिंग बूथ्स हैं और इसमें पूरे प्रबंध करे गए हैं ताकि कानून व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चले और जो भी लोग अपने कीमती वोट को एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं वो वहां पे जाके एकदम अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर पाएं, अपना वोट दे पाएं और उनको किसी भी डर और किसी भी चीज़ का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था रखी है। सारे पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट की ज्यूरिडिक्शंस पर नाकाबंदी रही है और ये नाकाबंदी हमारी कंटिन्यूसली टिल द टाइम ऑफ पोलिंग रहेगी ताकि रात की जो अवैध गतिविधि
0: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक राधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी ज़्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। याचिका में भविष्य की परीक्षाओं की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाने की भी मांग की गई है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में पिछले सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और आयात लागत बढ़ने की वजह से तेल कंपनियों पर भी दबाव बढ़ा है। इसके अलावा रिफाइनिंग मार्जिन में बदलाव का असर भी ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ प्रदेश में विकास व जन कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान सुशासन और प्रदेश में चलाई जा रही विकासात्मक पहलों पर भी संवाद किया गया। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 6ठी से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की कवायद तेज कर दी है। बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने धर्मशाला में बताया कि स्कूली विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक व डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI शिक्षा की आवश्यकता बढ़ने वाली है और इसी उद्देश्य से स्कूल शिक्षा बोर्ड ने AI को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। विशाल शर्मा ने बताया कि इस बारे में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पूरे वर्ल्ड की जो AI लिटरेट संख्या है उसमें 17% जो है वो हिंदुस्तान में, हम इस पाठ्यक्रम को लागू नहीं कर पाए थे तो इसमें हम भी पीछे नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए हमने एक पाठ्यक्रम 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक जो है यहाँ पे हमने 2 कार्यशालाएँ की थी। राज्य सरकार से हमने सेक्रेटरी एजुकेशन को अनुरोध किया कि आप हमें प्रेजेंटेशन के लिए समय दें, किस तरीके से इस पाठ्यक्रम को लागू करना है, कब लागू करना है, इसके बारे में फिर राज्य सरकार जैसा निर्णय लेगी वैसा हम आगे करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और

0: गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल का पहला क्वालिफायर मैच कल खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैच को जीतने वाली टीम आईपीएल के फाइनल में पहुंचेगी। इस मैच को लेकर पीएचपीसीए ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए सामयिक चर्चा। विषय है, संपूर्ण विश्व को पर्यावरण केंद्रित नए विकास मॉडल की आवश्यकता। वाचक स्वर राकेश शर्मा का है।
0: मानव सभ्यता आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां से पीछे मुड़कर देखने पर विकास की चमक दिखाई देती है, लेकिन आगे देखने पर विनाश की भयावह छाया भी स्पष्ट दिखाई देने लगी है। विज्ञान, तकनीक, उद्योग, शहरीकरण और उपभोग की संस्कृति ने मनुष्य को अभूतपूर्व सुविधाएं दी, परंतु इसी तथाकथित विकास ने पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन को गहराई से घायल भी किया है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट, वायु प्रदूषण जैसे विविधता के विनाश, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे से जूझ रही है। ये केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं बल्कि मानव अस्तित्व का संकट बन चुकी है। 24 मई 2026 तक की परिस्थितियों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी लगातार चेतावनी दे रही है। कहीं तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं बाढ़ शहरों को डुबो रही है, तो कहीं सूखे से जीवन ठहरता जा रहा है। भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में मौसम का स्वभाव तेजी से बदल रहा है। गर्मी की अवधि लंबी होती जा रही है, वर्षा अनिश्चित होती जा रही है और प्राकृतिक आपदाएं अधिक विनाशकारी बनती जा रही हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। ये दशकों से अपनाए जा रहे उस विकास मॉडल का परिणाम है जिसने प्रकृति को केवल संसाधन माना, साझेदार नहीं। आधुनिक विकास की पूरी अवधारणा अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक उपभोग और निरंतर आर्थिक विस्तार पर आधारित रही। विकास को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक वृद्धि और उपभोग क्षमता को प्राथमिक मानक बना दिया गया, जबकि पर्यावरणीय संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों की सीमाएं और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों को गंभीरता से नहीं लिया गया। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा कंक्रीट के जंगलों में बदलता जा रहा है। प्राकृतिक जंगलों को काटकर शहर बसाए गए, नदियों को मोड़ा गया, पहाड़ों को विस्फोटों से तोड़ा गया, समुद्र तटों पर अंधाधुंध निर्माण हुआ, खनिजों और जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक दोहन किया गया। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता गया। ग्लोबल वार्मिंग अब केवल वैज्ञानिक रिपोर्टों का विषय नहीं रह गया है, इसका प्रभाव सामान्य जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। यूरोप में असामान्य गर्मी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जंगलों की आग, अमेरिका में चक्रवात और तूफान, अफ्रीका में जल संकट और एशिया में बाढ़ तथा लू की घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि जलवायु असंतुलन पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। भारत की स्थिति भी अत्यधिक गंभीर होती जा रही है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार बढ़ता तापमान जीवन को कठिन बना रहा है। हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, नदियों का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है, कई राज्यों में जल संकट गहराता जा रहा है, खेती पर मौसम परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। विडंबना यह है कि विकास का लाभ सीमित वर्ग तक पहुंचा, लेकिन पर्यावरणीय संकट का बोझ पूरी मानवता उठा रही है। अमीर देशों और बड़े उद्योगों ने पृथ्वी के संसाधनों का सबसे अधिक दोहन किया, लेकिन जलवायु परिवर्तन का सबसे गंभीर प्रभाव गरीब देशों और कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है। गरीब किसान, मजदूर, मछुआरे और आदिवासी समुदाय सबसे पहले और सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आज आवश्यकता केवल पर्यावरण संरक्षण की नहीं बल्कि विकास की पूरी अवधारणा का पुनर्भाषित करने की है। ऐसा मॉडल जिसमें आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय संतुलन साथ साथ चलें। वर्तमान विकास मॉडल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अनंत विकास की कल्पना पर आधारित है, जबकि पृथ्वी के संसाधन सीमित है। यदि पूरी दुनिया उसी उपभोग स्तर को अपनाने लगे जो विकसित देशों में है, तो पृथ्वी के संसाधन बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। इसलिए विकास का अर्थ केवल अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग नहीं हो सकता। पर्यावरण केंद्रित विकास मॉडल का पहला आधार सतत विकास होना चाहिए। इसके साथ ही सामयिक चर्चा

0: संपन्न हुई। नमस्कार।
1: आज की सामयिक चर्चा का विषय था संपूर्ण विश्व को पर्यावरण केंद्रित नए विकास मॉडल की आवश्यकता। वाचक स्वर राकेश शर्मा का था। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ और ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत लेकर हाजिर हैं हम। दिल थाम कर हो जाइए तैयार सुनने के लिए ओल्ड हिट्स। और देखिए ना, जब भी ओल्ड सॉन्ग्स की हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे शमी कपूर का डांस और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ मिल जाए तो बात बन जाए, है ना। देखिए ना, शमी कपूर का डांस तो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये प्यारी सी गज़ल।

0: ओल्ड हिट सॉन्ग्स वैसे तो बने ही मस्ती बिखेरने के लिए है, लेकिन हमें ऐसे भी गीत सुनने को मिलते हैं जिसमें मेलेडी भी है, सैड सॉन्ग भी हम सुनते हैं ओल्ड हिट्स में। तो चलिए अब जो अगला गीत है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। जिंदगी में चाहे कितनी ही टेंशन क्यों ना हो, इन सॉन्ग्स को सुनकर मन खुश हो ही जाता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, लेकिन उससे पहले एक संदेश।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

सोचा ना था जिंदगी में कभी ऐसे भी फंसाने होंगे, रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छिपाने होंगे। ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं FM शिमला से। और देखिए ना, अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और जाते जाते सुनाते हैं आपको हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आइए सुनते हैं।

इसी गीत के साथ ओल्ड हिट्स में आज बस इतना ही। बने रहिए FM शिमला के साथ यूं ही। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं। अब हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युव वाणी।

जीवन में हमारा उद्देश्य धन अर्जन नहीं अपितु सत्कर्म करना होना चाहिए, जिसे मानसिक शांति तो मिले ही साथ ही साथ संतुष्टि और खुशी भी मिले। युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। यूं तो समय समय पर इस कार्यक्रम में कुछ नया सुनने को मिलता है, मोटिवेशनल थॉट्स आप सुनते हैं, करियर गाइडेंस लेकर आपके लिए आते हैं, लेकिन आज का हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा हट कर रहने वाला है। जी हाँ, हेल्थ की बात करेंगे और पूरा पूरा ख्याल रखेंगे आपके मनोरंजन का भी। तो सबसे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि आज हम वर्ल्ड थायराइड डे की बात करेंगे, क्योंकि आज है 25 मई। लेकिन उससे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं ये सॉन्ग, आइए सुनते हैं।

तो देखिए ना, गीत तो आप सुन ही चुके हैं और हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड थायराइड डे की। हर साल 25 मई को मनाया जाता है ये दिवस और इस वर्ष 2026 के लिए थायराइड जागरूकता का मुख्य उद्देश्य है थायराइड और पोषण। जी हाँ, थायराइड विकारों को रोकने और सही हार्मोनल संतुलन बनाए रखने के लिए सही खान पान के महत्व को उजागर करना इसका उद्देश्य है। और विश्व थायराइड दिवस के जो मुख्य बिंदु हैं वो भी आपको बता देते हैं। एक तो सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस हम अगर करते हैं तो थायराइड के शुरुआती लक्षणों की पहचान करना और समय पर जांच करवाना भी इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है। और स्वस्थ थायराइड के लिए संतुलित आहार जैसे कि आयोडीन युक्त नमक और अंडे और दूध का खूब सेवन करना, जागरूकता फैलाना, मतलब कि लोगों को थायराइड ग्रंथि के महत्व और हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म जैसी सामान्य समस्याओं के बारे में शिक्षित करना और भी बहुत कुछ जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और रोकथाम के उपाय क्या है ये भी हम जानेंगे, क्योंकि जो थायराइड है ये कोई आम समस्या नहीं है, इससे बचा भी जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है सही खान पान और सूझबूझ की। तो आइए सुन लेते हैं पहले ये गीत जिसे हमने लिया है फना फिल्म से।

युव वाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला से। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं थायराइड दिवस की। जी हाँ, थायराइड के जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या हो सकते हैं। कई लोगों को लगातार थकान बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन में बदलाव

और मनोदशा में उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही लोग इन लक्षणों के बारे में डॉक्टर को बताते हैं ताकि इनके पीछे का कारण पता चल सके। कई मामलों में ये सूक्ष्म लेकिन परेशान करने वाले लक्षण थायराइड ग्रंथि की खराबी की ओर भी इशारा करते हैं, जो कि एक छोटा सा अंग है जो शरीर के चयापचय और हार्मोनल संतुलन को नियंत्रित करने में मेन रोल निभाता है। विश्व थायराइड दिवस जो 25 मई को मनाया जाता है, इस अक्सर अनदेखी की जाने वाली स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करता है। और बता देते हैं आपको कि थायराइड विकारों की बढ़ती व्यापकता के बावजूद जागरूकता समिति बनी हुई है, निदान में अक्सर देरी हो जाती है। इस देरी से ऐसी जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती है जो ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि विश्व थायराइड दिवस का क्या महत्व है, क्यों ये मनाया जाना ज़रूरी है। तो बता देते हैं आपको कि विश्व थायराइड दिवस की स्थापना 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन द्वारा की गई थी और अब इसे अमेरिकी थायराइड एसोसिएशन और एशियाई ओशनिक थायराइड एसोसिएशन सहित वैश्विक संगठनों का समर्थन भी प्राप्त हो चुका है। 25 मई की तारीख यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन की स्थापना की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह का हिस्सा है, जो थायराइड रोगों के बारे में जनता की समझ को बेहतर बनाने और शीघ्र निदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। हालांकि इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन इस दिन को स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, रोगी संगठनों और अनुसंधान निकायों के बीच वैश्विक स्वीकृति मिल चुकी है। इसका महत्व केवल जागरूकता है ही नहीं, लेकिन निदान, देखभाल तक पहुंच और दीर्घकालिक प्रबंधन में मौजूद लगातार कमियों को दूर करने में भी छिपा हुआ है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हमें थायराइड संबंधी जो विकार है वो उसके सामान्य प्रकार कौन से हैं वो जानना ज़रूरी है, और उससे भी पहले थायराइड ग्रंथि को समझना बेहद आवश्यक है। ये विषय जो है गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूह के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो थायराइड से संबंधित जटिलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। थायराइड गर्दन के निचले हिस्से में स्थित तितली के आकार की एक ग्रंथि है और अपने छोटे आकार के बावजूद ये शरीर के लगभग हर अंग तंत्र को प्रभावित भी करती है। इसका प्राथमिक कार्य थायरोक्सिन और ट्राईआयोडो थायरोनिन हार्मोन का उत्पादन करना है, जो चयापचय को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन शरीर द्वारा ऊर्जा के उपयोग, तापमान नियंत्रण और हृदय गति को बनाए रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब थायराइड ग्रंथि का कार्य असंतुलित हो जाता है तो इसे कई प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर जीवन शैली से संबंधित समस्याओं या तनाव के लक्षण समझ लिया जाता है। और भी बता देते हैं आपको कि थायराइड विकार ग्रंथियों को मोटे तौर पर इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वे कम सक्रिय है, अधिक सक्रिय है या उनकी संरचना में कोई परिवर्तन हुआ है। हाइपोथायराइडिज्म, ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है, और ये सबसे आम विकारों में से एक है और अक्सर हाशिमोटो थायराइडिटिस जैसी स्वप्रतिरक्षित स्थितियों से जुड़ा होता है। इसके विपरीत हाइपरथायराइडिज्म अति गल ग्रंथि का, इसमें हार्मोन का एक अत्यधिक उत्पादन शामिल होता है जो आम तौर पर ग्रेव्स रोग से जुड़ा होता है। ग्रंथि में गांठ या सूजन जैसी संरचनात्मक असामान्यताएं हार्मोनल असंतुलन के साथ या उसके बिना भी हो सकती है, और कुछ गांठें हानि रहित होती है जबकि अन्य के लिए आगे की जांच की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। प्रत्येक स्थिति अलग अलग रूप में प्रकट होती है, इसलिए लक्षणों को पहचानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये इसका पहला कदम है। इसके विकारों के क्या लक्षण हैं ये भी जानेंगे। फिलहाल सुन लेते हैं एक और गीत।

युववाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला से और हम बात कर रहे हैं थायराइड दिवस की। थायराइड विकारों के लक्षणों की बात करेंगे। जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है कि ये दो तरह का होता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म के अगर हम बात करें तो उसके लक्षण हैं लगातार

थकान और ऊर्जा की कमी, अस्पष्टीकृत वजन बढ़ना, ठंड के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि होना, रूखी त्वचा, बालों का पतला होना और नाखूनों का कमज़ोर होना और साथ ही साथ अवसाद या उदास मनोदशा। अगर हम बात करें दूसरी तरह के थायराइड की, जिसको हम कहते हैं हाइपर थायराइडिज़म, तो उसके लक्षण हैं अस्पष्टीकृत वजन घटना, तेजी से या अनियमित दिल की धड़कन बढ़ना, चिंता और चिड़चिड़ापन, ऊष्मा असहिष्णुता, बार बार मल त्याग। और अगर चेतावनी के संकेतों की हम बात करें तो अनियमित मासिक धर्म चक्र, विशेषकर महिलाओं में जो होता है उसकी भी एक लक्षण है ये भी, और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आती है या फिर मेमोरी लॉस जैसी समस्याएं भी आ सकती है और गर्दन के अगले हिस्से में सूजन भी हो सकती है। ये लक्षण अक्सर धीरे धीरे विकसित होते हैं और अन्य स्थितियों के लक्षणों से मिलते जुलते भी हो सकते हैं। यही कारण है कि ये इन ध्यानों पर, इन अवसरों पर या इन लक्षणों पर अक्सर हम ध्यान नहीं दे पाते। चलिए एक बार फिर से चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में, सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है मैरी कॉम फिल्म से।

और प्यार हो गया। जी हाँ, इस फिल्म का गीत आपने सुना सोनू निगम की आवाज़ में। अब चलिए बात करते हैं शिमला के मौसम की। तो शिमला के मौसम की अगर हम बात करें तो सूर्य की गर्मी ने थोड़ी सी तपिश बढ़ा दी है। आज का तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। और आगामी 3 दिन तक का मौसम का कुछ ऐसा ही हाल रहने वाला है, तो ऐसे में अच्छे से आप भी अपना ख्याल रखें। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। मंगलवार यानी 26 मई 2026 प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है लकवा यानी पक्षाघात। श्रोताओं, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें मंगलवार यानी 26 मई 2026 को प्रातः 8:45 से 9:15 के मध्य हमारे फ़ोन नंबर 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया फ़ोन नंबर एक बार फिर से नोट कीजिएगा 2808034 2808152। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। तो ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचना। तो चलिए अब सुनते हैं एक और गीत।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने ये गीत सुना जिसे हमने लिया था दिल ने जिसे अपना कहा फिल्म से। अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं उसे गाया है मोहित चौहान ने और फिल्म है तन्नू वेड्स मन्नू। आइए सुनते हैं।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 4:20 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं चंबियाली कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं।

असी आकाशवाणी दे शिमले केंद्र कबूले करदे हन शामी दे 4:21 हो चुके दिन। पेश है तुसां दा अपना मनपसंद चंबियाली कार्यक्रम। सुभाष ठाकुर दा प्यार भरिया नमस्कार।

0: ਇਸੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੰਨੇ ਚੰਬਿਆਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਜੋ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।
1: अभी आप सुन रहे थे चंबियाली कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 4:50 हुए हैं। एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं मंडियाली कार्यक्रम।

मंडियाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सबनिया जो पुष्प प्रजारी नमस्कार ता देखा महाराज के भी कार्यक्रम रा वक्त होया और कार्यक्रम मंज आज ऐसा तुसा सौगी देखा भी थोड़ी जी गलबात लगानी की भी सुबारी सह

सारे दिहाड़े देखे भी कई काम अड़े हुआ जो देखे भी बैठी के ने एक ही जगह बैठी के जो से माणू काम कराएं ता तेताले देखे भी जेड़ा तिनारा खाना खाना ता से भी देखे भी छोटे जो से हजम नहीं होंदा कहने सौ की देखा मोटापा भी जो से माणू वाले शरीर अंदर आई जा ता एता खटे बहुत जरूरी है कि भी भ्यागा उठी के तुसे जरूर जो से घंटा भर घंटा डेढ़ घंटा जितना भी तुसा जो वक्त लगो ता रोज़ जो से सैर करना और व्यायाम करना कहने योगा करना जो से शुरू कर देना चाहिए ताकि देखे भी आ सारा जरा वजन हा से भी संतुलन अंदर रहना कहने और बीमारियां ले भी माणू जो से बच रहना कहने ये तो सौगी देखे भी ब्यागा जरा आजकल तो देखा महाराज की भी तौं दियारे दिहाड़े है तो छोटे जो से रात खुली जाए साढ़े चार पाँच बजे उठी के देखे भी तुसे जो से घंटा डेढ़ घंटा अपना जो से सैर सपाटा करी सकें चलो हिंदारे दिहाड़े तड़ा के भी चलो थोड़ा देरी ले जो से रात खुला है तो हिंदारे दिहाड़े तुसे देखे भी छे साढ़े छे बजे जे बे ब्याग हुई जाए तो तेताले बाद तुसे जो से अपना सैर सपाटा दिखा भी घंटा भर करी लीते कहने अपने जरा व्यायाम वगैरह हुई गए स्यों करी लीते कहने तेताले बाद जो से अपना जरा होर कारोबार जो से शुरू किते हैं कहने ब्यागा ब्यागा तुसे देखते होंगे कि भी जब ब्याग खुलाएं और जब सूर्य जो से उगदा लग रहे हैं तो इस वक्त देखा कितना बढ़िया जो से मौसम जो से हुआ है जेता जो बोला कि भी सूरज री लाली माँ देखे भी तिस कितना सुहाना जहा जरा तिस वक्त जो से मौसम हुआ है कहने सौगी सौगी देखा महाराज की ब्यागा ब्यागा जेडे पंछी पक्षी हुई गए तिनारी चहल पहल च भी देखा भी चीं चीं जरा तिनारा एक गीत संगीत लग रहा हुआ से भी देखा तुसा जो सुनने जो मिला है कहने सौगी सौगी तुसे देखते होंगे कि भी आज के वक्त अंदर महाराज के भी माणुआ वाले देखे भी इतना वक्त नहीं रह रहा कि भी एक दूजे ले जरा मेल जोल होर मिलने जुलने रहा जो से माणुआ जो वक्त नहीं मिलया करता था ये भी एक बढ़िया है कि भी ब्यागा उठी के देखा भी जो भी अपने आस पड़ोस समाज अंदर गाँव अंदर या जड़े भी अपने जो से मित्र हुई गए तो ब्यागा उठी के तिना सौगी देखे भी सुख शांत भी हुई जाए मेल मिलाप भी हुई जा और देखे भी हसते गला गलांदे हुए तो देखे भी जड़ा वक्त जो से बढ़िया निकली जा तो अगर देखे भी कोई भी जड़ी फेफड़े ते लेके बीमारी हुई गई तो सह सारी देखे भी तले बीमारी नहीं होंगी कहने सौगी देखे भी ब्यागा उठी के जड़ा हृदय रोग हुआ स्यों भी देखा भी कम हुआ है कहने सौगे देखा जेड़ा ऐसा जो भी व्यायाम वगैरह कराएं तो तेताले देखा भी जेड़ा भी हल्की फुल्की जड़ी दौड़ मारी या तेज़ तेज़ हांडिया कराएं तो तेताले जेड़ा भी देखा भी शरीर से जो पसीना बाहर निकला तो छोटे चारे जो से माणुआ जो बुखार वगैरह भी जो से नहीं आते कहने ये तो सौगे देखा भी जेड़ा सौगी थोड़ा जा भी सैर सपाटा कित्या कहने थोड़ा व्यायाम हो गया तो सौगी देखा भी जेड़ा योग भी जो से माणु जो से करता रहा तो तेताले भी देखा भी जेड़ा माणु वाला जेड़ा मन जो से शांत रहना है ना होर तरह तरह के लोग जो से जेड़े योग करने रहे आसन है तो से तुसे देखा भी करी सकें पर यह कि भी रोज़ जो से ये चीज़ा एड़ा नहीं आखि भी आज ब्यागा उठी गए कहने फिर महीने बाद भी चले पर यह देखे भी रोज़ जो से तुसा जो जड़ा ब्यागा रहा सैर सपाटा हो गया योग वगैरह हो गया ये जो से करते रहना चाहिए ताकि देखे भी आ सारा जड़ा शरीर हा से बीमारियाँ से बचरा रहो कहने जड़ा आ सारा वजन हा से भी देखा संतुलन अंदर रहा है तो छोड़ चार देखा तू सारा वजन नहीं बढ़ता मोटापा भी नहीं आता तो अगर देखा मोटापा नहीं आया तो फिर देखे भी माणु वाला जड़ा शरीर हा से जो से बीमारियों से बचरा रहा तो कहने आ सारे जड़े हड्डियाँ देखे यूँ भी मजबूत रहनी तो हड्डियाँ मजबूत रहनी तो माणु वाला देखा भी जितना ज़्यादा चलना फिरना हुआ जितना ज़्यादा देखा भी आ सारे शरीर के बाहर जो पसीना वगैरह बगना तो तले देखे भी आ सारा जरा से कई बीमारियां जो से बाहर हुई जाएं तो कहने आ सारी जी हड्डियां सी भी देखे भी मजबूत रहनी कहने भूख भी देखा माणुआ जो ठीक लगनी है ना भूख लगनी तो भी देखे भी शरीर जो से आ सारा ठीक रहना तो महाराज ये तो थोड़ी जी देखा भी गलबात हुई गई ये भी एक बांखा जहा लोक गीत तुसा जो होर सुनाना लारा तो सुना तुसे लोक गीत।

ता महाराज देखा भी ये सुने तो से लोग गीत गाते लग रहे थे, धनदेव शर्मा के ने तिनारे साथी, ये भी देखा लोग गीत भी हुई गया। ये भी ऐसा थोड़ी जी गलबात लगाने के भी जड़ी जीवन में बचत करना जो से सीखें। तो देखा महाराज के भी जीवन में बचत करना जो ये एक मानव मंज बहुत बढ़िया गुण जो से हुआ। आज की जो यह सारी बचत हुआ से देखा भी सारे काल जो से काम आई। ये गलत देखा भी असे सबनी जो से जाने ताते बे ऐसा जो इधर एहसास हुआ कि भी जीवन मन जो से बचता रहा कितना महत्व जो से हया। कई मानो तुसे देखते होंगे कि भी जिना जो फिजूल खर्ची करने की जैसे आदत हुआई जैसा चीजारी तुसारो जो देखा भी जरूरत नहीं है या फिर देखा से पहले थे तुसा वाले बथेरी पैरी ता इं देखा भी घरा पैरी रहो ता से देखा भी एक फिजूल खर्ची जो से हुई गई। तो कई मानो हुआ कि तेनाव जो देखा भी आदत होगी कि भी नहीं ये भी लेना ये भी लेना चाहे तेरा प्रयोग हो चाहे ना हो तो ये देखा भी बढ़िया जो सी नहीं लगता। तो ये कट्ठे देखा भी जी मानो अंदर जो सी बचत ही ये गुण जो से जरूर होना चाहिए बचत करने रहा कि देखे भी आज देखे भी ऐसे जो भी बचत करेंगे से जरा आने

अभी आप सुन रहे थे मंडियाली कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं पंगवाली कार्यक्रम।

शुण बाड़ियों पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम में गल करें तो दन्ने दिहाड़ी गल करें तो दुबई कस कस दन्ने रोज जैसे पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम इता समारे इता भस्ते इता तो ठाशांच रेता टैमी गल करें तो बेल दी पंज बज करी बीहे मंठे क्या पंज बज करी पंजा मंठित करें ना तीहे मंठे जे सैन पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम है शुण वाले सुनी सकते। हाँ सपू पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम अंतर जैसे कुछ खास जैसे जानकारी आपू सुनने वाले देते है ना कुछ पैंगे जे जरूरी गल बीती तहनी बारे है ना। तो आज जे मुंडा खो खिलाने से सख्ता बुजुर्ग मान समान ने बारे लाने होरी करे योग तो रहे निरोग बदे।

सर जैसे कुछ खास जैसे जानकारी पूछने बने देते है ना, कुछ पैंगे जे जरूरी गल बीती तहनी बारे है ना। तो आज जे मुंडा खो खिलाने से तीस आखता बुजुर्ग के मान समान ने बारे लाने हो रही करे योग तो रहे निरोग। बदिया बदिया गीत जे समय ताड़ी थे रस्ते कुछ पैंगे गी तैयारी कहीं गल अंतर आई कुछ चमे गी तैयारियाँ जे पैंगे जे जरूर गीते समय ताड़ी कर थे रस्ते ता सभी पुछने वाले सुनाने से सुबह क्या पहले आख में जे से बदिया जो गीत ताड़ी थे रस्तु सुनते फिर लाता हूँ तुम्हें जे डकबोक ता सुनते गीत सुने जी।

जी अतरुबत यजनू गीत से सहा सुनने वाले सुनो गीत त्यार थे नियमत हुसैन अबे जे मुंडा खो खिलाने से सस्ती जे बुजुर्ग से है ना जने अस सियाने वे तने जैसे अस मान समान जैसे कन जे किस किस की टब्बर अंतर है ना आख गल करें जिखे मठ के पुर जैसे जमतू है ना दिखें जैसे टब्बर अंतर कतरी खुशी हुई गेती है ना पूरा टब्बर अंतर जतरे जैसे मैं तैसे सब खुश हुई गेते है ना तने चेहरे जैसे बिल्कुल खिली बूते गेरे ता जिस है जे सियाने बूते है ना जे बुजुर्ग हुई गेर होते जमे जैसे उम्र खारी भुई गेरी बूती ता तने भी जैसे टब्बर अंतर आख मठ के पुरु जना जैसे प्रेम हतीन चाहिए तने भी जैसे देखभाल होनी चाहिए है ना तने भी जैसे इज्जत कानी जैसे हर एक मैन बनती किस किस की बैरी बर्तन थे है ना आज से सियाने भे तो शू जे हो रस्ते है ना से भी सियाने बोने से तो बोलने गल है कि अस जनू हुर जे बर्ताव करे है ना जने सियाने जे बर्ताव करे जने टब्बर अंतर हो रे जे अगर कई टब्बर कसरी मोटा आता है ना दस बारह जने टब्बर अंतर रहते तो तेरी सियाने जे कहना बर्ताव के रूता तो जे हैं मठ गए बरभूते है ना सिर्फ जैसे तेरे था ते है ना कि भाई जे मन मोटी दीदी अस्ती है ना अच्छा मन चाचा ताऊ अस्ते ऐ जा जे कनी बोकन लुगरे माँ दादा जे कनी बोकन लुगरे है ना सही है जे इससे गैबर सिचत ता जे भी है सहाने स्तने जे इज्जती गल आए मान समाने गल आए तै कुड़ी कुड़ी अस टब्बर अंतर अगर खारी इज्जत तेल आपू सियाने है ना खर जे इस तेने बोते नुंद भाई जे सहने गैबर जे इसे कनी खारुश चालो रुवे है ना ता से तिखें बुतू जिखें टब्बर अंतर जैसे मोटे भी अगर तेने चीजें पुठ अमल करे ले है ना बोलो तो बड़ो सुख तो तू मठ है तो मोता तेने जैसे डराते भी धमकाते भी सिर्फ जैसे अगर अस आपू तेने चीजें उठ अमल नहीं करन लगे अस आपू इजो बाब है ना दादी दादू टब्बरे तेने जैसे इज्जत नहीं करन लगे तो घबरू क्या भी जैसे अस उम्मीद थैन आखी नए कि दवाई तू करें अस्त नहीं करी तू है ना तो कुड़ी न कुड़ी जे अजय मान समाने गल अस्ती है ना सियाने के बुजुर्ग के तेने जैसे टब्बरे सुभियाँ मैनों बनती अच्छा तखें टब्बर क्या बै कि भूंगे तू ग्रां ये गेता ग्रां भी जैसे हर एक जे बुजुर्ग भोरे भूते सियाने भोरे भूते है ना तने आपू उम्र अंतर जत्र खा उम्र है ना पौरी भूती जत्री से अगर कहीं सात साल कहीं पुज गेरा कहीं अस्सी साल ले भूंगे रहा है ना छठ क्या खा डी जे भी गेरे तो तने कुड़ी न कुड़ी तजुर्बा भूता तैतरे जैसे तने जिंदगी जो रही टब्बरा पाड़ो रहा बहर जैसे से भ्या जे उठन बिछुन अस्तू कैतरी तने क्या गलती भूंगे है ना तो तैतरे उसे की कहते कि आपू जे गैबिर भू है ना तस जैसे ठाकते रहते कि खबरदार भाई इन्हू कर तू इन्हू करी जैसे नहीं गलती भूंगे थी है ना तो कुड़ी न कुड़ी आज के टाइम भी जैसे चीज़ बड़ी जरूरी भूंगे रही किस किस की आखता जे हैं सियाने के बो के अगर जे कहीं नौजवान जन बोल से घाट लगे छून है ना न भूंता तो भाई जे तुम्हें कि पता लगता है ना तुम तिखें कहीं थे आज इन्हू भूंगे ना जरूर है सामा बदलिए रस्ता पर जे तहने जिनगे अंतर जे तजुर्बे नहीं रस्ते तहने जे कम के रस्ते है ना तो कुड़ी न कुड़ी से न चाहते कि हैं गैबर जैसे कोई गलत रास्ते पुट के है ना कुड़ी न कुड़ी जैसे हैं भी दुख तफली के भें कि भाई चार से किए थे तो ऐसे चीज़ है कि खे अस चीच सकते जिखे अस आपू जे गै सियाने आस्ते है ना दादी दैद हुए नानी नैन हुए इजी बाप भी आस्ते है ना भाव भाणी भी आस्ते जहन कहीं तजुर्बे आस्ते बिश करी डकबोक जिखे अस खारी करे है ना आई नहीं कि मठले री फर्ज है मोटे भी फर्ज आस्ता कि अस आपू जैसे कन्ने जैसे अस चालन से कन्ने जैसे नहीं तरक्की करवाने से किस की राड़ी मी करे जैसे सब काम बोएंगे तो है ना टब्बरे की गल करूँ बैर भी जिखें कुड़ी न कुड़ी अस नथोर भूते तिखें कि भूतो कि अब कुड़ी सियाने जैसे अगर है ना कोई दूर दिगे बचारे बासी अंतर चरे पूजा है ना सीट नहती तो नौजवान के फर्ज बनता है ना किसकी बैरी बर्तन थे दिखें तेन जे खरा बर्ताव करे तो अस जे भी हो सके तेने बोल है ना उम्मीद इन्हें थे कि पता नहीं यार अस जे कर्म करने जे टेम है तेर होता तेस टेम अंतर जैसे अस खारी जैसे खारी सोच थे करी खारे जैसे कम करने बनते है ना मैं बोलूँ

कि जे हन सियाने थे हैं जे पुरखे आस्ते तहने के आज के टाइम में हिसाब नहीं होते, पर फिर भी इसे जैसे सब चीज़ कहते थे ना कोई गलत हूँ गुरु तैसे बारे जैसे से विश कर की ये गलत है ना कई चीज़ गलत हूँ गुरु तैसे विषय आप डकबोक लाई कर चर्चा करके जैसे सुसरेते है ना तहने तजुर्बे होते थे ना अन्य चीज़ ऐसी मैं बोलूँ कि घात गुण जे बनोर थी तो खेने होती है नहीं जहाँ से आज हैं कि इन करी उन्होंने भूंगे तो है ना तहने खुर क्या शिच करी तहने जे कम की रहा तैसे अंग्रेजी गल करें तो प्रैक्टिकल ऐसी चोड़ थी है ना घातेरी गल नहीं तो आज जे है ना सेहते भाई बिजली जे चलने वाले तो तहने जे अस पीन बाड़े घाते गुण बनाते तो कोड़ी कोड़ी शिच करी कसे सियाने क्या हुरी हुर क्या अगर तैनी चले हुई इसी चीज़ है ना मिस्त्री गल करूँ आज तो अब जैसे ट्रेंगले भून लगी तो पहले नहीं थोड़े बुतुत पहले तो सियाने जे कोड़ी मिस्त्री से तैसे क्या चोर बुतुत तैनी कसे हुर क्या चोर बुतुत शिची तुत कन्यू करी जनु अब मु अगर कसे जे विष्णु अस्तु कम काश चुने तसे माँ गुरु भून अस्त है ना जनु जनु से बताल मु तैनु कानी अस्तु कोड़ी न कोड़ी तफलीक तब होती पर अगर जैसे तस जनी से तफलीक सही बटी जनी दो बो के शूनी बटी तो तसे जिंदगी खारी बनती बैरी भी कोड़ी अगर कसे है ना बुजुर्ग कोड़ी बात जैसे आज कने अब अगर है ना रोड बनो रही गाड़ी जैसे रो रहे गाड़ी चले रही होती तो अगर का बुजुर्ग कसे है ना थोड़ा बेचारा रो रहे तस्तरिये नहीं तसे कनी तार छड़ा था अखबो तेन भाई पुन कन लगो रहा है ना तिखें तने कहता से धोया रचे मुसे पत्नी फाल लती है इन्हें आती से चीज़ें भूली घेण से मैं किसकी जे तिखें भूण गुरु मौके पुठ भूण गुरु तस्कारी छड़े है ना अस मन खसते मैं रू फंतर हस्ते सब चीज़ें सोचते तो खरे खोटे भी असें पता लगता है ना अगर अस हर कम पीछे भाई ने रचे मोहनी फल की अतीन है ना फल अती तसे जैसे तैसे क्या है पता लगता कि हम सब सोच के नहीं थे बुरे तो कुड़ी न कुड़ी जे बुजुर्ग हस्ते समाज खास अस बोली सकते कि अस भूत ना खास जैसे अख धरोहर हस्ती से कुड़ी न कुड़ी समान है ना जहाँ तक तसे जीण जूख है तहने भूतू ना बेटा बरंदर खिणी भूतू है ना जुस्कान फुटकान जैसे मुँह अख बड़ी जैसे इनू लगत कि थोड़ो किस की दवाई असें किस बते तहने अस जैसे मुटेर और रस्ते है ना टब्बरे की गल करें तो टब्बर अंदर जो माठा है से तहने है ना रास्ते पुठाठ कर जैसे बात पुठाठ करे अगर गिर तो किस इन्ना टाइम भी था कि दिखें जैसे मैं आपू सब चीज़ें भूली करके दवाई एने अस दी कैतरी है ना किस है वो जैसे मैं अन्य निस कहती था कुड़ी कुड़िया चीज़ जैसे असें ध्यान देनी बनती है ना मौके गल थी बुजुर्ग कहीं है ना बारे जैसे डक वो खून वरी कहीं इन्हें इज्जत करना बनता कहीं इन्हें मान समान देने बनता ऐसे भ्यान जे पैंगे की गल करें तो तैयारी बोते उन्होंने बोते सार से बुढ़े जान जैसे ऐसे भ्यान दे है ना आखा नहीं जैसे पुरानी कथा ज नहीं बोली सकते कि भया के टबर अंतर जैसे आख बुजुर्ग होते हैं है ना बताया अब मूर्खारी भूई भूल गए रिता भूतो नू ना टाइम जैसे कसे क्या बेन अगर कहीं खारी उम्र भूल तसे वाली कम्यूनिटा इनू है ना तो टब्बर अंतर हेरू क्या रहता है मत टाइम भूई गया वो ना सेवा पानी करी था कि भूल गए रे तद भाई से अब को खे से तहने से अब यानी कथा हस्ती कि चौं करी कही जैसे कुड़ी धार बजाए छड़ा बेचारा ठीक है अख तो तैनी से चूं टब्बर अंतर हो रहा तो हेरू हेरू तैरी तिखें तैनी बोल छड़ो चे दुभाए जे तसे बुजुर्ग थे जे तैनी है ना दुभाई चे इभियान आऊँ तेई इड़ी बजाऊ रैस चाहूँ तो घिन गए छू पैशू ता जे अगर का गैबर हूं इसते ता भी आना टाइम याल तसे ताऊ इड़ी कुड़ी आना दूर पुजाल तिखें ओहो तसे टीरे खुल गए है ना तो कहीं तस्तवें होश है कि मैं अं कुछ गलत करने लगते है ना तैने जैसे उपजाने बने गए तैने जे सोकारी छटे तो कुड़ी न कुड़ी ऐसी चीज़ है कि अस बचने चाहिए किसकी मनक है अस मनक रू फंतरसते असें खरे खोटे भी पाता हस्ता है ना सोबे चीज़ी फिर भी कुड़ी न कुड़ी भूल भूले के अंतर अगर एना वो भूण गुरा तो कुड़ी न कुड़ी जे अगर गलत जे आदत हस्ती तहने जैसे अस सुधार सकते खेर मौके गलती में जैसे लाई छड़ी अख होरू जैसे बदेजनू गीत भी जैसे मैं तैयार थी रुस्तु सुनते गीत ता सुने जी।

जी एत्रु बदेजनु गीत चे सह शुन वाले शुणु राकेश कुमार पंगवाए गल अंतर ऐबे जो मुहरी जे से थोड़ जनी जे डकवोक लानिस्ती से लानिस्ती करे योग ता रहे निरोग है ना बोलने गल है कि योगे बारे जे से डकवोक मु लानिस्ती आज ने टेम ही गल करूँ तो हर एक मैन जे से भाग दौड़ भरी जिंदगी जे से चलो रिश्ती कसे भी मैन जे अगर कोई थोड़ी डक फूल भून लगी तो है ना कोई सेम बते क्या टेम नहीं मुके है ना कसे कमे बारे बोलू कि टेम नहीं आपू कम काज अंतर आपू जिंदगी अंतर इतरे जे से मैन बीजी जैसे बोल सकते कि भूंगे रिश्ते तो योगे गल करूँ तो आज के टेम ही हिसाब है हर एक मैन है ना आपू जे से जैसे शरीर बते जान बते है ना तो से जैतरी खारी देखभाल खारी बटल है ना जितना ध्यान थे बटल तैतरी जैसे अगर खारी जिंदगी जैसे से सुख जे जी सकता है ना योगी के जे पेल कने ने है ना जे जानकार थे से जैसे पतंजलि रे गल कने बोते कि चित्त वृत्ति के इंद्रो जैसे भूई सकता से कहीं बली योगे बली मतलब जे है चित्त हस्ता जैसे

थे मन बते तैस अंतर जे वृत्ति कहीं गल करें कि भाई सोच ही रहती पल अंतर की तहने क्या जैसे दूर का कर सकता योग है ना। कहीं मन जे जैसे कार्य बटा ध्यान जैसे लाए बटा है ना, भगवान जे जैसे थोड़ा भगवान याद करके जैसे ध्यान लाए बटा था जहन वृत्ति है तहने निरोध भेंगे था है ना। योग की गल करें तैसे जैसे संस्कृत के जे धातु है तैसे बिली बनो रहता ऐसे गल भूता जोड़ना मतलब कि मैं जान अंतर जे आत्मा अस्ती तसे परमात्मा जे मिलन कर दी तसे कहने करी भोन अस्ता ऐसे जैसे ध्यान करना ये रास्ता है ना। ध्यान के खेम होता कि जे बड़े बड़े ऋषि मुनि जे ध्यान करते हैं ना जने पाता अस्ता कि कहने करी तो जे नवे नवे अस्ते तहने तहन क्या शिचुनी रू शिच करी जैसे से आपू जैसे आत्मा परमात्मा जैसे मिलन कर सकते जोड़ सकते। योगे गल करें तसे माते सारे जैसे अंग भी अस्ते जे आठ अंग है ना मते प्रकार अस्ते अने अठ अंग अंतर यम भी ते नियम भी ते आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ता हरेक मैं जैसे कुड़ी न कुड़ी आऊँ तैं बता कि पहले कई योगे जे जानकार रस्ता तैस क्या जैसे योगे जे भी अस बोल सकते कि विधि अस्ती है ना तैस जाने तैसी चे तैस क्या पत्या जैसे आपू कानी दे है ना तसे बली जैसे ज़्यादा है ना मैं फेद भूणसता किस कि जैस क्या तैनी शिचो रस्तु तो तैस जैसे तैसे प्यूरा जैसे पातास्ता से बताए भी देता कि फलाना चीज़ करेल तू है ना कई भी आसन करेल इस आसने ही फेद हस्ता है ना या मैंने में ही फेद हस्ता ध्यान का नहीं ही फेद हस्ता प्राणायाम का नहीं फेद हस्ता तो कुड़ी न कुड़ी आज टू नहीं पहले पुथांस तू जैनी भी जानकार क्या शिचू है ना तो तस से जैसे खारा फेद हो तसे जैसे खारा जानकार भी जैसे बनता ता आज ने जैसे अगर गल करें हर साल 21 जून रोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे योग दिवस से रूप अंतर जैसे मनाता तो है देश की भारत देश की जैसे कैतरी बड़ी खार जी गल जैसे कि हर साल 21 जून रोज अंतर पूरे है ना अस बोल सकते कि संसार अंतर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे योग दिवस मनाता साल 2018 पुथा जैसे हर रोज साल 2015 है ना पहली बार जैसे 21 जून रोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे मनाइए थे तस क्या पत्या हर साल जिखें 21 जून इतना बेने बाड़ा इतना तखें जैसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे योग दिवस मनाईता ऐसा अंतर है ना योगे की गल करें कर्म योग हो सकते भक्ति योग हो सकते ज्ञान योग हो सकते हठ योग हो सकते जे भी कसे है ना आपू मैं लग दू कि मैं अतरी दूरी तो नहीं पर मुँह छोटे छोटे है ना आसन है ना थोड़े बहुत मौका नहीं जानी बली माँ जान जैसे तकड़ी बनी रहती है प्राणायाम मुँह करना आस्ता कहीं लगता कि मुँह ध्यान भी करना आस्ता से जैसे है चीज़ें कर सकता योग करने वाली मैं जैसे शारीरिक है ना शारीरिक जे रूप जैसा तकड़ा बनता बनता मानसिक रूप अंतर भी जैसे तकड़ा बनता है ना। आज के टाइम हरेक कि हर एक मैं जैसे कुसे न कुसे जैसे तनाव अंतरसता तो कुड़ी न कुड़ी से जो ऐसे योग जे जुड़ल तहने चीज़ें क्या भी जैसे से छुटकारा पा सकता खास करी भ्यागे टाइम है ना जितने जल्दी जैसे खाड़ी भूं बटे तस्के बाद जैसे आपू जे रूटीन वाले काम काज हस्ते है ना टाटी पेशाब करी कहे जैसे आपू जान जैसे साफ करी कहे है ना बोलने गल है कि पेट भी जैसे खा ली लेटू है ना हाथ में उछलाई उछलुई करी जैसे धुई चुपनी कहीं करे तैसे आपू तैतरा फेद आए पर ये किसी भी क्या पहले कि खाड़ी भूं करी जैसे जे भी है ना शौच जैसे बोते साफ सफाई टाटी पेशाब करी कहे जैसे अन्य चीज़ें कर सकते आख रोज़ करने वाली तो की न भूतू रोज़ जैसे रोज़ हर रोज़ खारा काम करे तैसे जैसे कुड़ी न कुड़ी फेद होता खेर मौके गल थी मैं तुम्हें जे लाई छड़ी टाइम भी जैसे कहीं घट होता अखोर में जैसे न छुट्टी गीत तैयार थी रस्तु सुनते अस गीत सुने जी।

जी यात्री बदेज नु गीत चे सह सुन वाले सुन गुथे भुवनेश कुमार जी गल अंतर ऐसे गीत से साथ साथ पंगवाड़ी कार्यक्रम में टाइम भी भूंग गया। मो महेंद्र कुमार दी इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM शिमला केंद्र। 5:50 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं लीलावती की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी शिमला है। 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार, डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
6: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को देश भर में सर्वश्रेष्ठ बनाया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर बदलाव किए हैं। उन्होंने आज हाल ही में स्तरोन्नत किए गए CBSE राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छोटा शिमला में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से CBSE प्रणाली को लेकर भी सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटा शिमला स्कूल में इस वर्ष 30 जून से पहले अध्यापकों के सभी खाली पद भर दिए जाएंगे और CBSE पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अब अधिक विषयों का विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक मेहनती और सक्षम होते हैं और उनकी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों से 5 जून को शिमला में होने वाली एंटी चिट्टा रैली में भाग लेने का आह्वान किया। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के तहत कल 1293 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू होगी और कल शाम तक इनके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने आज शिमला में बताया कि 8,198 अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दूसरे चरण में 28 मई जबकि तीसरे चरण में 30 मई को वोट डाले जाएंगे।

0: टोटल पूरे हमारे 21,678 मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं, जिसमें से हमारे 16,539 मतदान केंद्र जो बिल्कुल सामान्य हैं, लगभग 3,554 संवेदनशील हैं और 1,585 मतदान केंद्र जो है वो अति संवेदनशील हैं और उनके ऊपर वेबकास्टिंग की जा रही है, लाइव वेबकास्टिंग होगी। तो टोटल हिमाचल में 50,80,000 मतदाता है, जिसमें से हमारे 25,08,000 पुरुष हैं और 25,12,000 महिलाएं फर्स्ट टाइमर वोटर हैं। वो हमारे 52,350 वो नए वोटर हैं जिनमें ऐड हुए हैं बच्चे 18 साल वाले। ग्राम पंचायत भाटा वाली विकास खंड पौंटा साई में 4,623 मतदाता हैं इसमें, और सबसे कम जो है वो पूहू की ग्राम पंचायत सुमरा में है, वहाँ पे केवल 178 मतदाता है।
1: सोलन जिला में पहले चरण के तहत कल 87 पंचायतों में मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि जिला में कुल 3,52,901 मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और इन्हें वेबकास्टिंग से जोड़ा गया है।
2: जिला सोलन में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं। पहले फेज में 87 पंचायतों में चुनाव होंगे और प्रशासन द्वारा जो संवेदनशील मतदान केंद्र है और जो हाइपर सेंसिटिव है उनके लिए सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था की है। 549 पोलिंग पार्टीज है पूरे जिला में, जो कि 3 चरणों में निर्वाचन के कार्य को पूरा करेंगे। मतदाताओं से मैं यही अपील करूंगा कि इस अवसर पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।
1: प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला स्थित लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की और उन्हें इस बारे में एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने चुनाव आचार संहिता के बीच मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगमों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों को प्रभावित करने के लिए नियमों में बदलाव लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। भाजपा ने इन सभी मुद्दों पर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है।
3: चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। कॉर्पोरेशन के चुनाव में जाते हैं, पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है और आचार संहिता लगी हुई है। मुख्यमंत्री जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस का काउंसलर चुन करके भेजिए, मैं 50 लाख रुपए आपके लिए विकास के लिए दूंगा। ये सीधी सीधी आचार संहिता के उल्लंघन की खुलेआम जो है जिसको शुरुआत की गई, और आचार संहिता के बीच में कैबिनेट के फैसले लिए जाते हैं ऑफिशियल ब्रीफिंग ना करके, मीडिया को जो है वो सारे के सारे फैसले बता दिए जाते हैं और फैसले के लिए जो चुनाव को प्रभावित कर।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर और AIR FM शिमला पर एक साथ रिले किए गए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर यानी 774 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। शाम के 6:05 और 41 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम के अंतर्गत महास्वी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं।

महास्वी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं के सुनीला भारद्वाज रा नमस्कार। श्रोताओं स्व सभीरा बहुत बहुत स्वागत है अपने आज के महास्वी कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम हमारे मारे मुख्य विषय हिमाचल के पर्यटन स्थल और योग और व्यायाम के लाभ और महत्व। इस साथ ही मतवा सुनानिया कुछ देश प्रदेश खास खास खबरा भी पर कार्यक्रम है आगे बढ़ा देवे। शुरुआत करूंगे सभी से पहले लोकगीत साथी।

भाग दौड़ वाली जिंदगी दे, आज के बक्तारी व्यस्तता दे जो है अस कितनी ना कितनी इतने व्यस्त होई गए दे कि अस अपने शरीर अपने स्वास्थ्य रा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अस देखो अजकल खबर दे आओ भी कोई किथी दफ्तर चल रहा था तेस किथे थी अटैक पड़ा और तेथी मृत्यु हुई गई या बहुत ज़्यादा जो है मानसिक तनाव दे गुजरने लग रहा कि आत्महत्या जड़े जो है कदम उठाई लोए, तो किथी ना किथी ये आसा रही आज के वक्ता दे जो है अपने प्रति लापरवाही अपने स्वास्थ्य रे प्रति। स्वास्थ्य में देखो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह रे स्वास्थ्य ओ आसे ही नहीं बोल सकते भी आसे शारीरिक रूपा दे ठीक है आसे हंडने फिरने लगी रे अच्छा खाने लगी रे काम लगी रे करने तो आ सोचोगे आसे स्वस्थ है, पर किथी ना किथी अगर आसारा मानसिक तनाव बढ़ता जाओ तो से मारे शारीरिक स्वास्थ्य के भी खराब कर दो हानि पहुंचाओ। आज के वक्ता दे कोई भी हर दूजे व्यक्ति है जो है रक्तचाप है किसरा जो है उच्च रक्तचाप परी बीमारी है किसके निम्न रक्तचाप या जिसके ब्लड प्रेशर आसे आम बोलचाला में आजकल ही बोलूँ हाई ब्लड प्रेशर किसके है ना उच्च रक्तचाप है और जी साथ ही आज के मधुमेह जड़ी समस्या भी हर दूजे परिवार दे हर दूजे सदस्य के आज के वक्ता दे जो है मधुमेह जड़ी जो है बीमारी होने लग रही, तो कहती ना कहती है मारे बदल दे खान पान मारे स्वास्थ्य मारे जो सारी दिन जो दैनिक मारे कार्यक्रम में तिजरी वजह से कहती ना कहती मारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ दे लगीरा। और इजरा एक कारण ये भी आसे जो है अपनी हर सुख सुविधा पर ध्यान देव बस अपना स्वास्थ्य छाड़ी रहो अपने परिवार आरा स्वास्थ्य छाड़ी रहो, तो किथी ना किथी आज के वक्ता में आसा के अपने स्वास्थ्य रे प्रति अपने परिवार रे सदस्य रे और अपने आस पास रे अपने रिश्तेदार मित्र सभी रे स्वास्थ्य रे प्रति जो है सजग होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है आसा है जागरूक होने की जरूरत है। और आसा के नहीं भी आसे काम छाड़ी रहो कुछ जो है कोई अड़े काम करूँ जिससे आसे जो है आप आसर और काम रह जाओ आसा सिर्फ जरूरत है अपने जो दिन दिन के जो रोजमर्रा जो हमारे काम है थे आपने थोड़ी जी दिनचर्या दे कुछ एड़ी चीज एड़े गतिविधियाँ शामिल करने री जिजरी वजह से जो आसारा स्वास्थ्य अच्छा रहो और आसे तरोताज़ा महसूस करूँ। अगर आसे सवेरे जो है 6 बजे उठूँ अगर आसे 6 बजे उठने की जगह सवेरे 5:30 या 5 बजे उठ जाऊँ तो आसे किथी ना किथी अपने तक जो है योग अपने व्यायाम सवेरे री सैर करने तक जो है अच्छा वक्त निकाली सकूँ। और इस साथ ही देखो आसारा ना सिर्फ आसारा समय पाए सारा काम हो जाओ बल्कि मारा धीरे धीरे मारे स्वास्थ्य दे भी सुधार हो। और सवेर का वक्त जो है देखो एक ऐड़ा वक्त हो भी जब प्रकृति पूरी तरह शांत हो बिल्कुल ताजी हवा हो है ना हर जो दिनारी शुरुआत हो जब दिनारी शुरुआत ही बहुत अच्छे ढंग सी होनी तुम्हारा हर दिन जो है एक नया दिन बन जाना और इसी मारे अच्छा स्वास्थ्य भी रहना। तो आसा सवेरे उठी रो जो है सबसे पहले जो क्या काम करना चाहिए शांत मना से जो है आसा के खुश हो उठना चाहिए कि आसे सवेरे जल्दी उठना है सबसे पहले तो अपना रोज का नियम आसा बनाना चाहिए। और सवेरे जल्दी उठने तक जरूरी है कि आसे राती सभी जल्द जो है जल्दी जितना जल्दी हो सको तितनी जल्दी सुत जाऊँ कम से कम 9:30-10 बजे तक आसा सभी के जो है सुत जाना चाहिए और बच्चे भी जो है जल्दी सुतवाई देनी चाहिए ताकि से स्कूला में जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर सको तिनाखे जो किस तरह तनाव ना हो तिनाखे जो नींद ना हो। तो अच्छी नींद भी जो है अच्छे स्वास्थ्य री जो है बहुत ज़्यादा जरूरी अच्छे स्वास्थ्य री तक। तो आशा के जो है आज के वक्ता दे अपना काम काज भी जरूरी है पर अच्छा स्वास्थ्य भी जरूरी है। योग जो है शारीरिक फायदे रे अलावा मानसिक लाभ भी दो व्यायाम रे पारंपरिक रूपा रे विपरीत जो है जरे उल्ट जो है योगा दे ध्यान और श्वास क्रिया लेने री क्रिया रा समावेश जो है व्यक्ति रे मानसिक स्वास्थ्य के बेहतर बनाने दे सहायक हो। योग बहुत जरूरी आज के वक्ता दे क्योंकि आज के वक्ता दे सभी दे जो बड़ी बीमारी और सभी बीमारियाँ जो मूल कारण है से मानसिक तनाव है। मानसिक तनाव का हमारे दिमाग में बहुत सारी जो है बातें घूम दिया रहो बहुत सारी चिंता हमारे दिमाग में घूम दिया रहो अब ऐसे कोई रोबोट तो है नहीं कि ऐसे एक साथ ही बहुत सारे काम कर सकूँ ऐसे मानव है कुछ काम रही भी जाने कुछ ओ भी जाने है ना। तो ऐसा किथी ना किथी आप पीखे इस तरह से व्यवस्थित करना है कि आसे जो है हर चीज़ चाहे जो है आसे कोई शक्तिमान थोड़ी भी कि आसे आज सारे काम कर लेने है ना तो अपने सहयोगी सहायता ले लेनी चाहिए अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। और सबसे जरूरी है सवेरे उठी रो कम से कम 15 मिनट कम से कम 15 मिनट जो है ध्यान जरूर करना चाहिए प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा मन शांत रहो हमारे दिमाग का तनाव कम रहो और अपना काम आसे अच्छे से कर सकूँ। योग जो है इजरा सभी दे बड़ा फायदा ए भी है भी व्यक्ति रे तनाव रे विनाशकारी प्रभाव जिस दे जो है खत्म निपटने दे मदद करो आज के भाग दौड़ वाली जिंदगी दे और प्रति

प्रभाव वाले दौरा दे मानसिक रूपा दे स्वस्थ रहना शांत रहना बहुत जरूरी है जो सिर्फ योगी मारे मना के प्रदान कर सको। सवेरे जल्दी उठी रहो, जब प्रकृति बिल्कुल शांत वातावरण हो तब ताजी ठंडी हवा दे बैठना चाहिए और मन एकाग्र कर रहो। आशा सभी के जो है थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, खासकर पढ़ने वाले बच्चे और जो कोई बड़ी परीक्षा या जो है प्रतियोगी परीक्षा जी लोक सेवा आयोग है राज्य सेवा आयोग किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करो ये तिना जरूर जो है ध्यान करना चाहिए, तिना योग करना चाहिए ताकि तिना मनारी एकाग्रता बढ़ो और मन जो है शांत रहो। इस साथ ही योग शरीर आखे स्थिरता प्रदान करो और मन आखे शांत करो। ये शरीर आ रे जोड़ नसा दे चिकनाई बढ़ाओ। चिकित्सा क्षेत्र दे हुए अध्ययन दे पता चलिया भी योग एकमात्र एड़ा शारीरिक व्यायाम है जो पूरे शरीर आखे संपूर्ण रूपा दे जो है तरोताजा करो, क्योंकि ये सभी आंतरिक अंग और ग्रंथियारी मालिश करो। योग श्वास और गति रे माध्यमासी लचीलापन शक्ति शारीरिक मुद्रा मानसिक स्पष्टता तनाव दे राहत और समग्र स्वास्थ्य दे सुधार करो। शक्ति सजगता आत्म जागरूकता और आपी दे और ब्रह्मांडा दे गहरा संबंध स्थापित करने रा जो है योग आसारी सहायता करो। इजी साथी आसा के व्यायाम भी करना चाहिए ताकि मारे मना साथी मारा तन भी मारा शरीर भी स्वस्थ रहो। व्यायाम जो है अच्छे स्वास्थ्य री नींव है, नियमित शारीरिक गतिविधियाँ वजन नियंत्रित रखने और हृदय मजबूत बनाने और बीमारियाँ जिया जो मधुमेह रक्तचाप इसके जोखिम आखे कम करने दे मदद करो। इजरे अलावा व्यायाम मानसिक तनाव दूर करी रो ऊर्जा और एकाग्रता के बढ़ाओ जिससे जो है आसारा जीवन खुशहाल बनो। और इजी साथी मारे जो है शारीरिक स्वास्थ्य दे भी सुधारो। आसारा जो दिल जो हमारा हृदय से मजबूत बनो, क्योंकि जो व्यायाम है हमारे शरीर दे रक्त संचार बेहतर करो और जो दिलारी मांसपेशियाँ तिना मजबूत करो जिससे दिलारा दौरा पड़ने का खतरा कम हो जाओ। आज के वक्त दे ऐसे आसपास देखो कई बार जो है एकदम से दुखद खबर आ जाओ और देखो कई बार जो है जो मरने वाले मृतक है तिनारी उम्र भी कई बार बहुत कम हो तो ऐसा हाड़ा लोग भी एड़ा किया हो सको है तो बहुत अच्छा दिखो था स्वस्थ दिखो था बिल्कुल एकदम से हृदय की गति रुकने से किसी की मृत्यु किया हो सको। तो यही सब कारण है आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी जो ऐसे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है। तो ऐसा खे मानसिक और शारीरिक रूप दोनों दे आप इखे समय निकालना है और अपना जो है ध्यान रखना है। इसी साथ ही व्यायाम हमारा जो है वजन नियंत्रित करो। व्यायाम में साथ ही जो मोटापा कम हो और हमारा जो वजन बे नियंत्रित रहो। देखो थोड़ा बहुत मोटापा तो चलो हमारा शरीर जे ले लो, पर जो मोटापा हद्दा ज़्यादा बढ़ जाओ तो बहुत सारी बीमारियाँ रहा जो कारण है से हमारा हद्दा ज़्यादा मोटापा भी हो। तो आशा के आस्ता आस्ता जो है व्यायाम कर रो अपना वजन नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए और इस साथ ही अपना जो संतुलित आहार और आशा के जो है बिल्कुल सात्विक भोजन आशा के लेना चाहिए जिस बीच साग सब्जियाँ है ना छा और जो आसारे जो मौसमी सब्जियाँ फल दूध ताजी दही जो आसारे आसपास आसा आसानी से मिल जाओ आसा सब कुछ खाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे तलिया भुनिया था आजकल जंक फूड बहुत चल रहा है ना तो कथी न कथी इन सभी खान पान बिगड़ने की वजह से बीमारी सेहत जो है दिन प्रतिदिन खराब होती चल रही। और जो व्यायाम है हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत करो और इसी साथ ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य के भी वरदान है। तनाव और डिप्रेशन आदि राहत मिलो। व्यायाम से जो है खुश रहने वाले जो हार्मोन है तीजरा स्राव हमारे शरीर बढ़ो और जिससे जो है हमारा तनाव और चिंता कम हो। और अगर ऐसे देखो सारा दिन थके दे रहो तो ऐसा कई बार नींद नहीं आती, पर ऐसे जब व्यायाम करूँ जब ऐसे योग करूँ ध्यान करूँ तो ऐसा के हमारा शरीर जो है सक्रिय रहो जिससे हमारी जो अनिद्रा यानी कि नींद ना आने की जो बीमारी है से दूर हो जाओ और ऐसा संजा जो है बहुत अच्छी नींद जाओ। और जी साथ ही आसार शरीर दे जो है ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ो। व्यायाम शरीर दे ऊर्जा का स्तर बढ़ाओ जिससे पूरा दिन आशा के तरोताजा महसूस हो। और आशा सभी के जो है जो हमारे बुजुर्ग के जो बहुत ज़्यादा भारी कसरत नहीं कर सकते तिना सवेरे की सैर बहुत सभी दे बढ़िया है, तिना जरूर सवेरे सैर करनी चाहिए और हल्का फुल्का व्यायाम जड़े सो कर सको तिना करना चाहिए। और इसी साथ ही योग और प्राणायाम तो हर उम्र बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी करना चाहिए और अपने छोटे बच्चा है भी थोड़ा प्रकृति से तालमेल बिठाना और थोड़ा मानसिक रूपा दे जो शांत रहना और थोड़ा शांत रहना भी आशा सभी के सीखना चाहिए। और इस साथ ही ऐसे कसरत करने साथ ही व्यायाम करने साथ ही ऐसे कुछ एक खेल कूद है जिससे भी हमारा शरीर जो स्वस्थ रहो जो साइकिल चलाना।

है ना, तैराकी, कोई और खेल होगा जिया कबड्डी, खो खो, बहुत सारे जो काफ़ी सारे बच्चे भी मिले लोग खेल सको, और भी लोग आजकल बैडमिंटन है, बहुत सारे जो है खेल, जो थोड़ा मनपसंद खेल हो जैसे क्रिकेट है जरूर खेलना चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है किसी न किसी गतिविधि दे जुड़े दे रहो और ऐसे स्वस्थ रहो, क्योंकि हमारा जीवन जो है बहुत बहुमूल्य है, और ऐसा अपना जीवन जो है बहुत सोची समझी रो जीवनारा लक्ष्य पूरा करते हुए बिताना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और सभी के खुश रहना चाहिए, क्योंकि देखो मानव जीवन एक बार मिलो, मानव जीवन आते जो ऐसा है ऐसा कोई ना कोई लक्ष्य जरूर हो, तिचिर तक जो है ऐसा आगे बढ़ना चाहिए, अपने समाज अपने देशारी प्रगति में योगदान देना चाहिए और अपने परिवार आरा भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे से तभी कर सकूँ जब ऐसे आप भी स्वस्थ रहो और हमारा परिवार स्वस्थ रहना, हमारे सभी जो है आसपास सारा समाज जो है स्वस्थ रहना, तो कितने कितनी आशा सभी के जो है जागरूक होने की जरूरत है और अपने आसपास लोग का है भी जागरूक करने की जरूरत है कि थोड़ा योग करो, कुछ व्यायाम करो और सब स्वस्थ रहो और सब खुश रहो, तो अब वक्त है लोग की तरह।

हमारा परिवार स्वस्थ रहना, हमारे सभी जो है आसपास सारा समाज जो है स्वस्थ रहना। तो कितने कितनी आशा सभी के जो है जागरूक होने की जरूरत है और अपने आसपास लोग का है भी जागरूक करने की जरूरत है कि थोड़ा योग करो, कुछ व्यायाम करो और सब स्वस्थ रहो और सब खुश रहो। तो अब वक्त है लोग की तरह।

श्रोताओं, बिशन दत्त शर्मा जी की आवाज़ सुने तुसी लोकगीत। अब सुनने सवा कुछ खास खास खबर। धर्मशाला रे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स दे बिचे आईपीएल रा पहला क्वालीफायर मैच कल खेलिया जाना। ये मैच संजा 7:30 बजे शुरू होना। मैच जीतने वाली टीम आईपीएल रे फाइनल दे पहुंचनी। इस मैच आखे लईरो HPCA ने सारी तैयारियां पूरी कर ली दी है और इस मैच आखे लईरो क्रिकेट प्रेमिया दे खासा उत्साह है। पेट्रोलरी कीमता दे आज 2.61 रुपए और डीजला दे 2.71 रुपए प्रति लीटर आरी बढ़ोतरी करी राखी। पेट्रोल और डीजला रे मूल्य दे पिछले हफ्ते दे ए चौथी वृद्धि है। अंतरराष्ट्रीय बाजारा दे कच्चे तेला री कीमता दे तेजी और आयात लागत बढ़ने री वजह से तेल कंपनियां पाए भी दबाव बढ़ी रहा। इजरे अलावा रिफाइनिंग मार्जिना दे बदलावारा असर भी इंधनारी कीमता पाए पड़ोए। तो श्रोताओं, ये थी कुछ खास खास खबर। मारा प्रदेश जो है भारतारा एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फा दे ढके पहाड़ और एडवेंचरारी तक दुनिया भरा दे मशहूर है। मारा राज्य शांति, ट्रैकिंग और संस्कृति रा बेहतरीन संगम है। मारे प्रदेश हिमाचल रे सभी जिले अपनी अलग अलग पछाण।

महाशिवी कार्यक्रम अभी आपने सुना। शाम के 6:35 हुए हैं, आइए अब सुनिए कुलवी कार्यक्रम।

कुल भी कार्यक्रम सुनने वाले सभी लोग लय गुलपाल वर्मा फिरा के नमस्कार। आज के कुल भी कार्यक्रम में थारो सभी स्वागत आसा। तो आज हमारे अपने कार्यक्रम में गलबात करने कि जो खेल रहा जितने भी कोई भी तरह तरह जो खेल हो रहा तीनों हमारी जिंदगी दी क्या महत्व हो और साथ ही कुछ और गलबात करनी रहा विश्व फुटबॉल दिवस के बारे दी और अपने कुल्लू जिले के जुड़ने मारे बढ़िया बढ़िया कुल्लू लोकगीत भी रहता मैं किस ना होने तो कार्यक्रम की शुरुआत मारे कि कुल्लू लोकगीत संगे ही करनी रहा और एव लोकगीत गाने वाली कलाकार मारे टिंकू तले सभी के पहले एव कुल्लू लोकगीतों आनंद लिया।

और इंसान स्वस्थ रहा, मजबूत रहा, और एक जिंदगी एक अच्छा दर्शन तेता सौ इंसान अपनी जिंदगी जीवा। खेलकूद हमें गल करिए रहा था बहुत पुराने वक्त और हुए ही आदमी रहा खेलकूद संगे जुड़न रो खेलकूद आयोजन बहुत पुराने वक्त और हुए जो हमारी मानव सभ्यता रहा एत हुआ और सभ्य तो विकास साथ ही साथ ही जो खेल रहा तिना खेलो भी विकास हुआ। हमें अपने देशे गल करी था अपने देशो हमारे भारतवर्ष जो खेल के जुड़ो इतिहास सो बहुत पुराण वासा यदि कुश्ती कबड्डी खो खो जे बहुत प्राचीन खेल आसा और विश्व स्तर के हमें जे हमें शेष दुनिया गल करी था फुटबॉल क्रिकेट टेनिस बैडमिंटन हॉकी जे खेल रहा समय संगे जे भी विकसित हुए और खेल संगे इंसान जिंदगी दी रोमांच बढ़ो और ऊर्जो रहा तिथो भी इंसानी जिंदगी दी महत्व बढ़ो। ता खेल हमारे सभी शरीर ते बहुत जरूरी हुआ खेलकूद के नियमित रूप के खेलकूद दे भाग लेने बाद रहा हमारो शरीर मजबूत हुआ चुस्त दुरुस्त हुआ और इंसान तंदुरुस्त बना और बाहरी शरीर बाहरी अंग साथ ही साथ हमारे जो हृदय आसा फेफड़िया मांसपेशिया हड्डी से सब मजबूत हो आ रहा और खेलकूद के इंसान दी मोटापा ना आनो रक्तचापे जो दिक्कत आ सो खत्म हो रहा और दिल के जुड़ी जो बीमारी रहते थे कभी इंसान बची सक ता छोटे बच्चे और जो नौजवान तीन शरीर विकास तीन ता कोई भी खेल रहा सो बहुत जरूरी हो और ये तक तीने जो शारीरिक कौशल आसा हिम्मत धैर्य और सहन शक्ति इन सभी गुणों तीना देरा विकास हो। साथी खेलकूद के इंसान जो मनोबल आसा इंसान आत्मविश्वास आसा इन सभी चीज़ों भी विकास हुआ और इंसान कोई भी खेल खेला प्रतियोगिता दी जब सो भाग लिया सोचा जीता या हारा ताते उले एक अनुभव प्राप्त हुआ और इन दो स्थिति दी ते उले धैर्य एरा एक किस्म धैर्य शिक्षा मिला संकल्प लेनी एक भावना जागृत हुआ और खेल आदि जो सफलता प्राप्त करने जो निरंतर अभ्यास रहा कोई भी काम करने तई कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने तई लगातार अभ्यास करने शिक्षा मिला और इतक आत्मविश्वास बढ़ा और जिंदगी दी आगू बढ़ने वेरा प्रेरणा मिला।

तजीरा महाराज जो कुलवी लोकगीत सुनो रहा और लोकगीत का गाने वाले कलाकार थे रामदास और मारे गलती चाली नहीं रहा कि खेलो मारी जिंदगी दी बहुत महत्व हवा और खेले जो आयोजन रहा ते तजे कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करा ता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तरह गई ते वो ना हुआ ते साथी साथी प्रदेशों ना हुआ देशों ना हुआ और जितने भी खेले बड़े बड़े आयोजन रहा विश्व कप आसा ओलंपिक आसा और होर जो टूर्नामेंट आ ते तक करोड़ों रुपये आमदनी भी हुआ बाजार और कारोबार चाले रहा और तमारी आर्थिकी दी भी तो सीधे तौर के ये तो महत्व आसा और खेल उद्योग जुड़ेरा खिलाड़ी ट्रेनिंग उपकरण आयोजन इन सभी के रोजगारी अवसर बढ़ा और साथ ही देश जो आर्थिक स्थिति सब मजबूत हो ता खेलो प्रचार रहा और संरक्षण जरूरी आसा खिले खेला के मारो मनोरंजन हुआ तनाव चिंता अवसाद इन सभी चीज़ा हमें खेले माध्यम के दूर कर सकी और खेल कूद आदि भाग लेने वाले जो खिलाड़ी हो रहा तीनों से खुश मिजाज हो आप से प्रसन्न रहने वाले लोग हो और जिंदगी दी तीने हमेशा उत्साह बने रहो और साथ ही जिंदगी दी संतुलन और सुख शांति वाला माहौल बना ता खेल भी जरूरी है रहा शिक्षा भी जरूरी है दुयो बराबर महत्व सा इंसान ने व्यक्तित्व विकास आदि और खेल रहा उस तक हमारा शारीरिक विकास हुआ और साथ ही साथ ही दिमागो विकास हमारी शिक्षा करा और सौ इंसान ने व्यक्तित्व निखारा ता इतक जो नेतृत्व कौशल सामूहिकता और खेल भावना ते तो विकास हो रहा और साथ ही जो पढ़ने वाले बच्चे तीनों सर्वांगीण जो विकास है रहा सौ सुनिश्चित हुआ और खेल आदि जो सफल होने वाले बच्चे से जिंदगी दी हर क्षेत्र जरा सफल हो सका ता जरूर एरा खेल संरक्षण देने जरूरत सरकार समाज दुई स्तर की होने चाहिए प्रयत्न ये बारे दी और साथ ही ताकि खेलों विकास हो सका उचित सुविधा खिलाड़ी दा मिल सका प्रशिक्षण केंद्र प्राप्त हो सका जिद से अपनी प्रतिभा निखारी सका ता जे मारे देश दी अच्छे खिलाड़ी बड़े स्तर के ही होने ता देशो नाम भी पूरी दुनिया दी चमकणो रहा ता खेल मारी जिंदगी आधार हुआ और हमें अगला जाने कि स्वस्थ शरीर देरा स्वस्थ मनो वास हुआ।

ना स्वामी जेतरी विजय गुणे रहा इतल भी बढ़ावा देना। दुनिया दी हमें गोल करी ता फुटबॉल इतिहास हज़ारों वर्ष पुराना वा, जना पहले भी मेरे बोले रहा कि 19वीं सदी मध्य दे ते शुरुआत हुई थी, और जो सिर्फ एक खेल नहीं थी बल्कि इतने माध्यम के लोग में ही दोस्ती भाईचारो समानता सभी बड़ा इन सभी चीज़ों भी जो है एक प्रतीक आसा। बच्चे गोल करी हमें नौजवाने गोल करी चाहे वृद्धे गोले बुजुर्गे गोल करी सब एव खेले दीवाने आसा। और फुटबॉल खेलते वक्त तेरा खिलाड़ी दी अनुशासन समर्पण भावना पैदा हुआ और विश्व फुटबॉल दिवस इन सभी उद्देश्य पूर्ति करा। तो अपने देश हमें जो गोल करी मारे देश देरा फुटबॉल और इतिहास कोई ज़्यादा लंबो नहीं थी, लेकिन एक एव खेल जो प्रशंसक है से हमारे देश दे बड़ी तेजी के बढ़े और खेल प्रति जागरूकता बढ़ाने फुटबॉल जो महत्व सो एव खेल दिवस माध्यम के हमें सब सब जानी और सो हमारी जिंदगी वाला हिस्सा बनो। तो जो खिलाड़ी रहा तिन्हें एव ध्याड़े प्रोत्साहन होर मेड़ा जो एव खेले प्रति आकर्षिता सा तिना दे तीनों उत्साह और बड़ा और अपने खेला होर निखार ना ते प्रोत्साहित स्व प्रोत्साहन तिना ले रहा एवं फुटबॉल दिवस रूपक है तिना ले प्राप्त हुआ। और हमें बोली सकी जो कि फुटबॉल ना सिर्फ एक मनोरंजनों खेल आसा बल्कि ये तक हमें सामाजिक बदलाव भी आनी सकी, जो खेल गरीबी भेदभाव जो असमानता सा तिना दूर करने दे रहा मदद करा। और तो हमें यह गला बोली सकी कि खेल कोई भी हो खेल आदि शामिल हो या हमें अपने शारीरिक विकास करी सकी मानसिक विकास करी सकी और साथ ही साथ ही अपनों मनोरंजन करी सकी और सकारात्मक दिशा दी हमें समाज और दुनिया नहीं सकी।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा
1: नमस्कार।
0: इस अंक में मैं हूं कुलदीप।
1: और मैं हूं जय।
0: जय जी, कैसे हाल चाल है आपके?
1: कुलदीप जी बहुत ही बढ़िया है। इन दिनों देखिए कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है
0: जी,
1: बीच बीच में बारिशें भी हो रही है, ओलावृष्टि भी हो रही है, मौसम एकदम से जो है बदल रहा है। कब क्या मौसम आ जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं होता है।
0: जी
1: तो ऐसे में किसान बागवान भाई बहनों को काम भी बहुत सारे रहते हैं। गेहूं की कटाई का काम है, हालांकि जौ की जो फसल है किसान भाइयों ने निकाल ली होगी, इसके साथ ही जो गेहूं की फसल है निचले क्षेत्रों में तो निकाल ली है, लेकिन जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है, जो ठंडे क्षेत्र है, उसमें अभी फसल निकालने को है। तो किसान और बागवान भाई बहनों से यही चाहेंगे कि आप अपनी फसल का जरूर ध्यान रखें। जब भी बादल आए, बारिश आए, तो आप पहले से इंतजाम करके रखें। प्लास्टिक की तिरपाल आपके पास होनी चाहिए ताकि जो आपकी गेहूं की फसल है, जो 6 महीने की आपकी जो मेहनत है, वो बची रहे। और
0: जी
1: साथ ही साथ पशुधन का भी आप ध्यान रखते रहें। धूप का समय है, दिन में यदि ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पशु को बीमार होने का भी खतरा रहता है। तो किसान साथियों, छायादार स्थान पर आप दिन में पशु को जरूर बांधें और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।
0: तो देखिए, समय रहते अगर किसान भाइयों कोई भी आप काम करते हो, चाहे कृषि की हम बात करें, बागवानी की अगर हम बात करें, तो क्या होता है कि आपका उत्पादन अच्छा होता है। उत्पादन अच्छा होने से आपको क्या होगा कि आपको आर्थिक लाभ भी अच्छा होगा। देखिए जय जी, अगर हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों की बात करें, तो किसान और बागवान भाई बहनें कृषि और बागवानी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए करते हैं।
1: जी
0: तो अगर वो सही समय पर, जैसे आने वाली फसलें हैं, आने वाली फसलों की अगर सही समय पर बुआई अपने खेतों में करते हैं, तो उससे क्या होगा कि लाभ अच्छा होगा। तो देखिए, समय रहते कोई भी, चाहे कृषि के कार्य हम बात करें, चाहे हम बागवानी के कार्यों की बात करें, सारे के सारे जो कार्य हैं किसान और बागवान भाई बहनों, आपको समय रहते करने हैं।
1: जी
0: तो देखिए जय जी, सबसे पहले तो अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ आज के मुख्य मुख्य आकर्षणों की बात कर लेते हैं। तो जय जी, आज हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए कौन से मुख्य जो आकर्षण आप लेकर आए हैं?
1: किसान साथियों, आज काम की बातों के तहत आपको जानकारी देंगे धान की काश्त इस विषय पर, और रोजाने की तरह पहाड़ी लोकगीत के साथ करवाएंगे आपका मनोरंजन, और साथ ही साथ सुनवाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय रहेगा हिमाचल प्रदेश में और

0: की खेती, संभावनाएं और तरीके। कार्यक्रम में अधिक जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा शर्मा और उनसे बातचीत करेंगे कुलदीप
1: जी। तो देखिए, जैसे जय जी आप पहले ही हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को बता चुके हैं कि आज हम काम की बातों के अंतर्गत बातचीत करने जा रहे हैं धान की काश्त के बारे में। तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की अन्य फसलों की बात करें तो अन्य फसलों में देखिए धान की जो काश्त है वो काफ़ी सारे क्षेत्रों में की जाती है और काफ़ी अच्छा उत्पादन हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं वो धान से प्राप्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो देखिए कांगड़ा का क्षेत्र हो गया, मंडी जिला हो गया, और लगभग अगर हम कांगड़ा या मंडी दो जिलों की बात करें तो लगभग जो है 65% के आसपास धान की खेती इन दो जिलों में की जाती है। इन दोनों जिलों में इसकी उपज बढ़ाने के लिए काफ़ी क्षमता उपलब्ध है, जिससे प्रदेश में धान के उत्पादन को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कांगड़ा और मंडी के जो क्षेत्र है वहाँ पर अगर धान की खेती हमारे किसान भाई करना चाहते तो अच्छे धान उत्पादन वो कर सकते हैं
0: जी।
1: कोई भी फसल देखिए जय जी हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगाते हैं, चाहे बागवानी की बात करें, कृषि की बात करें, तो सबसे मुख्य जो बात आती है वो आती है उन्नत किस्मों की, कि कौन सी किस्में उन्हें लगानी है और अच्छी किस्में लगा करके उत्पादन भी अच्छा होता है। तो अगर हम धान की बात करें तो असिंचित और सिंचित क्षेत्रों के लिए अलग अलग किस्में हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जय जी हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए कि असिंचित अगर हमारे क्षेत्र है तो वहां पर कौन सी धान की किस्में वो अपने खेतों में लगा सकते हैं।
0: जी किसान साथियों, असिंचित क्षेत्र की अगर बात करें, VL धान 221, यह एक मध्यम लंबाई, जल्दी पकने वाला और अधिक उपज देने वाली असिंचित क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है और साथ ही यह 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है और इसके दाने मध्यम मोटे होते हैं। यह धान की मुख्य बीमारियों के लिए रोग प्रतिरोधी है। इसी के साथ अन्य किस्म की बात करें, सुकारा धान 1, जिसे आप HPR 1156 भी कहते हैं, यह एक मध्यम ऊंचाई वाली किस्म है जो 88 से 110 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और जल्दी तैयार हो जाती है। इस किस्म के पौधे सीधे, मध्यम बालियां, दाने लंबे, पतले और बिना बालों के होते हैं। बारानी परिस्थितियों में औसत उपज इसकी 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म ब्लास्ट झुलसा, जीवाणु झुलसा और बदरंगा रोग के प्रति प्रतिरोधी है। कीटों से भी इस किस्म में ज़्यादा क्षति नहीं होती। इस किस्म को बारानी परिस्थितियों में सीधी बिजाई द्वारा मध्यम ऊंचाई के क्षेत्रों के लिए उगाने की जो सिफारिश है वो की जाती है और यह किस्म रोपाई की परिस्थितियों में भी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होती है।
1: जी, तो देखिए जय जी आपने बात की कि अगर हमारे किसान भाई असिंचित क्षेत्रों में धान की बुआई करना चाहते हैं तो कौन सी किस्में वो लगा सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे अगर हमारे किसान भाइयों के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन है तो सिंचाई वाले कृषि भूमि है वहाँ कौन सी धान की वो किस्में लगा सकते हैं। इसमें आती है HPR 2143 और साथ ही साथ HPR 1067 और RP 2421। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे HPR 2143 की। ये एक मध्यम लंबाई की किस्म मानी जाती है और अगर हम तैयार होने की बात करें तो 125 से 135 दिनों में ये तैयार हो जाती है और अगर जिन क्षेत्रों में झुलसा रोग आपकी फसल में आता है तो ये जो किस्म है ये झुलसा रोग प्रतिरोधी किस्म भी मानी जाती है। इसे बिजाई के लिए मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुमोदित किया गया है। ये किस्म जो है बिजाई के लिए ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इसकी बालियां काफ़ी लंबी होती है। दाने अगर बात करें तो लगभग जो एक बाली में दाने आते हैं लगभग 200 के आसपास आते हैं। साथ ही साथ हम बात करना चाहेंगे HPR 1067 की। तो ये जो किस्म है ये पहाड़ी इलाकों के सिंचित क्षेत्रों के लिए अनुमोदित की जाती है। ये मध्यम लंबाई वाली जल्दी पकने वाली फसल है और लगभग जो है 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी बालियां काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, दाने लंबे और मोटे होते हैं और जिनका प्रति हजार दानों का भार की अगर हम बात करें तो लगभग 30 ग्राम के आसपास होता है। ये भी जो किस्म है ये ब्लास्ट रोग प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है, जिसकी औसत पैदावार की बात करें किसान भाइयों तो लगभग 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास आप इस किस्म से धान की जो पैदावार है वो ले सकते हैं।
0: किसान साथियों, सिंचित बुझाई के लिए एक और किस्म की बात करें RP 2421 की, तो यह मध्यम लंबाई, जल्दी पकने और अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसे रोपाई और सिंचित परिस्थितियों के लिए अनुमोदित किया गया है और यह 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके दाने मध्यम मोटे होते हैं। यह धान की मुख्य बीमारियों के लिए रोग प्रतिरोधी है और इसकी उपज 38 क्विंटल हेक्टेयर बताई

0: जाती है। किसान साथी उसके साथ ही बात करते हैं कस्तूरी की। यह एक मध्यम लंबाई और अधिक उपज देने वाली सिंचित क्षेत्रों के लिए बासमती की किस्म है, जो 1000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। किसान साथियों, यह मध्यमवर्तीय क्षेत्रों में 135 से 145 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके दाने लंबे, पतले और खुशबूदार होते हैं। यह झुलसा रोग के लिए मध्यम प्रतिरोधी है और इसकी उपज 30 क्विंटल हेक्टेयर है।
1: तो ये तो आपने बात की, सिंचित क्षेत्रों में अगर हमारे किसान भाई धान की काश्त करना चाहते हैं तो कौन सी किस्में वो अपने खेतों में लगा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए जय जी, हम बात करना चाहेंगे ऊंचे क्षेत्रों के लिए। लगभग जो है 1300 मीटर से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी अगर धान की काश्त हमारे किसान और बागवान भाई बहन करना चाहते हैं तो कौन सी वो किस्में लगा सकते हैं। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए तो इसमें वरुण धान की काश्त भी वो कर सकते हैं। इस किस्म का अनुमोदन जो है वो सिंचित पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर जैसे कि हमारे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के कुल्लू है, मंडी है, शिमला के जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर आप अगर धान की खेती करना चाहते हो तो उसमें आप वरुण धान लगा सकते हो। ये जो किस्म है ये मध्यम बोनी किस्म मानी जाती है और ये जो किस्म है ये जल्दी ही तैयार हो जाती है। लगभग 140 से 145 दिनों के अंदर ये जो फसल है वो तैयार हो जाती है। जो मुख्य मुख्य जो धान की बीमारियां हैं उसके प्रति भी इसमें प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। इस किस्म में ठंड सहने की क्षमता भी होती है और साथ ही साथ सिंचित क्षेत्रों में इसकी औसत पैदावार की बात करें तो लगभग जो है किसान भाइयों आप ले सकते हो 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये तो बात हुई वरुण धान की और साथ ही साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखो भृगु धान की खेती भी आप कर सकते हो। ये जो किस्म है लगभग 1400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आप लगा सकते हो, जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हो गए, कुल्लू है या कुल्लू से ऊपर के जो हमारे क्षेत्र है वहाँ पर जो है आप भृगु धान की खेती कर सकते हैं। और ये जो जल्दी ही तैयार होने वाली एक बोनी किस्म मानी जाती है जो ठंड को सहन करती है, इसके दाने छोटे और काफी मोटे होते हैं और चावल जो है वो लाल रंग का होता है। सामान्य खाद देने पर ये किस्म गिरती भी नहीं है और दाने भी नहीं झड़ते हैं। ये जो किस्म है ये ब्लास्ट रोग, भूरा रोग और पर्णछद बीमारियों के प्रति और साथ ही साथ जो हमारे कीट होते हैं जैसे कि तना छेदक कीट है या पत्ता लपेटा कीट है, उन कीटों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिरोधक इस किस्म को माना जाता है। तो देखिए जय जी, ये तो बात हुई हमारे किसान भाई अगर धान की काश्त करना चाहते तो कौन सी मुख्य किस्में वो अपने खेतों में लगा सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें, देखिए किसान भाई धान की तैयार पनीर है उसकी रुपाई अपने खेतों में करना चाहते हैं तो सही तरीका रुपाई का कैसा रहेगा, किस तरह से आपको रुपाई करनी है, उसके बारे में थोड़ी सी बात सभी किसान और बागवान भाई बहनों से करना चाहेंगे।
0: किसान साथियों, बात करते हैं प्रचलित विधि की। तो उचित समय की रुपाई के लिए आप 20x15 सेंटीमीटर और देर से रुपाई के लिए 15x15 सेंटीमीटर की दूरी पर आप पौधे लगाएं, परंतु बासमती किस्में को उचित समय व देरी से होने वाली रोपाई के लिए आप 15x15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही आप लगाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि एक स्थान पर 2 से 3 पौधे ही रोपें, पौधों को 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पर ना लगाएं। रोपाई के बाद खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी कम से कम 5 दिन तक खड़ा रहना चाहिए और इसके पौधे सुदृढ़ रूप से लग जाते हैं।
1: ये तो साधारण जो प्रचलित विधि है उसकी जानकारी आपने जय जी हमारे किसान भाइयों को दी। साथ ही साथ अगर हम बात करें SRI विधि की तो इसमें किस तरह से धान की काश्त आप कर सकते हो, पौधों से पौधों की दूरी भी आपको रखनी है 20 सेंटीमीटर और कतारों से कतारों की दूरी भी वो भी किसान भाइयों आपको रखनी है 20 सेंटीमीटर के आसपास। किसान भाइयों एक स्थान पर केवल एक ही पौधा आपको लगाना होता है और पौधे को 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पर आपको नहीं लगाना होता है। इस बात का विशेष ध्यान किसान भाइयों आपको रखना होता है कि पौधे की जड़ें रोपाई के समय आपको बिल्कुल सीधी रखनी है जिससे पौधों को कोई हानि नहीं होगी। पौधों को नर्सरी से निकालने के बाद जितना जल्दी हो सके यानी 1 घंटे के अंदर ही आपको रोपाई कर लेनी है। रोपाई के बाद खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी कम से कम 5 दिनों के लिए आपको खड़ा रहने देना है धान की बुआई के समय और साथ ही साथ रोपाई के 5वें दिन खाली स्थान में पौधे की रोपाई आपको जल्दी से कर लेनी है जिससे आपका जो स्थान है वो खाली ना रहे और अच्छा उत्पादन आप कम क्षेत्र से भी ले सको। तो देखिए जय जी, ये तो ही अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ बातचीत धान की काश्त के बारे में कि किस प्रकार की कौन सी किस्में आप अपने खेतों में लगा सकते हैं और साथ ही साथ किस तरह से आपको धान की जो सही तरीके से रुपाई करनी है। तो देखिए इस जानकारी के बाद हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को इंतजार होगा एक प्यारे से पहाड़ी लोकगीत का। तो आइए जय जी, अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ हम भी सुनते

0: किसान साथियों, समूह स्वरों में सुना आपने ये पहाड़ी लोकगीत। कुलदीप जी, इसके बाद कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और किसान और बागवान भाई बहनों को सुनवाते हैं जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। कार्यक्रम का विषय रहेगा हिमाचल प्रदेश में ऑर्किड की खेती संभावनाएं एवं तरीके। कार्यक्रम में अधिक जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूजा शर्मा और उनसे बातचीत करेंगे कुलदीप। आइए सुनते हैं।
1: किसान और बागवान भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि जगत कार्यक्रम के माध्यम से हम समय समय पर आपको विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देते रहते हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित है, बागवानी से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है। तो इसी क्रम में आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश में ऑर्किड फूल की संभावनाएं और किस प्रकार से आप अच्छे तरीके से ऑर्किड फूल की खेती कर सकते हो या फिर उगा सकते हो। और हमें इस विषय में अधिक जानकारी देंगे डॉक्टर पूजा शर्मा। सबसे पहले तो हम डॉक्टर पूजा शर्मा का अपने इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: डॉक्टर शर्मा, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को तो देखिए फल राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन अगर हम पुष्प उत्पादन या फूलों की खेती की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फूलों की खेती की जाती है।
2: जी
1: तो हमारे किसान भाई देखिए कार्नेशन की खेती करते हैं, गुलदाउदी की खेती करते हैं, कई प्रकार के फूलों की खेती करते हैं। ऑर्किड की खेती की अगर हम बात करें तो ऑर्किड की खेती की संभावनाएं या इसका महत्व फूलों की खेती में देखें तो किस प्रकार का महत्व ऑर्किड का होता है फूलों की खेती में।
2: जी बहुत ही सुंदर तरह से आपने इंट्रोडक्शन दी और जो मैं बात कहना चाह रही थी वो आपने ही कह दी है कि किसान भाई हिमाचल प्रदेश में पहले ही गुलदौदी, गेंदा और कार्नेशन की खेती कर रहे हैं। ये ऑर्किड जो है ये एक नवीन पुष्प है और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टॉप 10 कटफ्लावर्स की सूची में आता है। अब धीरे धीरे हमारे देश ने भी इसका व्यावसायिक तौर पर उत्पादन प्रारंभ कर दिया है और हमारा ये जो हिमाचल प्रदेश है इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो हमारा जलवायु है, ये इस ऑर्किड की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं, खासकर जब हम सिम्बिडियम ऑर्किड की

0: बात करेंगे। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुष्पीय फसल है, अत्यंत सुंदर है और अपने अनुपम सौंदर्य के साथ साथ ये एक बहुत लंबी गुलदान आयु, यानी लगभग एक माह से 40 दिन तक इसे जब हम काट कर अपने गमले में सजाते हैं तो इसकी गुलदान आयु बहुत लंबी है, ये इसके लिए वैल्यू की जाती है। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पतली पंखुड़ी वाली फसल नहीं है, ये मोटी लेदरी इसका पेटल होता है, पंखुड़ी होती है और ये बहुत ही सुंदर रंगों जैसे सफ़ेद, पीला, हरा, मैरून, ब्राउन और दो रंगी किस्मों में भी आ रहे हैं।
1: जी, तो देखिए अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें डॉक्टर शर्मा, तो हिमाचल प्रदेश पर्वतीय राज्य है, हम खेती किस प्रकार कर सकते हैं?
0: जी, व्यावसायिक तौर पर हमारे देश में अभी फिलहाल जो हमारे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे मेघालय, सिक्किम, शिलोंग इत्यादि, यहाँ पर इसकी व्यावसायिक खेती की जा रही है क्योंकि वहाँ का तापमान और आर्द्रता जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं वो इसकी जलवायु के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल हैं। तो इसी प्रकार के क्षेत्र जो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी फॉल कर रहे हैं जैसे हमारा मिड हिल जोन सोलन वाला एरिया है, मंडी के ऊपरी ठंडे इलाके हैं, कांगड़ा का जोन है, ये सारे इलाके इसकी खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। ये फूल सर्दियों से लेकर बसंत ऋतु तक खिलते हैं और अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो यह आज के संदर्भ में सबसे अधिक मूल्यवान पुष्प हैं। एक पुष्प डंडी जिस पर लगभग 12 से 15 फूल लगे हों, स्पाइक इसे कहा जाता है किसान भाइयों, लगभग ये एक स्पाइक आपके खेत से कम 250 से लेके 500 रुपये की इसका सेल प्राइस है। और ये हमने ये भी नोट किया होगा कि ऑर्किड यूनिक फूल है, ये अभी तक कॉमन बाजार में नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, ये जहाँ भी प्रयोग हो रहा है ये लगभग सीधा ही दिल्ली या चंडीगढ़ की मार्केट में जा रहा है।
1: जी, तो डॉक्टर शर्मा हम आपसे जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों ऑर्किड की खेती के बारे में, तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र भी है, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र भी है और निचले मैदानी क्षेत्र भी है, तो अगर ऑर्किड की खेती हमारे किसान और बागवान भाई बहन करना चाहते हैं तो किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता ऑर्किड की खेती के लिए रहती है?
0: ऑर्किड की खेती के लिए जो हमारे मध्यवर्तीय पर्वतीय क्षेत्र हैं और उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वो अत्यंत अनुकूल हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि लगभग इसकी खेती उन जगहों पे की जाती है जहां दिन का तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और रात का तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हालाँकि ये पौधे हैं ये इससे कम और इससे अधिक टेम्परेचर को भी बहुत बखूबी से बर्दाश्त कर लेते हैं। जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि सिम्बिडियम की खेती के लिए खुले हवादार शेड नेट के अंदर इसकी खेती की जाती है या पॉलीहाउस में लगाया जाता है। इसको बहुत खुली हवा की आवश्यकता होती है, उत्तम प्रकाश की आवश्यकता होती है, उत्तम प्रकाश और नमी की मात्रा 60 से 70% नमी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रहनी चाहिए। तो जिन स्थानों पर जैसे सोलन का इलाका जो है वहाँ पर नमी समर्स में गर्मियों के मौसम में 70 से 80% नहीं रहती है, तो इन स्थानों पे हमारे पॉलीहाउस या शेड नेट के अंदर मिस्टिंग का प्रबंध होना चाहिए, यानी नमी का प्रबंध होना चाहिए। तो समर्स में हम नमी उचित मात्रा में नमी बनाकर रखते हैं जहाँ इसकी खेती हम कर पा सकते हैं।
1: आपने बात की कि हमारे जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं उसमें फूलों की यानी ऑर्किड की खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं, तो डॉक्टर पूजा शर्मा हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इसकी खेती हमारे जो किसान भाई करना चाहते हैं तो क्या वो सीधे तौर पर जमीन में या मिट्टी में इसे लगा सकते हैं या फिर कोई अन्य तरीका है जिसके द्वारा हमारे किसान भाई ऑर्किड की खेती अच्छी तरह से कर सकते?
0: ऑर्किड की खेती करने से पूर्व ये जान लेना ज़रूरी है ये किस प्रकार का पौधा है। तो ये एक शाकीय पौधा होता है जिसमें स्यूडो बल्ब्स होते हैं, बैक बल्ब्स होते हैं और जो नई पुष्प शाखाएं फूटती हैं उन्हें लीड्स कहा जाता है। तो एक ऐसा मैच्योर पौधा जिसमें कम से कम एक स्यूडो बल्ब हो, 2 से 3 बैक बल्ब हो, उसमें नई शाखाएं और पुष्पन होता है। और एक महत्वपूर्ण ये बात है ऑर्किड के विषय में, खासकर सिम्बिडियम ऑर्किड के बारे में,

0: कि इसकी जड़ें एरियल होती हैं, वो हवा में रहती हैं। हवा में रहेंगी तो इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये हवा से ही नमी और अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए जिस भी माध्यम में हम इसको लगाएंगे वो माध्यम मृदा रहित होना चाहिए, वो बिल्कुल खुला और हवादार होना चाहिए। तो अनेकों अनेक अनुसंधान सिम्बिडियम ऑर्किड के ऊपर किए जा चुके हैं, परंतु हम इसे जिस मीडियम में लगा रहे हैं उसमें कोको चिप्स यानी कि नारियल का जो खाल है उसके चिप्स बनाए जाते हैं और कोको पीट नारियल का ही बुरादा, तीन तीन भाग इसके लिए जाते हैं, उसमें एक भाग ईंट के टुकड़े डाले जाते हैं और एक भाग पेड़ों की छाल डाली जाती है। तो इस प्रकार का जब हमारे पास मिक्सचर बनेगा तो हम ये जान पा रहे हैं कि ये बिल्कुल हवादार मिक्सचर है। ऐसे हवादार मिक्सचर पर ऑर्किड की खेती करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसे ज़मीन में बाकी फसलों की तरह नहीं लगाया जाता। तो किसान भाइयों, जिनके पास ज़मीन सीमित है, आपके पास बहुत अधिक ज़मीन नहीं है, या आप ये कहेंगे ज़मीन है ही नहीं, जो लैंडलेस किसान भाई हैं हमारे, वो इसकी खेती अपने छतों के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी खेती हमें गमलों में करनी है या पॉली बैग्स के अंदर करनी है, या हम क्रेट्स के अंदर इस पौधे को लगा सकते हैं। सिर्फ महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली ये है कि ऑर्किड का पौधा जब भी लगाएंगे तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपसे कही उस पर कम से कम एक स्यूडो बल्ब, एक से दो बैक बल्ब होने अत्यंत आवश्यक हैं। और इस स्थिति में आपका पौधा आता है जब वो कम से कम 4 वर्ष पुराना हो। ये थोड़ी सी लिमिटेशन भी कहूँगी मैं ऑर्किड कल्टिवेशन के लिए, क्योंकि जो आपका पौधा है वो शाकीय अवस्था में ही 2 से 3 साल रह रहा है जब हम बीज से प्रवर्धन कर रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब भी हम कमर्शियल वेंचर शुरू करने का सोचें सिम्बिडियम को लेकर, तो हमें पूर्णतः मैच्योर 3 से 4 या उससे अधिक वर्ष के पौधों का ही चयन करना है, उन्हें ही खरीद कर लाना है अपने वेंचर के लिए।
1: जी डॉक्टर शर्मा, हमारे जो किसान भाई कोई भी फसल लगाते हैं तो फसल में उन्हें खाद की आवश्यकता होती है
0: जी,
1: क्योंकि खाद से ही उसे पोषण मिलता है और पोषण से ही उत्पादन हमारी फसलों का अच्छा होता है। तो अगर ऑर्किड की खेती हमारे किसान भाई करना चाहते हैं, क्या इसमें खाद की आवश्यकता होती है, या फिर आवश्यकता होती है तो कौन सी खादें जो हैं वो हमारे किसान भाई इसमें डाल सकते हैं?
0: जी, वैसे तो ऑर्किड अपने आप ही हवा से नमी और विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट अपने लिए लेने में सक्षम रहते हैं, जो इसके एरियल रूट्स हैं वो सक्षम रहती हैं। लेकिन अगर हम व्यावसायिक खेती की बात करें, जहां हम किसान के लिए आमदनी की बात कर रहे हैं, तो हर एक पौधे से बेहतरीन उर्वरकता और हाई क्वालिटी के फूल या स्पाइक्स लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम ये बात करते हैं तो पौधों को खाद देना अत्यंत आवश्यक है। ये एक ऑर्किड ऐसा पौधा है जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ के समय, यानी जिस समय उस पर सिर्फ हरी पत्तियाँ हों, लगभग सारी गर्मियों में जो खाद की मात्रा है वो अलग रहती है, जिसमें नाइट्रोजन की अधिकायक रहती है, ताकि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो और उसके अंदर खाना पीना फूड मटेरियल कलेक्ट हो सके, जब इसे सर्दी ऋतु में या बसंत ऋतु में पुष्पन पे जाना है। लेकिन जैसे ही हमारे पास पुष्पन का समय आता है, नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स, हम ऐसा करते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर देते हैं और पोटाशियम रिच जो खादें हैं उनकी इनको सप्लाई की जाती है। एक और बात ध्यान देना आवश्यक है कि हमारे पास इसके दोनों ही वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज के फर्टिलाइजर शेड्यूल उपलब्ध हैं, और ये सारे फर्टिलाइजर फर्टिगेशन सिंचाई वाले जल के साथ साथ हम पौधों को देते हैं, और ये सिंचाई सप्ताह में 2 बार करने की सलाह दी जाती है।
1: जी, तो डॉक्टर शर्मा, जब भी कोई किसान भाई अपने खेतों में फसल लगाते हैं तो समय समय पर विभिन्न प्रकार की काम उन्हें अपनी फसलों में करने पड़ते हैं, तो जब हमारे किसान भाई ऑर्किड की खेती करते हैं तो कौन से कार्य है जो उनको समय समय पर करते रहना है जिससे उत्पादन उनके फूलों का यानी ऑर्किड का अच्छा हो?
0: जी, ऑर्किड के उत्पादन में, क्योंकि ये शाकीय प्रकार का हर्बेशियस पौधा होता है, तो हमने इसको गमले में या पॉली बैग में लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पौधों में जब हमारी स्पाइक, जब पुष्प डंडी हमें दिखने लगे,

0: जाए तो उसे सहारा देना। पुष्प डंडी लगभग हमारी 80 से 90 सेंटीमीटर लंबी भी जाती है, जो स्टैंडर्ड प्रकार के हमारे सिम्बेडियम ऑर्किड होते हैं, और इस पर 12 से 15 फूल रहते हैं जो अत्यंत भारी होते हैं, इसकी डंडी हैवी है। तो इस प्रकार की स्पाइक को सहारा देने की अत्यंत आवश्यकता रहती है। तो इसमें हर एक स्पाइक को बांस की खरपच्चियों के साथ सुतली से बांधकर स्टेकिंग की जाती है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम स्टेकिंग नहीं करेंगे तो ये बहुत सारे पुष्प एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और वो सीधे ग्रो करने के बजाय ऊपर से मुड़ जाते हैं। इस डंडी को सीधा रखना और पुष्पों की सीधी ग्रोथ के लिए स्टेकिंग अत्यंत आवश्यक है। जबकि अगर हम व्यावसायिक तौर पे फूलों की उत्पादन की बात करेंगे तो कभी कभी बहुत जो हाई लेवल की प्लांटेशन होती हैं वहाँ पर इन कोरसियों से बांधकर छत के साथ बांध दिया जाता है ताकि हमारा जो कट स्टेम है वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। इसके अतिरिक्त एक और जो अत्यंत महत्वपूर्ण शस्य क्रिया है वो है सूखे पत्तों का निकालना। अब जो पौधे पे पत्ते निकल रहे हैं, अगर हमें वो कहीं से बीमारी से ग्रस्त लग रहे हैं या कोई उसे कीट द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है तो ऐसे पत्तों को हटा देना चाहिए। और दूसरी बात, जो बल्ब्स और स्यूडो बल्ब्स के ऊपर एक सूखी हुई शल्क से डेवलप हो जाते हैं उन्हें समय समय पर निकालना इसकी ग्रोथ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्यूडो बल्ब और बैक बल्ब हमारे पौधे पे अटैच हैं वो भी हरे रंग के होते हैं, उनके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण करने की कैपेसिटी है, वो पौधे के लिए सोर्स का काम करते हैं पूरा का पूरा फूड मटेरियल का, और उनका रहना पौधों की बढ़वार के लिए और अधिकाधिक पुष्प उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो बिल्कुल हल्की फुल्की सिंचाई, लेकिन लगभग गर्मियों में एक दिन के अंतराल पर और सर्दियों में हफ्ते में सप्ताह में दो बार करनी आवश्यक।
1: जी, इसकी कटाई कब हमारे किसान भाई कर सकते हैं? क्योंकि अगर सही तरीके से हमारे किसान भाई कटाई नहीं करेंगे तो उनको जो दाम है वो बाजार में अच्छे नहीं मिलेंगे। तो तैयार कब होता है और कब इसकी अच्छी कटाई हमारे किसान भाई कर सकते हैं?
0: जी, लगभग हमें अक्टूबर नवंबर के पास हमें थोड़ी थोड़ी पुष्प कलियाँ नज़र आने लग जाती हैं पौधे के ऊपर, तो ये लगभग 2 महीने का समय लेता है फूल एक स्पाइक में परिवर्तित होने में, और उस स्पाइक को खिलने में भी लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं। एक स्पाइक पे लगभग अगर हमारे 10 से 15 तक पुष्प हैं तो जब तक लगभग 75% पुष्प पूर्णतः खिल ना जाएं तब तक इसकी कटाई नहीं की जाती, क्योंकि अगर हम इसे जल्दी हार्वेस्ट कर देंगे, जल्दी इसकी कटान कर लेंगे जब कुछ पुष्प बंद ही रहेंगे तो वो पुष्प गुलदान के अंदर अंत में नहीं खिलते हैं। तो इसलिए स्पाइक के ऊपर 75 से 80% पुष्प हमारे खुले होने चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात ये भी है कि किस समय पर इनकी कटाई की जानी चाहिए। तो प्रातःकाल में एक स्टरलाइज्ड स्केचर को लेके हम खेत के अंदर जाते हैं और इन फूलों को स्लांटिंग कट देकर अपने बाल्टी के अंदर डाल दिया जाता है। फूलों को पैकिंग हॉल में लाया जाता है जहाँ का भी टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रखना चाहिए। हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पौधा फिजियोलॉजिकली बहुत एक्टिव होता है फूल और एकदम से अपनी गुलदान आयु को ख़त्म कर रहा होता है, तो हम इसे जितने कम टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे, तापमान पे रखेंगे, उतनी इसकी गुलदान आयु लंबी होगी।
1: तो डॉक्टर पूजा शर्मा, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी हिमाचल प्रदेश में ऑर्किड के फूलों की खेती की संभावनाएं और किस प्रकार से हमारे किसान भाई ऑर्किड की खेती कर सकते हैं। ये सब जानकारी देने के लिए डॉक्टर पूजा शर्मा, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
2: किसान साथियों, कार्यक्रम में आपने सुनी यह जानकारी पूर्ण बातचीत। विषय था हिमाचल प्रदेश में ऑर्किड की खेती संभावनाएं एवं तरीके। कार्यक्रम में अधिक जानकारी दे रही थी डॉक्टर पूजा शर्मा और उनसे बातचीत कर रहे थे कुलदीप, और उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी से जरूर लाभान्वित हुए होंगे।
3: जी,
1: तो जय जी, चलते चलते अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों को

0: जानकारी देना चाहेंगे कल के कृषि जगत कार्यक्रम के मुख्य मुख्य आकर्षणों की। तो देखिए, कल काम की बातों के अंतर्गत हम अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ बातचीत करेंगे पौध संरक्षण रसायनों के उचित प्रयोग के बारे में, और साथ ही साथ प्यारे प्यारे पहाड़ी लोकगीत भी जय जी हम अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के लिए लेकर आएंगे, और एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण भी हम अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों को सुनवाएंगे।
1: तो इसके साथ ही कुलदीप जी, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। आप सभी किसान और बागवान श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: ये आकाशवाणी शिमला है। 7:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के धर्मशाला और हमीरपुर केंद्र के साथ ही FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप DTH सेवा पर भी सुन सकते हैं।
4: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
5: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
4: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा देश भर में सर्वश्रेष्ठ। CBSE पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को मिलेगा अधिक विषयों का विकल्प। पंचायतीराज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में कल 1293 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आग्रह। 16 जून से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग। और DD News की महानिदेशक ममता वर्मा ने दूरदर्शन केंद्र शिमला में नए पॉडकास्ट स्टूडियो महारा हिमाचल का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को देश भर में सर्वश्रेष्ठ बनाया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर बदलाव किए हैं। उन्होंने आज हाल ही में स्तरोन्नत किए गए CBSE राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छोटा शिमला में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से CBSE प्रणाली को लेकर सवाल भी पूछे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटा शिमला स्कूल में इस वर्ष 30 जून से पहले अध्यापकों के सभी खाली पद भर दिए जाएंगे और CBSE पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अब अधिक विषयों का विकल्प मिलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों से 5 जून को शिमला में होने वाली एंटी चिट्टा रैली में भाग लेने का आह्वान किया। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के तहत कल 1293 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 तक होगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू होगी और कल शाम तक इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने आज शिमला में बताया कि 8,198 अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दूसरे चरण में 28 मई जबकि तीसरे चरण में 30 मई को वोट डाले जाएंगे।
7: टोटल पूरे हमारे 21,678 मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं, जिसमें से हमारे 16,539 मतदान केंद्र जो बिल्कुल सामान्य हैं, लगभग 3,554 संवेदनशील हैं और 1,585 मतदान केंद्र जो है वो अति संवेदनशील हैं और उनके ऊपर वेबकास्टिंग की जा रही है, लाइव वेबकास्टिंग होगी। तो टोटल हिमाचल में 50,80,000 मतदाता है, जिसमें से हमारे 25,08,000 पुरुष हैं और 25,12,000 महिलाएं फर्स्ट टाइमर वोटर हैं। वो हमारे 52,300

0: वोट रेंज में ऐड हुए हैं बच्चे 18 साल वाले। ग्राम पंचायत भाटा वाली विकास खंड पौंटा साई में 4623 मतदाता हैं इसमें, और सबसे कम जो है वो पूहू की ग्राम पंचायत सुमरा में है, वहां पर केवल 178 मतदाता है।
1: प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में भी पंचायत चुनावों को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पहले चरण में जिला में 287 पंचायतों में मतदान होगा। दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल पंचायत में मतदान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने आज धर्मशाला में बताया कि बड़ा भंगाल पंचायत में डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी।
2: हमारी 287 पंचायतें इसमें शामिल हैं। हमारा बड़ा बंगाल की एक पंचायत है, उसकी मतगणना कल नहीं हो पाएगी। वहाँ पर पोलिंग पार्टी मतदान संपन्न करवा कर वापस यहाँ पर आएंगे। उनकी जो मतपेटियाँ हैं उनको हम स्ट्रांग रूम में सील करके रखेंगे, और 31 तारीख को जिस दिन हमारी जिला परिषद और BDC की काउंटिंग होनी है, उनके साथ साथ बड़ा बंगाल की पंचायत की मतगणना भी की जाएगी।
1: सोलन जिला में पहले चरण के मतदान कल 87 पंचायतों में होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि जिला में कुल 352901 मतदाता पंजीकृत है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर CCTV से निगरानी की जाएगी और इन्हें वेबकास्टिंग से जोड़ा गया है।
3: जिला सोलन में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं। पहले फेज में 87 पंचायतों में चुनाव होंगे, और प्रशासन द्वारा जो संवेदनशील मतदान केंद्र है और जो हाइपर सेंसिटिव है उनके लिए CCTV लगाने की व्यवस्था की है। 549 पोलिंग पार्टीज है पूरे जिला में, जो कि 3 चरणों में निर्वाचन के कार्य को पूरा करेंगे। मतदाताओं से मैं यही अपील करूंगा कि इस अवसर पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया है। जनगणना निदेशालय की निदेशक दीप शिखा शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें जनगणना 2027 के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच करवाया जाएगा। लोगों को इस बार स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है और पहली से 15 जून तक स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवाई जा सकती है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला स्थित लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की और उन्हें इस बारे में एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने चुनाव आचार संहिता के बीच मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगमों व नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों को प्रभावित करने के लिए नियमों में बदलाव लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। भाजपा ने इन सभी मुद्दों पर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की।
4: चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। कॉर्पोरेशन के चुनाव में जाते हैं, पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है और आचार संहिता लगी हुई है। मुख्यमंत्री जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस का काउंसलर चुन करके भेजिए, मैं 50 लाख रुपए आपके लिए विकास के लिए दूंगा। ये सीधी सीधी आचार संहिता के उल्लंघन की खुलेआम जो है जिसको शुरुआत की गई, और आचार संहिता के बीच में कैबिनेट के फैसले लिए जाते हैं। ऑफिशियल ब्रीफिंग ना करके मीडिया को जो है वो सारे के सारे फैसले बता दिए जाते हैं और फैसले के लिए जो चुनाव को प्रभावित कर।
1: दूरदर्शन समाचार नई दिल्ली की महानिदेशक ममता वर्मा ने आज दूरदर्शन केंद्र शिमला में मारा हिमाचल नाम से नए पॉडकास्ट स्टूडियो का शुभारंभ किया। DD News हिमाचल में संचार व संवाद की दिशा में एक नवाचार किया है। मारा हिमाचल की टैगलाइन अपने लोग अपने किस्से रखी गई है। ममता वर्मा ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे दर्शक समाज के कई जाने अनजाने लोगों की उपलब्धियों के बारे में जान सकेंगे। इस मौके पर दूरदर्शन व आकाशवाणी के क्लस्टर प्रमुख व उप महानिदेशक कश्मीर सिंह, दूरदर्शन केंद्र शिमला की समाचार प्रमुख नंदिनी मित्तल, आकाशवाणी शिमला के समाचार प्रमुख रितेश कपूर, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा और दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख विकास कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 6ठी से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल

0: इंटेलिजेंस को शामिल करने की कवायद तेज कर दी है। बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने धर्मशाला में बताया कि स्कूली विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक व डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI शिक्षा की आवश्यकता बढ़ने वाली है और इसी उद्देश्य से स्कूल शिक्षा बोर्ड ने AI को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। विशाल शर्मा ने बताया कि इस बारे में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पूरे वर्ल्ड की जो AI लिटरेट संख्या है उसमें 17% जो है वो हिंदुस्तान में, हम इस पाठ्यक्रम को लागू नहीं कर पाए थे, तो इसमें हम भी पीछे नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमने एक पाठ्यक्रम 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक जो है यहाँ पे हमने 2 कार्यशालाएं की थी। राज्य सरकार से हमने सेक्रेटरी एजुकेशन को अनुरोध किया कि आप हमें प्रेजेंटेशन के लिए समय दें, किस तरीके से इस पाठ्यक्रम को लागू करना है, कब लागू करना है, इसके बारे में फिर राज्य सरकार जैसा निर्णय लेगी वैसा हम आगे करें।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश में ईद उल जुहा के अवकाश में बदलाव किया है। आज जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में अब 27 की बजाय 28 मई को ईद उल जुहा पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का सुलह और आपसी सहमति से निष्पादन करना है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को विशेष लोक अदालतों में शामिल करने के लिए एक गूगल फॉर्म तैयार किया गया है। ये गूगल फॉर्म सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट www.sci.gov.in पर उपलब्ध है। गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच IPL का पहला क्वालिफायर मैच कल खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैच को जीतने वाली टीम IPL के फाइनल में पहुंचेगी। इस मैच को लेकर HPCA ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के लोक भवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ प्रदेश में विकास व जन कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान सुशासन और प्रदेश में चलाई जा रही विकासात्मक पहलों पर भी संवाद किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा देश भर में सर्वश्रेष्ठ। CBSE पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को मिलेगा अधिक विषयों का विकल्प। पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में कल 1293 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आग्रह। 16 जून से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग। और DD News की महानिदेशक ममता वर्मा ने दूरदर्शन केंद्र शिमला में नए पॉडकास्ट स्टूडियो मारा हिमाचल का किया शुभारंभ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्र के साथ ही FM शिमला पर भी एक साथ रिले किया गया। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी शिमला और FM शिमला पर आइए सुनते हैं देशगान।

0: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM शिमला।
1: कहां ये यादियां थी तेरे मिलने से पहले।
0: खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा एफएम स्टेशन 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर। इस वक्त शाम के 8:02 होने को हैं और मैं संजय कुमार हाजिर हो चुका हूं भूले बिसरे गीतों के साथ।

चलिए साथियों शुरुआत करते हैं दो उस्ताद फिल्म के इस गीत से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीतकार कमर जलालाबादी और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। जी हाँ साथियों, और ऐसे गीत जो पुराने गीत होते हैं जिनको सुन के हमें याद भी आता है कि हाँ ये भी कोई गीत है जिसे हम अक्सर भूल चुके होते हैं, और ऐसे गीत आज भी दिल को सुकून देते हैं। और पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उनमें सादगी और गहराई बराबर रहती थी। और इसके बाद आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की, अब लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में मिलन फिल्म से।

0: साथियों, ये था मिलन फिल्म का सदाबहार गीत, और जिसे आज जो है नई जनरेशन जो है जिनके लिए भूला बिसरा गीत हो सकता है, और इसमें अपनी मधुर आवाज़ से सजाया था मुकेश और लता मंगेशकर ने। जी हाँ, और ये गीत जो है इसमें बहुत ही दिलचस्प एहसास है, और ऐसा लगता है कि दो दिलों की मोहब्बत जन्मों जन्मों से एक दूसरे से जुड़ी हो। यही तो खासियत है पुराने गीतों की, वे सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए

0: दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
0: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में लहू के लहू। लाखों में एक फिल्म से ये गीत है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया असली नकली फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

0: भूले बिसरे गीतों में आज बस इतना ही।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
0: पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम शिमला केंद्र। 8:30 हुए हैं एफएम शिमला पर, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं विरासत फिल्म के इस गीत से, इसे गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने।

फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ @9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योग

0: लोगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
4: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
6: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
2: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
6: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक

ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य

0: President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system concludes. All tourists rescued safely. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 9:15 हुए हैं। एफएम शिमला पर लीजिए पेश है एक फिल्म से कार्यक्रम, और आज की फिल्म है शर्मिली।

जी हाँ साथियों, शर्मिली एक प्रसिद्ध हिंदी रोमांटिक सस्पेंस फिल्म है जो 1971 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म का निर्देशन समीर गांगुली ने किया था और निर्माता थे सुबोध मुखर्जी। और इस फिल्म में शशि कपूर और राखी मुख्य भूमिकाओं में हैं, और राखी ने फिल्म में डबल रोल निभाया था।

चलिए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। शर्मिली फिल्म की कहानी जुड़वा बहनों कंचन और कामिनी के इर्द गिर्द घूमती है, और कंचन बहुत सीधी शर्मिली और संस्कारी लड़की का रोल अदा करती है, जबकि कामिनी आधुनिक और चंचल स्वभाव की होती है। सेना अधिकारी कैप्टन अजीत कपूर को कामिनी से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन परिस्थितियों के कारण उनकी शादी कंचन से तय हो जाती है, और इसके बाद कहानी में रहस्य, गलतफहमियां और सस्पेंस शुरू होता है।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

जो मुख्य कलाकारों की बात करते हैं, शर्मिली फिल्म में शशि कपूर ने कैप्टन अजीत कपूर का रोल अदा किया है और राखी डबल रोल के रूप में है, कंचन और कामिनी के रूप में। उसके अलावा रंजीत और इफ्तिकार ने इसमें बहुत ही बेहतरीन रोल अदा किया है। लोकप्रिय गीतों की बात करें तो फिल्म का संगीत एस डी वर्मन ने दिया था और इसके गीत आज भी बेहद पसंद किए जाते हैं। खिलते हैं गुलियां ओ मेरी शर्मिली, कैसे कहें हम प्यार ने हमको, और मेघा छाया आधी रात, ये मशहूर गाने इस फिल्म के हैं। और ये फिल्म रोमांस संगीत और रहस्य का शानदार मेल मानी जाती है और पुराने हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है।

कहें हम प्यार ने हमको, और मेघा छाया आधी रात, ये मशहूर गाने इस फिल्म के हैं। और ये फिल्म रोमांस संगीत और रहस्य का शानदार मेल मानी जाती है और पुराने हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है।

इसी गीत के साथ ही एक फिल्म से कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है और इस कार्यक्रम में आज आपने सुने शर्मीली फिल्म के गीत।

चलिए शुरुआत करते हैं सुनिधि चौहान, कैलाश खेर और जसविंदर नरोड़ा की आवाज़ों में गाए इस गीत से, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। फिल्म का नाम है आपकी खातिर।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं दिल की आवाज भी सुन। इसी बीच आइए सुनते हैं हेलो डॉक्टर कार्यक्रम संबंधी सूचना। मंगलवार यानी कल 26 मई 2026 प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है लकवा या पक्षाघात, कारण और बचाव। श्रोताओं, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें मंगलवार यानी कि कल 26 मई 2026 को प्रातः 8:45 से लेकर 9:15 के बीच फ़ोन नंबर 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे।

चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में गोलमाल फिल्म से। गीतकार विशाल ददलानी और संगीतकार विशाल शेखर।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम शिमला, 10 बजे हैं और एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं चंद गज़लें।

तुझे क्या पता मेरे हम सफर मेरी बात में भी सवाल है। मैं सफर में हूँ किसी और के मेरा रास्ता ही मिसाल है। तू जो साथ है तो सुकून है मगर दिल कहीं और चल पड़ा। ये जो मुस्कुराहट है होंठों पर ये दर्द की मिसाल है। तुझे क्या पता ऐ हम सफर मेरी रूह भी है थकी हुई। मैं हंस तो रहा हूँ जमाने में मगर आंखों में एक मलाल है। कभी साथ थे जो ख्वाब मेरे वो बिखर गए किसी मोड़ पर। मैं वहीं खड़ा हूँ अब तक भी जहाँ टूटने का सवाल था।

जाने वाले तेरी तस्वीर ले जा, मेरे दिल की तहरीर ले जा, मैं तो अब भी वहीं ठहरा हूँ, मेरी टूटी हुई तकदीर ले जा। जाने तेरे जाने से ये शहर सूना, हर गली में उदासी सी है, जो भी यादें हैं तेरी मुझको वो अधूरी सी ताबीर ले जा। जाने वाले तेरी तस्वीर ले जा, मेरे दिल की तहरीर ले जा, मैं तो अब भी वहीं ठहरा हूँ।

चश्मा लगता है, बाल भी लगते हैं, दांत भी लगते हैं और आजकल घुटने भी लगते हैं।

अभी आप सुन रहे थे चंद कसलें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। 10:30 हुए हैं FM शिमला पर। आइए अब सुनते हैं सदाबहार नगमें।

चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं महेंद्र कपूर के गाए इस गीत से, फ्रॉम द मूवी ये रात फिर ना आएगी। इस गीत को लिखा है SH बिहारी ने और संगीत दिया है OP नैयर ने।

तो साथियों, ये था सदाबहार नगमों में पहला गीत। इसके बाद आइए सुनते हैं SH बिहारी का लिखा और OP नैयर का संगीतबद्ध किया कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत, और इसे गाया

0: ये अदा खूब है।
1: मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाए।

आइए अब सुनते हैं कटी पतंग फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है राहुल देववर्मन ने। गीत के बोल हैं प्यार दीवाना होता है।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं कभी कभी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार खयाम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा।

बजकर 10 मिनट हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।